0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से होगी। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से गणना सुबह 8:30 बजे शुरू होगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। निर्वाचन आयोग ने सुव्यवस्थित मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। ये मतगणना असम की 126, केरलम की 140, तमिलनाडु की 234 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए होगी। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना होगी। फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए राज्य में इस महीने की 21 तारीख को दोबारा वोटिंग होगी और मतगणना 24 मई को की जाएगी।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर

0: विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
0: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
0: संवाददाताओं से ताजा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण।
0: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक प्रमुख मार्ग रहा है और इस मार्ग से यात्रा दशकों से जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नेपाल के क्षेत्रीय दावों के संबंध में कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि ऐसे दावे ना तो उचित हैं और ना ही ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित हैं। इससे पहले नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि ये क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल झारखंड के रांची में उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं से न्यायिक व्यवस्था में चुनौतियों, सुधारों और अधिवक्ताओं की भूमिका पर चर्चा की। इस दौरान श्री मेघवाल ने अधिवक्ताओं से न्याय प्रणाली को सुलभ और सशक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। इसके बाद उन्होंने सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला के समापन समारोह में भाग लेकर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। होर्मुज की खाड़ी में फंसे जहाजों के लिए अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ और असंबद्ध देश प्रभावित हुए हैं और अमेरिका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकलने में सहयोग करेगा। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिका सहमत होता नहीं दिखता है। ईरान सरकार के प्रवक्ता इस्माइल बागेई ने कहा है कि ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिकी प्रत्युत्तर की समीक्षा की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की मीडिया से कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। IPL क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. All arrangements are in place for counting of votes today for the assembly elections in Assam, West Bengal, Keralam, Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry. The counting will begin at 8 this morning. Counting of postal ballots will be taken up first and counting of electronic voting machines will start at 8:30 a.m. Early trends are expected to emerge by noon. Election Commission has put in place robust security arrangements for smooth counting in 4 states and 1 union territory. Counting of votes will be taken up for 126 assembly seats in Assam, 140 in Keralam, 234 in Tamil Nadu and 30 seats in Puducherry. In West Bengal, counting of votes will be taken up for 293 seats today. The re-poll for the Falta Assembly will be held on 21st May and the counting will be held on 24th May. We have a report.
4: All arrangements have been made for today's counting and personnel have already entered the centers. Out of 294 seats, the counting of votes for 293 assembly

0: जनादेश 2026
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
2: नमस्कार, जनादेश 2026 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सिर्फ वोटों की गिनती नहीं हो रही, आज उम्मीदों का हिसाब होगा, सपनों का फैसला होगा। पश्चिम बंगाल से लेकर केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी, हर राज्य लिखेगा अपनी कहानी। कहीं सत्ता बचेगी, कहीं सत्ता बदलेगी, कहीं इतिहास दोहराया जाएगा तो कहीं इतिहास रचा जाएगा। पश्चिम बंगाल जहां वोट लिख सकता है नए राजनीति का सवेरा, केरलम जहां बदल सकती है दशकों पुरानी परंपरा, तमिलनाडु जहां टकरा रही हैं दो सियासी विरासतें, असम जहां विश्वास की असली परीक्षा है और पुदुचेरी जहां सत्ता की वापसी की दस्तक है। हर पल बदलते रुझान, हर आंकड़ा तय करेगा भविष्य की दिशा। तो तैयार रहिए, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा इम्तिहान अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम जनादेश 2026। मेरे साथ हैं मेरे को एंकर निशित कुमार और राजनीतिक विश्लेषक उमेश चतुर्वेदी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत।
3: Welcome listeners to this very special edition of Janadesh 2026, wherein we'll be discussing, analyzing, dissecting and bringing you the latest from the world of these elections and the results. So stay tuned. As Anand mentioned, my name is Nishit Kumar. Along with me is political analyst Umesh Chaturvedi. Umesh ji, very welcome to the show.
4: Namaskar.
3: A warm welcome to you all. And yes, as Anand rightly mentioned, today is a day of history to be created and a lot of other things to look forward to.
2: जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले आपको ताज़ा रुझान के बारे में बताएं तो असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले डाक पत्र की गिनती की जा रही है, कुछ राज्यों से शुरुआती रुझान मिलने शुरू भी हो गए हैं। असम में विधानसभा की 126 सीटों की मतगणना में भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस एक सीट पर आगे है। एक सीट पर असम गण परिषद के उम्मीदवार आगे हैं। केरलम में 140 विधानसभा सीटों की मतगणना चल रही है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 3 सीटों पर।

0: कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके 1 सीट पर आगे है, जबकि टीवीके पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों की मतगणना में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है।
1: राइट, एंड इन द काउंटिंग एज आनंद वाज आल्सो मेंशनिंग, अर्ली ट्रेंड्स हैव ऑलवेज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू ट्रिकल इन फ्रॉम केरला, तमिलनाडु, असम, फ्रॉम वेस्ट बंगाल एज वेल, एंड केरला ट्रेंड्स आर अवेलेबल फॉर 11 सीट्स। कांग्रेस इज लीडिंग इन 5 सीट्स, सीपीआईएम इन 3 सीट्स, बीजेपी, आरएसपी एंड इंडिपेंडेंट in one seat each, and in Tamil Nadu trends are available for 2 seats. DMK and TVK are leading in 1 seat each, and in Assam trends are available for 10 seats. BJP is leading in 9 constituencies and an AGP in a 1, and the first trends have also started coming in from the very interesting state of West Bengal. West Bengal is the state wherein eyeballs are all focused. The entire India is looking to that state, and the BJP is leading all 3 constituencies for which the trends are available at the moment. Umeshji, we'd like to start with you. West Bengal, as we mentioned in our opening remarks, is really the state to look forward to this time.
2: बिल्कुल, और एक बात और भी है कि 5 राज्यों में चुनाव हुए थे अभी और 5 राज्यों की मतगणना हो रही है। तकरीबन भारत की 19% जनसंख्या अपने नेताओं का चुनाव करेगी, अपने भाग्य विधाता का चुनाव कर रही है, कर चुकी है, नतीजे आने सामने हैं, बाकी हैं। एक चीज़ देखने की बात है कि इन 5 राज्यों में चुनाव होने के बाद भी पूरे देश का, बल्कि कहें कि पूरी दक्षिण एशिया का फोकस पश्चिम बंगाल पर है, और इसकी एक बड़ी वजह है। अगर आप याद करें, कुछ साल पहले अमेरिका की एक बड़ी मशहूर पत्रिका ने ममता बनर्जी पर, जो अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन पर कवर स्टोरी की थी। उसमें उन्होंने एक बात कही थी, पत्रिका ने लिखी थी, वो ये कहा था कि ममता बनर्जी दक्षिण एशिया की अकेली महिला लोकतांत्रिक नेता हैं जिनका कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है या किसी बड़े राजनीतिक परिवार से वो नहीं आती। जाहिर है कि ममता बनर्जी ने जो हासिल किया है 15 साल पहले, उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 चुनावों से, 2021 में और फिर 2026 में, जिस तरह से चुनौती दी है, निश्चित तौर पर इस चुनौती के ही चलते सबसे ज़्यादा ध्यान, और मुझे लग रहा है कि हमारे श्रोता भी जो हमसे जुड़े होंगे वो भी यही जानना चाहते होंगे कि पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी बात है, और जो रुझान दिख रहे हैं उसमें तो ऐसा ही लग रहा है कि जिस तरह से देश पहले से ही मान चुका था, खासतौर पर एग्जिट पोल आने के पहले ही लग रहा था कि असम में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी, तीसरी बार सरकार बनाएगी, और ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के माना जा रहा था कि कांटे की टक्कर होगी। अभी शुरुआती रुझान है, लेकिन कांटे की टक्कर कम से कम पोस्टल बैलेट में नहीं दिख रहा है। और एक चीज़ और भी ध्यान देने की है, बातचीत की शुरुआत हुई, हम लोग अभी लंबी चर्चा करेंगे, डीएमके पहली बार अगर ये सरकार बनाने की स्थिति में है, जैसा कि रुझान में दिख रहा है कि वो आगे चल रहा है, तो वो इतिहास में पहली बार अपनी सरकार दोबारा बनाए
1: बिल्कुल।
2: तो एक चीज़ ये भी है, और जिस तरह से केरल में UDF आगे चल रहा है और LDF पीछे चल रहा है, तो ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि इस देश में कहीं भी किसी भी कोने में वामपंथी दलों की सत्ता में सीधी भागीदारी नहीं होगी।
1: दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट यू मेक उमेश जी, दैट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोबेबली इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, दैट द लेफ्ट, द सो कॉल्ड लेफ्ट, वुड बी जस्ट अबाउट नोवेयर around the political landscape of the country. So that's a very interesting point that you make. And another point that you make about the DMK kind of retaining power in, if at all they retain power in Tamil Nadu, would be another big thing. But my question here is that, talking of AIA DMK here, do you think that post the Jayalalitha phase, when she was there, of course, she was the party, she was the thing around which the entire the party that the AIADMK revolved around her or gyrated around her, like, now post Jayalalitha phase, how do you see the AIADMK kind of faring or kind of holding on to it?
0: उमेश जी, इस सवाल पर आप जरूर आइएगा। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि ताज़ा हाल ये है कि असम में जो ताज़ा रुझान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर आगे चल रही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है, केरलम से जो अभी ताज़ा रुझान आ रहे हैं वहां पर CPM 3 पर आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

0: 5 पर आगे चल रही है और वहां पर बीजेपी 2 सीटों पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल का ताजा हाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर आगे चल रही है, तृणमूल कांग्रेस 4 पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि वहां पर कांग्रेस 2 सीटों पर लीड करती नजर आ रही है। तमिलनाडु जिसकी चर्चा निश्चित कर रहे थे, डीएमके 8 सीट पर आगे है, एआईएडीएमके 3 सीट पर बढ़त बनाए हुए है और जो सुपरस्टार विजय की पार्टी है टीवीके, वहां पर वो 1 सीट पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। जी आप
1: निशित जी
0: डीएमके पर बात कर रहे हैं,
1: निशित जी के सवालों पर हम आते हैं। निशित जी, एक चीज ध्यान में रखने की है कि पोस्ट जयललिता के सिनेरियो पर आपने सवाल पूछा था, तो पिछले ही चुनाव में 2021 के चुनाव में आप देखेंगे तो जयललिता की जो एआईडीएमके है वो 2 धड़ों में साफ बंटी नजर आ रही थी और उसका चुनावी नतीजों पर बड़ा असर पड़ा था।
0: जी,
1: और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में उसने तो खुद लड़ाई लड़ी है, लेकिन तमिलनाडु में उसने गठबंधन बनाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन जो एआईडीएमके प्रमुख पलानी स्वामी हैं उन्होंने कुछ मामलों पर मतलब झुकने से इनकार कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि टीवी की जो पार्टी है उसको भी शामिल किया जाए गठबंधन में, लेकिन पलानीसामी इसके लिए तैयार नहीं हुए और इसका असर अगर यही रहेगा तो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि जब ईवीएम मशीनें खुलने लगती हैं तो आप देख चुके हैं अतीत में नतीजे बदलने शुरू हो जाते हैं पोस्टल बैलेट का, ये बड़ा शुरुआती रुझान है, लेकिन अगर ऐसे ही रुझान रहे तो निश्चित तौर पर एआईडीएमके को सोचना होगा कि वो कहां तक इस तरीके से आगे बढ़ सकती है, कहां तक पहुंच सकती है।
0: उमेश जी आपको रोकेंगे, इलेक्शन पोर्टल पर जो अभी ताजा रुझान आ रहे हैं वहां पर पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट से जो रुझान आ रहा है वहां ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के सुवेंदु अधिकारी, जिन्होंने पिछले चुनाव में नंदीग्राम में उन्हें मात दी थी, इस बार भवानीपुर से ताजा रुझानों में सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बढ़त बना ली है।
1: बिल्कुल, इस तरह से अगर देखें यही अगर रहा तो ये तय मानिए कि जो 2011 में किसी ने नहीं सोचा था कि 34 साल के शासन का ममता बनर्जी की अगुवाई में अंत हो सकता है वामपंथी दलों के शासन का, कुछ कुछ वही स्थिति ऐसी इस बार भी होने जा रही है और ऐसी स्थिति दिख रही है। अगर यही रहा तो अब बात की बात है, लेकिन
2: अर्ली डेज, यस
1: बिल्कुल
2: यस यस एब्सोल्युटली, एंड दिस इज रियली यू नो इफ फॉर द मोमेंट इफ यू कैन से दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज इफ यू कैन से, बट स्टिल अर्ली डेज एज यू मेंशनड अर्लियर।
0: केरलम की बात करें तो केरलम में मतगणना शांतिपूर्वक चल रही है, विधानसभा की 140 सीटों में से शुरुआती रुझान आ चुके हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि भाजपा गठबंधन 2 सीटों पर आगे है, वामपंथी गठबंधन यानी LDF 3 सीटों पर आगे है, कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF 7 सीटों पर आगे है और अन्य का खाता नहीं खुला है। थोड़ा अगर विश्लेषण की बात करें उमेश जी, चूंकि आप बहुत समय से भारतीय राजनीति को कवर करते रहे, पश्चिम बंगाल में अगर आंकड़ों की बात करें तो जो ग्रोथ रेट है वो भारत के दूसरे राज्यों के ग्रोथ रेट से सबसे पिछड़ा ग्रोथ रेट पश्चिम बंगाल का है, जो आंकड़े जारी हुए, विकास की दर वहां सबसे कम है। मतदाताओं के ध्रुवीकरण की बात होती है, जब भी भारतीय जनता पार्टी की बात होती है तो कहते हैं कि ध्रुवीकरण हो रहा है। इस बार के चुनाव में वहां सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी एक बहुत अहम मुद्दा रहा, वामपंथियों ने अपना नैरेटिव सेट किया कि अगर आप बीजेपी को यहां पर लाते हैं तो इस राज्य का भला नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन के सरकार का नैरेटिव सेट कर रही है और वो ये कह रही है कि ममता बनर्जी के शासन में काफी ज्यादा हिंसा होती है पश्चिम बंगाल में। मतदाता किस फैक्टर से ज्यादा प्रभावित नजर आया आपको?
1: देखिए, पश्चिम बंगाल की जो अभी राजधानी है ना कलकत्ता, वो कोलकाता जिसका अब नाम हो गया है, वो भारत की आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों की पहली राजधानी थी और उसका असर आप देखेंगे कि पूर्वी भारत ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत और पूर्वी भारत में बहुत ज़्यादा रहा एक दौर में। बल्कि हम लोग भी जब छोटे थे तो जब भी किसी को नौकरी की तलाश होती थी, रोज़गार की तलाश होती थी, इवन कुछ अच्छी पढ़ाई की तलाश होती थी तो लोग कलकत्ता की यात्रा करना पसंद करते थे, वहाँ जाना पसंद करते थे। पश्चिम बंगाल में एक ज़माने में औद्योगिक साम्राज्य था, जूट की मिलें थीं, लोहे का मिलें थीं, बहुत सारी चीज़ें थीं। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में भूमि सुधारों को की मांग को लेकर के नक्सलबाड़ी का जो आंदोलन शुरू होता है और उसके बाद वामपंथी दलों की सरकार बनती है 1977 में, उसके बाद से वहाँ से औद्योगिक जो चीज़ें हैं वो बदलने लगती हैं, औद्योगिक परिदृश्य पूरी तरह से बदलने लगता है, उद्योग ठप पड़ने लगते हैं, उद्योग वहाँ से

0: जाने लगते हैं। आज भी आप देखिएगा कि जितने भी बड़े खासतौर पर उत्तर भारत के उद्योग हैं, दो तीन बड़े जिनका नाम आजकल चल रहा है, उनका नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन उनको देखेंगे और उनका जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो पते देखेंगे तो वो कलकत्ता का ही दर्ज है। मतलब ज़्यादातर जो बोर्ड्स थे, जो उद्योग साम्राज्य थे, वो कोलकाता से चलते थे। लेकिन पश्चिम बंगाल में एलडीएफ की जो लेफ्ट फ्रंट की जब से सरकार आती है तो देखते हैं कि धीरे धीरे वो ग्रोथ रेट डाउन जाती है। हालांकि लेफ्ट फ्रंट का एक बहुत बड़ा योगदान ये रहा कि पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उन्होंने बहुत जमीनी स्तर पर किया। ममता बनर्जी जब 2011 में आई तो उनको लेकर के एक उम्मीद थी कि वो चीज़ों को बदलेंगी। हालांकि एक चीज़ और भी देखिए तो उनका जो एक कंट्राडिक्शन है उसमें, शायद देश ने उसमें समझने में गलती की कि वो सिंदूर और नंदीग्राम के आंदोलन से उभर के आई थी, और वो आंदोलन क्या था, वो भी औद्योगिकीकरण के खिलाफ था। और आप देखिए कि जो टाटा की नैनो फैक्ट्री लगनी थी वहाँ, वो लग नहीं पाई, और जो अभी प्रधानमंत्री हैं, उन दिनों गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने टाटा को बुला करके गुजरात में नैनो की फैक्ट्री लगवा दी। तो एक परिदृश्य बदलने की जो शुरुआत थी, कोशिश थी, वो वैसी दिखी नहीं। और दूसरी जो हिंसा की जो बात आप कर रहे हैं, पिछले जो विधानसभा चुनाव के बाद आप देखेंगे कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले किए थे, और हजारों की संख्या में लोगों को जो असम से सटे हुए इलाके थे वहाँ जाना पड़ा या स्कूलों में शरण लेनी पड़ी थी। तो ये सब चीज़ें थीं जिस पर मतदाता बदले हुए नजर आए। एक चीज़ और है, बंगाल के बारे में कहा जाता है कि बंगाल जो आज सोचता है वो देश भविष्य में सोचता है, लेकिन होने क्या लगा था हाल के कुछ वर्षों में, आप देखेंगे पिछले 15-20 सालों में कि वो उल्टा होने लगा था। अभी आप देखेंगे कि बिहार को कहा जाता है ना मजदूर का सबसे बड़ा सप्लायर, आप हम लोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बैठे हैं, आप देखिए घरों में काम करने वाले लोग सबसे ज़्यादा कहाँ से आए हैं, पश्चिम बंगाल से आए हैं। जो ह्यूमन जो स्मगलिंग हो रही है, ह्यूमन हो रहा है, हाँ ट्रैफिकिंग हो रही है, उसमें भी बंगाल से सबसे ज़्यादा है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे।
1: वेलकम टू दैट उमेश जी, इन द मीनवाइल वी लाइक टू say that Assam, in Assam, 38 out of 126 trends, of course, as of now, 33 seats for the BJP. It feels like going in the direction of the BJP.
2: Janadesh 2026.
3: Assam, Keralam, Tamil Nadu, Paschim Bengal aur Puducherry ke chunav natijon par vishesh karyakram Akashvani ke saath.
4: जनादेश 2026 में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की गिनती चल रही है और हम ताजा रुझान आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में लेकर आए हैं। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव, मेरे साथ को एंकर है निशित कुमार, साथ ही दो राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेश चतुर्वेदी और संजीव चोपड़ा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: यस, बिफोर वी वेंट इनटू द ब्रेक, उमेश, वी वर टॉकिंग अबाउट असम, 33 seats for the BJP, it seems for the moment going their way out of the 38 trends, of course, trends, very early days as of now. And we were talking about the West Bengal, Umeshji, this time 92%+ of voting, that actually gives some direction to which way it probably, because generally it has been the trend, generally it has been like a feature that whenever there has been bumper voting or something like this happening, it has been like it goes the other way, as that is the anti-incumbent way.
0: अब बिल्कुल, और एक चीज़ और भी है जो आप देखेंगे कि एग्जिट पोल जब आए थे तो बहुत सारे लोगों ने एग्जिट पोल को नकारने की शुरुआत की थी, उसको बहुत जोर शोर से नकारा भी था। लेकिन एक चीज़ ध्यान में, हम लोग क्या है ना, अपनी स्मृति बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, हमारी स्मृति बहुत कमज़ोर होती है। 2005 का दूसरा बिहार विधानसभा चुनाव, 2005 में बिहार में दो बार विधानसभा चुनाव हुए थे। पहली बार जो जनवरी फरवरी के आसपास हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पाया था, तो किसी भी गठबंधन को भी बहुमत नहीं मिल पाया था, जिसमें एलजेपी को 29 सीटें मिली थी और नीतीश कुमार जो बाद में मुख्यमंत्री बने वो बहुत पीछे पीछे घूमते रहे, लेकिन एलजेपी ने समर्थन नहीं दिया। तो बाद में हंग असेंबली भंग हुई थी और फिर दोबारा जो चुनाव हुए थे, याद कीजिए, चुनाव आयोग के जो सलाहकार थे उस समय केजे राव, उन्होंने भारी संख्या में गैर बिहार के राज्यों से, पंजाब से, तमिलनाडु से फोर्स बुलाई। और जो आप जानते हैं कि सिवान जो सबसे मशहूर और सबसे चर्चित जिला होता था, जहां आप सोचिए कि सीधे सीधे पुलिस अफसर से वहां के एक व्यक्ति ने सीधे सीधे मुकाबला किया था, वहां

0: पंजाब पुलिस ने चुनाव कराया था, कुछ कुछ यही स्थिति इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने की है जो
1: जी बिल्कुल। I'll just in the meanwhile there is this breaking news that Stalin, the Mr. Udayanidhi Stalin, he's kind of not leading at this moment so far as Tamil Nadu is concerned. This is a breaking news coming for the moment.
2: जी बिल्कुल। अगर ताजा रुझानों की एक बार फिर बात करें तो असम में इस समय भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 4 सीट पर आगे है, केरल में कांग्रेस 10 सीट पर आगे चल रही है जबकि सीपीएम 2 सीट पर, सीपीआई 1 सीट पर और भारतीय जनता पार्टी वहां 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। पश्चिम बंगाल जिस पर सबकी नजरें हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों पर आगे है, तृणमूल कांग्रेस 9 पर बढ़त बनाए हुए है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 सीट पर बढ़त बनाती नजर आ रही है, तमिलनाडु में डीएमके 12 सीट पर आगे है, एआईएडीएमके 5 पर बढ़त बनाए हुए है। संजीव जी पश्चिम बंगाल की चर्चा की हमने, असम की अगर थोड़ी चर्चा करें वहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा की जो छवि थी उन्होंने मामा की छवि बनाई उन्होंने पूरे चुनाव में।

0: फॉर द मोमेंट।
1: जी बिल्कुल, अगर ताजा रुझानों की एक बार फिर बात करें तो असम में इस समय भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 4 सीट पर आगे है, केरल में कांग्रेस 10 सीट पर आगे चल रही है, जबकि सीपीएम 2 सीट पर, सीपीआई 1 सीट पर और भारतीय जनता पार्टी वहां 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। पश्चिम बंगाल जिस पर सबकी नजरें हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों पर आगे है, तृणमूल कांग्रेस 9 पर बढ़त बनाए हुए है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 सीट पर बढ़त बनाती नजर आ रही है, तमिलनाडु में डीएमके 12 सीट पर आगे है, एआईएडीएमके 5 पर बढ़त बनाए हुए है। संजीव जी, पश्चिम बंगाल की चर्चा की हमने, असम की अगर थोड़ी चर्चा करें, वहां पर हिमंता बिस्वा सरमा की जो छवि थी, उन्होंने मामा की छवि बनाई उन्होंने पूरे चुनाव में और काफी आक्रामक प्रचार किया, खासकर कांग्रेस के अगेंस्ट उन्होंने, हमने देखा कि पवन खेड़ा ने किस तरह की टिप्पणी की और उसके बाद किस तरीके से मामले रहे, लेकिन जो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं एक तरफा बंपर जीत की तरफ बीजेपी आगे बढ़ रही है।
2: जी बिल्कुल, कांग्रेस वहां उन्होंने कोशिश करी कि तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को आगे करने की और एक तरह से जो पुरानी ट्रेडिशन थी उसको आगे चलाने की कोशिश करी, लेकिन कांग्रेस पकड़ नहीं पाई, मतलब द ग्राउंड सिचुएशन को पकड़ नहीं पाई। तो हिमंता बिस्व शर्मा फर्मली इन सैडल हैं और जैसा कि एग्जिट पोल्स भी बोल रहे थे कि हिमंता बिस्व शर्मा बीजेपी लेड अलायंस पूरा बहुमत से आगे आ रही है, तो रुझान इनिशियल जो आए हैं, हालांकि ये इनिशियल है बहुत और अभी पहले पोस्टल बैलेट फिर ईवीएम शुरू होंगे, लेकिन अभी तो यही लग रहा है कि कांग्रेस डेंट नहीं कर पाई, कांग्रेस पकड़ नहीं पाई ग्राउंड सिचुएशन को।
1: हमारे श्रोता ये समझना चाहेंगे, चूंकि आप राजनीति को बहुत लंबे समय से कवर कर रहे हैं, कि असम में क्या विकास के नाम पर मतदाताओं ने वोट किया या कमजोर विपक्ष का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला?
2: मैं कहूंगा कि दोनों सिचुएशंस हैं, लेकिन कमजोर विपक्ष ज्यादा निर्भर किया है इस इलेक्शन में, प्लस बीजेपी इस इलेक्शन को पोलराइज भी कर पाई है, जैसे कि उन्होंने घुसपैठियों की बात बहुत करी, जैसे ऑल टॉप लीडर्स अमित शाह इंक्लूडेड प्राइम मिनिस्टर घुसपैठियों की बात की, घुसपैठियों को निकाल देंगे, फिर कांग्रेस ने थोड़ा सा कोशिश करी नेगेटिव राजनीति करने की कि हिमंता बिस्वा सरमा की वाइफ को और उनकी करप्शन को लाने की आगे कोशिश करी, लेकिन वो चला नहीं, वो उल्टा पड़ गया और वो कांग्रेस अपने उसमें एम्ब्रॉयल हो गई। तो ग्राउंड सिचुएशन, और अगर आप देखें कि इलेक्शन से कुछ देर पहले फॉर्मर कांग्रेस एमपी, कांग्रेस का सिटिंग एमपी, कांग्रेस के कुछ देर से जैसे लीडर्स छोड़ के जा रहे हैं, वो इंडिकेट कर रहा है कि किस तरफ राजनीति जा रही है। राजनीतिक जो होते हैं पॉलिटिशियंस बहुत समझते हैं आगे कि कैसे आगे क्या चल रहा है, तो जिस तरह से एक से बाद एक दूसरे कांग्रेस के लीडर्स निकल रहे थे कांग्रेस छोड़ के और बीजेपी को ज्वाइन कर रहे थे, उस हिसाब से लग रहा था कि बीजेपी स्ट्रांगली इमर्ज कर रही है।
3: राइट, इन द मीनवाइल सुवेंदु अधिकारी ऑफ द बीजेपी इज लीडिंग फ्रॉम बोथ द सीट्स, दैट इज भवानीपुर एंड नंदीग्राम। दिस इज बिग, दिस इज ह्यूमंगस संजीव जी, एंड ऑल्सो वी आर टॉकिंग डिस्कसिंग अबाउट असम। वन थिंग ऑफ कोर्स इज दैट हाउ द कांग्रेस पार्टी काइंड ऑफ dealt into that negative campaigning, if you may say that, and the BJP mostly, of course, the incumbent chief minister Mr. Sarma, has been very aggressive right from the very beginning, but at the same time probably he has delivered on the ground as well.
2: That's right. Assam has been a traditional Congress stronghold. But over the years, Hemanta Biswa Sarma was the blue-eyed boy of Mr. Tarun Gugoi, who was the chief minister for a very long time there. Now, the Congress tried to play its card on carrying on the legacy of Mr. Tarun Gugoi by putting forward his son, Gaurav Gugoi, as their leader. However, on the ground, it seems that the Congress has lost its charm on the ground, because Hemanta Biswa Sarma knows the area, the state,
3: and also the pulse of the people. Yeah. He's been
2: focusing on the people. He's been focusing, and the BJP on the other hand is giving it a fillip by adding the angle of infiltrators and those who migrated from Bangladesh and all that. So on one side, development is going on. On the other hand, this narrative is also going on. So Congress could not actually capture the narrative in the state.
3: Right. Umesh ji, we were just discussing about West Bengal and the bumper voting which happened this time.

0: 92%+. This is humongous. Now, there has been this talk of infiltration, the Rohingyas and all, you know, crossing into the Indian side from Bangladesh and other parts as well. So now this time it seems the central leadership as well as the election commission, they have been kind of holding fort with very, you know, that strong kind of iron fist. How far do you think that the tightening of the screws so far as the security and these things are concerned has any bearing on these election results?
1: दो चीज़ें हैं. पहले तो आपके सवाल में दो चीज़ों का और इशारा है. पहला तो ये है कि घुसपैठ को लेकर के इस बार सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया. लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसको मुद्दा सबसे पहले पश्चिम बंगाल में बनाया किसने था. खुद ममता बनर्जी ने.
0: yes.
1: और अगर आप याद कीजिए 2011 के चुनाव में
0: exactly, yes,
1: उन्होंने
0: yes.
1: खुद yes, तब yes. के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मांग की थी कि केंद्रीय बलों की निगरानी में पश्चिम बंगाल में चुनाव हो. तो वो खुद मानती थी कि उस समय जो वेस्ट बंगाल की पुलिस या कोलकाता पुलिस है उसकी निगरानी में चुनाव सही तरीके से नहीं हो सकते. उम्मीद ये की जा रही थी कि ममता बनर्जी जब आएंगी शासन में, जो आई भी 2011 में, तो आएंगी तो जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया उसको सॉल्व करेंगी, उसका उन समस्याओं का समाधान करेंगी. लेकिन ठीक उसी तरह से वो उसी राजनीति में पगती चली गई जिस राजनीति में पहले सीपीएम की लीड वाली सरकारें होती थी और जिसका वो विरोध करती थी. तो घुसपैठ तो उनका मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको उनके हाथ से लपका है. एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी जीतती हुई दिख रही है रुझानों में पश्चिम बंगाल में, वो भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी पार्टी है ना भारतीय जनसंघ, उसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पहले हिंदू महासभा के नेता होते थे, वही पश्चिम बंगाल से ही आते थे, कोलकाता से आते थे. तो एक तो बड़ा मलाल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, भले वो कहे ना कहे सार्वजनिक रूप से कि जहां उसके जहां के उसके संस्थापक थे वहीं वो नहीं अपनी
0: घर छोड़ने वाले.
1: और दूसरी एक चीज और याद कीजिए कि लोग कह रहे हैं ना कि बड़ा ट्रेमेंडस विकास हुआ है. 1967 में जो संविध सरकारें बनी थी, सात राज्यों में कांग्रेस सीधे सीधे हारी थी, तो उस समय विपक्ष का जो गठबंधन था कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, उस गठबंधन में भारतीय जनसंघ भी शामिल था. और उस भारतीय जनसंघ की ने 58 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसमें से 24 परगना जिले की एक सीट गोसाबा पर गोविंद चंद्र मंडल जीते थे. वो एससी रिजर्व सीट थी और पहली बार जनसंघ ने 1967 में खाता खोला था और बाकी 57 सीटों पर वो नहीं हारी थी. तो आप देख लीजिए कि कितना बड़ा मलाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का. और दूसरा जो घुसपैठ वाला मामला है ना, घुसपैठ के मामले को भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर बहुत उछाला है, खासतौर पर 2016 के बाद से ही वो लगे हुए हैं. जी कुछ कहना चाहते हैं?
2: जी बिल्कुल. पश्चिम बंगाल में इस समय 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी शुरुआती रुझानों पर आगे नजर आ रही है और तृणमूल कांग्रेस को शुरुआती रुझान में 25 सीटों का नुकसान नजर आ रहा है. संजीव जी, तमिलनाडु में जो इस समय स्थिति बन रही है, 26 सीटों के रुझान आ रहे हैं, जहां डीएमके 11 पर आगे है, कांग्रेस 2 पर बढ़त बनाए हुए है, एआईएडीएमके 6 पर आगे है. लेकिन जो चर्चा का केंद्र बिंदु है वो है सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके. देखिए इस समय वो 6 पर आगे चल रहे हैं और एआईडीएमके भी 6 पर आगे चल रही है. एग्जिट पोल में कुछ ने उनको ट्रिपल डिजिट में भी सीटें दी हैं. कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं आप?
3: देखिए तमिलनाडु की राजनीति हमेशा आप देखेंगे काफ़ी अरसे से पर्सनालिटी बेस्ड रही है. चाहे वो एमजी रामचंद्रन हो, चाहे वो करुणानिधि हो, चाहे वो जयललिता हो, और अब नया फैक्टर जो आ रहा है वो विजय है. तो विजय एक्टर रहे हैं तो, और उन्होंने यूथ के ऊपर बहुत उनका इन्फ्लुएंस रहा है. आपने देखा होगा उनकी रैलीज में कितना बहुत रश होता है
2: जी.
3: और एक रैली में तो
2: बड़ी तादाद में नजर आए,
3: महिलाओं का भी सपोर्ट उसको है. तो आप देखेंगे यूथ और महिलाएं जहां जा रही हों, तो इसीलिए अभी सबसे बड़ी बात यह है तमिलनाडु में जो देखने वाली कि द्रविडियन पार्टीज जो होल्ड करती थी फोर्ट, जो राज करती थी पहले, कांग्रेस करा करती थी बहुत पहले, लेकिन जब से द्रविडियन पार्टीज आई, जो रीजनल आइडेंटिटी को और लैंग्वेज को उन्होंने सपोर्ट करने के लिए, उन्होंने प्रिजर्व करने के लिए ये जो पार्टीज आगे आई, उसके बाद से आइदर वे डीएमके या एआईडीएमके दोनों ऑल्टरनेटिवली पावर में आ रही हैं, कुछ दो बार तीन बार आती हैं फिर दोबारा दूसरे आ जाते हैं, लेकिन इस बार

0: द्रविडियन पार्टीज को पिछड़ने मतलब कि क्या वो पावर से बाहर जाएंगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है और टीवी के एक होप दे रहा है यूथ को वहाँ की और महिलाओं को। और अगर इन दोनों की सपोर्ट है तो आई थिंक महिलाएं 50% ऑलरेडी हैं और यूथ प्लस कर लो आप 25%, मतलब टोटल यूथ ऑफ 42% हैं वहाँ स्टेट में।
1: बहुत संक्षेप में, चूंकि हम न्यूज ब्रेक के लिए भी जाने
0: जी
1: वाले हैं, ऐसी खबरें आई कि भारतीय जनता पार्टी विजय को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती थी, उनके साथ एक समझौता करना चाहती थी। खबर यह भी थी कि राहुल गांधी टीवीके के साथ समझौता करना चाहते थे। क्या विजय को इस बात का अंदाजा था कि वो अकेले दम पर तमिलनाडु में कुछ बदलाव कर सकते हैं, इसलिए वो अकेले लड़े?
0: अकेले इसलिए भी लड़े उन्होंने कि अपनी आकलन कर लें कि कितनी उनकी पोजीशन है। वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझ रहे थे क्योंकि उनको मास बेस सपोर्ट था उनकी रैलीज़ में जैसे आए। हालांकि रैलीज़ एक यार्ड स्टिक नहीं माना जाता, रैलीज़ ममता बनर्जी की भी लेफ्ट के टाइम बहुत होती थी, बड़ी बड़ी रैलीज होती थी, बट पावर में नहीं आ पाई, लेफ्ट को डीथ्रोन नहीं कर पाई। लेकिन इस बार जो जैसे लग रहा है, और प्लस बीजेपी के साथ वो पहले नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वो कुछ लाइक माइनॉरिटी वोट्स को एंटी हो जाती, तो प्री पोल अलायंस की जगह मुझे लग रहा है पोस्ट पोल अलायंस हो सकती है अगर वो ऐसी इमर्ज करके आए, क्योंकि उनकी अगर पार्टी 3 फिगर में आए तो पोस्ट पोल अलायंस हो सकती है।
2: राइट, वेरी ब्रीफली बिफोर स्लिप इन टू अ ब्रेक फॉर केरला, द LDF इज लीडिंग इन 8 सीट, द UDF इन 21, एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली द बीजेपी एज वेल इज लीडिंग इन 3 सीट्स, द बीजेपी प्लस दैट इज द अलायंस इन केरला। Umesh ji, Sanjeev ji will be slipping into a quick break for now for the news bulletins, and we'll be back at 9:10 a.m. just in 10 minutes from now with more and more discussions and more analysis. So listeners, just don't go away, stay tuned, and we'll be back right now.
3: Janadesh
2: do
3: ஆகாஷ்வாணி புதுச்சேரியின் முதன்மை அலைவரிசை, நேரம் 9:05. நிகழ்ச்சியில் தொடர்வது திரையிசை. நிகழ்ச்சி தொடங்கும் முன்,
4: கல்யாண பொண்ணு கல்யாணத்தப்போ ஒரு மணப்பெண் அவ உலகமா நினைக்கிற மணமகன் பெற்றோர்கள் நட்பு உறவுகள்னு எல்லார்கிட்டேந்தும் என்ன எதிர்பார்ப்பா? அவங்களோட அன்பு ஆசிர்வாதம் இதெல்லாம் தாண்டி காலத்துக்கும் ஜொலிக்கிற ஒரு ப்ராமிஸை தான் எதிர்பார்ப்பா. ஏன்னா அது அவளுக்கு இன்னும் பொக்கிஷமானது. ஒரு மணப்பெண்ணை அலங்கரிக்கிற அழகான நகைகளை போல பிரகாசிக்கிற ஒரு பொக்கிஷம் தான் ப்ராமிஸ்.
5: இப்படிப்பட்ட ப்ராமிசஸோட எங்களோட ஒரு ப்ராமிஸ், உங்கள் திருமணத்தை மறக்க முடியாத தருணமாக்குவோம். GRT Brides, the bridal jewelry collection. இது ஒவ்வொரு மணப்பெண்ணும் அணிந்து கொள்ள வேண்டிய பொக்கிஷம். GRT Brides from GRT Jewelers. சுப ஆரம்பங்களின் ஆரம்பம்.
3: திரையிசை நிகழ்ச்சியில் பாடல் கேட்கலாம். நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும் திரைப்படத்திலிருந்து.

0: जनादेश 2026
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
2: जनादेश 2026 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन सिर्फ आंकड़ों का नहीं, इतिहास का दिन है। सुबह की हर किरण के साथ खुल रहे हैं लोकतंत्र के वो पन्ने जिन पर जनता ने अपनी किस्मत खुद लिखी है। पश्चिम बंगाल से लेकर केरलम तक, तमिलनाडु से असम और पुदुचेरी तक, हर राज्य एक कहानी कह रहा है, उम्मीदों की, संघर्ष की और सत्ता की। कहीं ताज बचेगा, कहीं तख्त बदलेगा, कहीं सपने सच होंगे तो कहीं वर्षों की मेहनत धूल में मिल जाएगी। पश्चिम बंगाल जहां हर वोट एक संदेश है, केरलम जहां विचारधाराओं की जंग अपने निर्णायक मोड़ पर है, तो वहीं तमिलनाडु जहां सत्ता की बिसात पर दो बड़ी ताकतें आमने सामने हैं। असम नेतृत्व की परीक्षा है तो पुदुचेरी जहां सत्ता की वापसी या बदलाव की पटकथा लिखी जा रही है। हर पल बदलते रुझान, हर क्षण नई हलचल और इन सब के बीच आपके साथ है आकाशवाणी। ये सिर्फ गिनती नहीं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है जिसकी हर धड़कन, हर अपडेट, हर मोड़ हम आपके लिए जनादेश 2026 में लेकर आए हैं। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव, मेरे साथ मेरे को एंकर निशित कुमार और हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं दो राजनीतिक विश्लेषक उमेश चतुर्वेदी और संजीव चोपड़ा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत।
3: वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल एडिशन ऑफ जनादेश 2026। एज आनंद वाज मेंशनिंग, वी आर कवरिंग ऑल द रिजल्ट्स ऑफ द असेंबली राइट फ्रॉम असम टू वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु टू केरलम टू पुडुचेरी। सो स्टे ट्यून, वी विल बी ब्रिंगिंग यू द लेटेस्ट when it comes to breaking news as well as insights, political analysis, more and more. So just stay tuned. And for now, when it comes to West Bengal, the BJP is leading on 48 seats, up 21 from the last time, Trinamool on 29, down 24 from the last time, that is 2021. This is so very significant. And when it comes to Assam, the BJP is leading, the BJP Plus is leading on 42 seats. In Keralam, the LDF on 15 and the UDF on 31 seats. And BJP, more significantly, BJP Plus, that is, on 3 seats in Puducherry. Just one trend at the moment coming. And Sanjeevji, if we may begin with you again. When we talk about the West Bengal, 48 seats at the moment for the BJP, this is tremendous. Of course, as the exit polls would suggest that this would be neck and neck.

0: But it seems to be going the other way around this time.
1: Yeah, it seems it's going one way. And for the BJP, which has been, it's for earlier the Jan Sangh and earlier the Hindu Mahasabha. You know, Hindu Mahasabha had a government in West Bengal in the pre-partition days. Mm. So it would be a return in power for the BJP. And, going by the trends, Mamata Banerjee is also trailing in her Bhabanipur constituency where Subhendu Adhikari is, leading. So for Subhendu Adhikari, who has emerged as the leader for the BJP, it will be a double triumph because last time also he defeated Mamata Banerjee from Nandigram. Mm. And this time he's contesting from Nandigram as well as Bhabanipur.
0: Yes.
1: So it will be a real double for him. And the indications right now are that the reign of Mamata Banerjee, is coming to an end because all eyes are on West Bengal because this has been the most crucial election. And Mamata Banerjee has also fought, both Mamata Banerjee and the BJP have fought very strongly, this time.
0: Right. And
2: असम में जो ताज़ा रुझान है वहां पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के साथ साथ सरकार बनाने की तरफ भी आगे जा रही है। 40 सीटों पर आगे चल रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सिर्फ 9 पर आगे चल रही है। पुद्दुचेरी से पहला रुझान सामने आया है जहां पर भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे है। दिलचस्प लड़ाई तमिलनाडु में जारी है जहां पर सत्ताधारी डीएमके 12 सीट पर आगे है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 पर आगे है लेकिन वहां पर सुपरस्टार विजय की नई नवेली पार्टी टीवीके 14 सीटों पर आगे चल रही है। एआईएडीएमके 6 पर आगे है। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर बढ़त है। और सबसे बड़ी चर्चा जो पश्चिम बंगाल पर चल रही है वहां भारतीय जनता पार्टी ताजा रुझानों में 49 सीटों पर आगे चल रही है और तृणमूल कांग्रेस 30 पर आगे है। कांग्रेस 2 पर आगे है जबकि अन्य जो है वो 1 पर आगे हैं। उमेश जी, अगर बंगाल की चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, जो शुरुआती ट्रेंड्स आ रहे थे वहां पर बीजेपी और तृणमूल के बीच बहुत बड़ा गैप था लेकिन पिछले 15 मिनट में, यानी जो हमारे श्रोता समझ रहे हैं, जो पोस्टल बैलेट का दौर लगभग समाप्त हो गया, आधे घंटे चलता है अब जो है वो ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो गई है, वहां पर तृणमूल कांग्रेस ने उस गैप को कम तो किया है।
3: बिल्कुल कम किया है लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि उससे लगभग 60% ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और एक चीज़ देखना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी की थी। पिछली बार 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। 38 सीटें ऐसी थीं जो वो 5% मार्जिन से, उससे भी कम मार्जिन से वो सीटें हारी थी और करीब 43 सीटें ऐसी थीं जहां 10% के मार्जिन से वो हारी थी। इन सीटों पर उसने बहुत काम किया है। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करते ऑफ द रिकॉर्ड तो वो बताते थे कि हमने इन सीटों पर सबसे ज़्यादा फोकस इसलिए किया कि यहाँ करने के लिए बहुत ज़्यादा था। और एक चीज़ और है, जो अल्पसंख्यक बहुल 80 सीटें रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत तो की लेकिन उस तरह से मेहनत नहीं की जैसे कि इन सीटों पर की। और जो रुझान में दिख रहा है वो वही परिलक्षित हो रहा है। हालांकि अभी ये बड़ा शुरुआती है।
2: जी उमेश जी, आपको रोकना चाहेंगे। भारतीय राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि महिला केंद्रित जो योजनाएं हैं उससे सरकार को बंपर फायदा मिल रहा है। झारखंड में देखे तो हेमंत सरकार ने मैया योजना की शुरुआत की, वहां पर वो जीते। छत्तीसगढ़ में भी लाभ मिला, मध्य प्रदेश में भी लाभ मिला। यहां पर ममता बनर्जी लक्ष्मी भंडार योजना चलाती हैं। 1000 रुपए मिलते हैं हर महीने। उन्होंने कहा कि अगर वो जीतेंगी 500 रुपए और बढ़ा देंगी। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि अगर वो सत्ता में आती हैं तो 3000 रुपए वो हर महीने हर महिला को देंगी। क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा इस चुनाव में?
3: बिल्कुल, जब कोई सरकार जीत बनाने की स्थिति में कोई पार्टी आती है और कोई सरकार हारती है तो ये बहुत सारे फैक्टर तो काम करते ही हैं। और आमतौर पर ये कहा जाता रहा है, देखा जाता रहा है कि जो सरकार में रहता और जिन्होंने दे दिया तो जनता और वोटर सबसे ज़्यादा उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन अगर जो रुझानों में दिख रहा है पश्चिम बंगाल में वैसा ही अगर ऐसा रहा तो निश्चित तौर पर जो भविष्य भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है वहाँ ये जो ट्रेंड रहा है ना कि जो दे रहा है उसी पर ज़्यादा भरोसा है तो उससे बदलाव आ रहा है। लेकिन क्यों बदलाव आ रहा है इसको भी हमें थोड़ा सा देखना और सोचना पड़ेगा। एक चीज़ है कि जैसे आरजी कर अभी कुछ महीने पहले आप देखिए अगस्त 2025 में जो आरजी कर में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म हुआ था और जिस पश्चिम बंगाल में एक सवाल

0: मूल की ओर से उठता रहा है कि ऐसे तो बहुत सारे पूरे देश में होते रहे हैं, लेकिन जानते हैं उसका रिपरकर्शन क्या रहा? सरकार ने उसको जिस तरह से डील किया उसको लेकर के पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा गुस्सा रहा, खासतौर पर वहाँ की महिलाओं में। और एक चीज़ आप देखेंगे कि जिस तरह से वोट डालने के लिए लोग गए हैं पश्चिम बंगाल से जो बाहर रह रहे थे, उससे भी लग रहा था कि कुछ न बदलाव तो वहाँ दिख रहा है, कुछ न कुछ होने जा रहा है। तीसरी चीज़ एक ये भी है कि SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चला पूरे देश में चल रहा है, जिन 5 राज्यों में चुनाव हुआ वहाँ हर जगह हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ पश्चिम बंगाल में बना। तो ये जो कंट्राडिक्शन ममता बनर्जी ने, हम लोग ये ब्रेक के पहले जो चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमने कहा कि जो घुसपैठ का मुद्दा था, घुसपैठ के मुद्दे को किसने उछाला था? तो ममता बनर्जी ने। और उसी घुसपैठ को लेकर के SIR से उन्होंने जोड़ दिया कि घुसपैठ की बजाय उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ के वासी हैं उनको नहीं रहने देंगे। दूसरी बात, उन्होंने एक नारा दिया बहिर्गतों, पश्चिम बंगाल का समाज जहां आप देखेंगे कि आज़ादी की लड़ाई के सबसे बड़े धुरंधर वहीं से पैदा होते हैं, आधुनिक जो राष्ट्रवाद है उसकी भी नींव आप देखेंगे तो वहीं, वंदे मातरम का 150 साल अभी हाल ही में बीता है, पूरे देश ने जिसको गाया। तो वो जो चीज़ें थी, बहुत सारे ऐसे मसले रहे हैं जिन मसलों पर पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना मन बनाया और उसका असर ये जो रुझान है उसमें दिख रहा है।
1: So right, the BJP has kind of hit a half century when it comes to West Bengal, and now coming back to Tamil Nadu, Sanjeev ji, TVK, the party, it's leading on 14 seats. The first time, you know, this party has come into existence, and 14 seats, the DMK on 16, which is minus 15 from the last time, and AIADMK almost the same, like 9 plus 1 from the last time. So how big a factor do you see TVK playing when it comes to Tamil Nadu this time, when it comes to the formation of the government?
2: No, TVK certainly, you know, Vijay with, you know, he's been an actor and he has the fancy of the youth and the women in the state. So this time, since he's emerged very strong, and it's most likely that most of the parties like the Congress also tried earlier to ally with the TVK. So did the BJP, but Vijay decided to go it alone this time. So he's tried his time and tested his prowess on the ground. So every party will now try and, you know, ally with him in post-poll alliance, but it's likely that, you know, the southern parties generally go with the central government. So it's likely that the BJP may, you know, ally with it post-poll alliance.
1: So mostly the TVK will have to, or rather would be playing the kingmaker role, if not the king itself. Now, Umeshji, you know, coming to Assam now, Assam as well, the BJP is kind of getting close to the half century mark. It's already on 49, and it's been like a clean sweep, just no contest at all when it comes to Assam.
0: It is on an expected line. यही उम्मीद की जा रही थी वहाँ कि इसी तरह से जीत हासिल होगी भारतीय जनता पार्टी को। और आप जानते हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक अलग तरह के नेता हैं। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे कि बाहर के लोगों को वो नेतृत्व नहीं देते हैं, लेकिन एक तरह से वो ना सिर्फ असम बल्कि पूरे पूर्वोत्तर का चेहरा बन
1: चुके हैं। सुशील तिवारी फ्रॉम चेन्नई, सुशील जी वेलकम।
3: Thank you so much.
1: Yeah, Sushil ji, yeah, please tell us the latest on the ground. What's happening there and how is the mood over there?
3: Actually, the mood is very energetic. We have just visited the nearby counting center, which is close to AIR, that is Queen Mary's College. So lots of police personnel are there. The quite tight security arrangements are there. But a major number of political workers are also standing to know the fate of their candidates, their party. As per the trends by Election Commission, the total trends are about 10 seats, five of which AIADMK is leading. TVK, the new entrant in the political arena of Tamil Nadu, is leading on 3, and CPI and DMK are leading on 1 seat each.
4: जी बिल्कुल सुशील जी, पिछले कुछ समय में जब से ये चुनाव घोषित हुए और वहाँ पर लगातार जो विकास की चर्चा चल रही थी, और कहा जाता है कि तमिलनाडु में व्यक्ति प्रधान राजनीति है, तमिलनाडु के जो टीवी चैनल्स हैं जिस पर बहुत गहरी पकड़ मानी जाती है स्टालिन की, उन्होंने भी बाकी दूसरे पार्टियों को बराबर कवरेज देने की शुरुआत

0: बात की पिछले एक महीने में और राजनीतिक पंडितों ने कहा कि टीवी चैनल्स को लगने लगा है कि अब डीएमके के लिए काफी मुश्किल होने वाली है और टीवीके के विजय पूरी तरह छा गए। शुरुआती रुझान में टीवीके काफी बढ़िया करती नजर आ रही है, जमीनी हकीकत आपको क्या नजर आई जब इस चुनाव को कवर करने के लिए आप तमिलनाडु के अलग अलग केंद्रों पर गए? तो
1: देखिए, जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ही इस बार निर्णायक साबित होने वाली है। हम आपको बता दें कि तमिलनाडु में 4,75,000 से कुछ 4,75,00,000 से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इनमें जो एक बड़ी संख्या है, चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 18 से 19 वर्ष यानी जो नए वोटर हैं वो 14,00,000 के आसपास हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, और एक बड़ी संख्या युवाओं की जो 19 से 29 साल के यानी जो युवा वर्ग है और जेंजी है वो टोटल मिलाकर के 1,00,00,000 से ऊपर है, यानी 1/4 मतदाता ऐसे हैं जो व्यक्ति प्रधान राजनीति में आसानी से प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे तो पूरी ही राजनीति उस पर रही है, लेकिन टीवीके का जो उदय है वो वास्तव में इन्हीं मतदाताओं को ध्यान में रख करके किया गया है। तो जहां एक और डीएमके के पास अपनी जो लोक कल्याण की योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, उनका एक बेनिफिट था, उसका एक आत्मविश्वास था, उसको लेकर के वो चुनाव मैदान में थे, वहीं इन युवा मतदाताओं के भरोसे विजय ने राजनीतिक मैदान में अपना झंडा गाड़ने की तैयारी की थी। तो ये इस बार ये बड़ा दिलचस्प होगा। अभी तो शुरुआती रुझान आ रहे हैं और कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन हम जानते हैं कि ये जो है वो पोस्टल बैलेट्स होते हैं, तो धीरे धीरे जब तस्वीर स्पष्ट होगी कुछ समय के बाद तो हम देखेंगे कि जो युवा मतदाता है उन्होंने अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की, उसमें कामयाब हुए, या फिर जो लोक कल्याण की योजनाएं रहे उनका फायदा डीएमके को मिला, या सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी जिसे कहा जाता है उसका फायदा AIADMK और BJP यानी NDA का जो अलायंस है उसने उठाने का कुछ प्रयास किया या उसे कुछ फायदा हुआ। जी
0: सुशील जी, जानकारी के लिए धन्यवाद, आपसे आगे भी हम जुड़ते रहेंगे। संजीव जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे?
2: जी, मैं ये कह रहा था कि द्रविडियन पार्टीज जो 1957 में पहली बार डीएमके लड़ा, 57 में लड़ा और 67 में पावर में आ गया, तो 67 में जब पावर में आया तो ये लगभग 60 साल के बाद आज अगर विजय की पार्टी अगर किंग मेकर बनती है या पावर में आती है तो एक तरह से इट विल बी सनसेट फॉर यू नो द द्रविडियन पार्टीज। और जैसे AIADMK भी डीएमके से निकल के बना, तो अल्टरनेटिवली द्रविडियन कल्चर को, तमिल कल्चर को, तमिल लैंग्वेज को प्रिजर्व करने से ये उभरा था, एजिटेशनल मूवमेंट से उभरा था, तो ये उस पार्टी का अंत होगा। और एक बार फिर ये देखेंगे कि विजय के जो एक्टर रहे हैं, पहले MG रामचंद्रन, जयललिता, एक्टर्स हैव डोमिनेटेड द पॉलिटिकल सीन इन तमिलनाडु, तो एक तरह से उसकी रिटर्न होगी।
0: और आकाशवाणी के श्रोताओं, अगर आपकी दिलचस्पी कुछ VIP सीट्स पर हैं तो हम आपको बता दें जो ताज़ा ट्रेंड्स चल रहे हैं। असम के रंगिया से भावेश कलीटा इस समय बढ़त बनाए हुए हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो जालुकबाड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं वो इस समय बढ़त पर हैं, जबकि नलबाड़ी से जयंत इस समय आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ जो इस समय कुछ और रुझान सामने आ रहे हैं उसमें अगर हम बात करें जोरहट से, तो जोरहाट से गौरव गोगोई इस समय आगे चल रहे हैं। गोलाघाट से अजंता नियोंग भी इस समय बढ़त बनाए हुए हैं। बोकाहाट से असम गण परिषद के अतुल बोरा भी आगे चल रहे हैं। भवानीपुर, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है इस समय चुनाव आयोग के पोर्टल के अनुसार, भवानीपुर से सुवेंदु अधिकारी बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि वहां पर AIADMK के चेपॉक से अद्री राजम इस समय बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि चेपॉक थिरु वाली केनी से उदयनिधि स्टालिन जो डीएमके के बहुत बड़े नाम हैं वो इस समय पीछे चल रहे हैं। AIADMK के लिए अन्ना नगर से S. गोकुल इंद्रा पीछे चल रहे हैं। साइदापेट से भी डीएमके के सुब्रमण्यन मां पीछे चल रहे हैं। तो ये कुछ बड़ी सीटें हैं जिस पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है और हम आपको बता रहे हैं कि कहां से कौन आगे चल रहा है। अगर आप टीवी के चीफ विजय के बारे में जानना चाहते हैं तो वो अपनी सीट से इस समय आगे चल रहे हैं।
3: Yeah, Umesh, talking of Tamil Nadu and the southern states in general, you know, the NDA or the BJP has been making its mark for quite some time now when it comes to Karnataka. But when it comes to Kerala or Tamil Nadu this time in particular, the BJP has been like trying for quite some time now, let's say for almost 8 to 10 years now, wherein they have kind of been pushing for the

0: major push to either make some inroads or get a foothold into the Tamil Nadu politics. But this time as well, there was that concerted push by the BJP to make some kind of a strong, some kind of a foothold within the BJP politics. How do you see this turning out to be, so far as the results or the trends rather, for the moment, which we can see?
1: देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो तमिलनाडु में अपनी ताकत बढ़ाने की भरपूर कोशिश की है। अब आप देखते हैं, देखिए अभी भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी कोयम्बटूर से आते हैं, जो कोयम्बटूर तमिलनाडु का एक बड़ा होजरी सेंटर है, बहुत बड़ा उद्योग केंद्र है खासतौर पर कपड़ा और होजरी का, तो वहाँ से आते हैं। वहाँ से वो दो बार 1998 और 99 में सांसद भी रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ कोशिश तो की। जो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं वो कोयम्बटूर साउथ से विधायक भी रही हैं, तो इस बार वो चुनाव भी लड़ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, लेकिन भारत जो तमिलनाडु की राजनीति है, जैसा कि संजीव जी बोल रहे थे, वहाँ अभी भी वो पुराने जो दो प्रतिद्वंदी रहे हैं AIDMK और DMK, खासतौर पर 1967 में जब से DMK का उभार होता है। और ये देखिए कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है कि जिस कांग्रेस को उसने साफ किया आज वही कांग्रेस उसके साथ खड़ी नजर आती है, और उसके पीछे उसकी छोटे भाई की तरह हर बार, एक चुनाव छोड़ दीजिए 1998 का, तो हर बार लगभग।
0: लेकिन संजीव जी, जहाँ तक कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस उन्हीं के साथ खड़ी, ये तो एक ट्रेंड बन गया है।
1: बिल्कुल,
0: तमिलनाडु की बात नहीं, आप किसी भी राज्य में चले जाएं, आप बिहार में चले जाएं, आप उत्तर प्रदेश में चले जाएं, कई सारे तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर कि ये जो धूर विरोधी थे कांग्रेस।
1: बिल्कुल, तो तमिलनाडु में, और पिछली बार विधानसभा में 3% वोट 2021 में भारतीय जनता पार्टी का अपने सवाल पूछा था, सिर्फ 3% वोट ही मिले थे। तो अब केरल की बात है, केरल में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया और पिछली विधानसभा चुनाव में 15-16% वोट उसने हासिल किए थे। और इस बार वहाँ जितने भी राजनीतिक समीक्षक हैं, जिन्होंने फील्ड पर काम किया, जिन्होंने रिपोर्टिंग की है, सबका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी केरल में सीटों को लेकर के बहुत बड़ा उलटफेर भले न कर पाए, लेकिन इस बार वो अपना वोट शेयर बहुत बढ़ाने जा रही है। और वैसे 3 सीटें हैं जो निम्बम है तिरुवनंतपुरम की, जहाँ से वहाँ के पार्टी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं, वो कासरगोड से पुराने पार्टी अध्यक्ष जो हैं के सुरेंद्रन, और पलकड़। ये 3 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी मान रही थी कि वो जीत सकती है। अभी रुझानों में पलकड़ में से दिख भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वहां से आगे
2: जी,
1: चल रहा
2: जी,
1: है।
2: जी,
1: तो,
2: जी, उमेश जी, जी। आकाशवाणी संवाददाता राकेश धूले हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ गए हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है। और क्या स्थिति नजर आ रही है, जो ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं वहां पर, ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर हिमंता बिस्वा सरमा अपनी सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं?
3: जी, अभी अभी तक की अगर ट्रेंड देखे तो अराउंड 59 सीट्स में बीजेपी प्लस जो है एनडीए जो है वो आगे बढ़ रही है, एंड कांग्रेस इज अराउंड 16 जिसमें लीड ले रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो धेमाजी में जो रोनुज पेगू धेमाजी डिस्ट्रिक्ट से और धेमाजी असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन से रोनुज पेगू एजुकेशन मिनिस्टर है, वो आगे बढ़ रहा है। नोलबारी से जयंत मल्लभ बरुआ वो आगे बढ़ रहा है। गौरव गोगोई जोरहाट से है वो भी आगे हैं। तो इस तरह से अभी पहला राउंड अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ ही है, उसके नतीजे आने भी शुरू हो गए हैं। तो दिस इज द ट्रेंड। तो बेसिकली अगर हम कहें कि लोग किस तरह से वोट किए या किस तरह से वोट किए होंगे, तो हमें असम को जो है 4 भाग में भाग कर सकते हैं। लाइक द अपर असम, तो अपर असम हम लोग कहते हैं द कल्चरल हार्टलैंड ऑफ असम, वहां की जो मुद्दे हैं दैट्स डिफरेंट। वहां पर जो हम लोग कहते हैं कि सिक्स जो एसटी स्टेट है, जो सिक्स कम्युनिटीज मोरान मोटोक अहोम कुछ राजवंशी और टी ट्राइब्स जो आदिवासी थे, उन लोग एसटी कम्युनिटी मांग रहे थे, तो ये एक इशू है और दे आर वन ऑफ द डिसाइडिंग मैंने डिसाइडिंग फैक्टर्स है वहां पर। और लास्ट टाइम अगर आप अपर असम की बात करें तो लास्ट इलेक्शन बीजेपी वहां पर बीजेपी मतलब बीजेपी प्लस एनडीए जो है वहां पर अराउंड आउट ऑफ 35-36 सीट्स उन लोगों ने वहां पर 31 सीट्स जीते थे। तो ये द सेम थिंग दे वांट टू कंटिन्यू अगेन। तो ये जो मैंने आपको कहा कि जो एसटी स्टेटस है उन लोगों ने प्रोमिस किए कि इन सब कम्युनिटीज को एसटी स्टेटस देंगे, दिस कैन बी अ फैक्टर वन फैक्टर। फिर जो आइडेंटिटी जो पॉलिटिक्स है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स की हम बात करते हैं, जो जो लास्ट बीजेपी गवर्नमेंट जो है उन लोगों ने बहुत ज्यादा इन पे ध्यान दिए थे, जैसे जिस कितने सारे इवेक्शंस किए अराउंड 1.25 लाख जो लैंड इन लोगों ने इलीगल इमिग्रेंट से इविक किए, फिर एंड देन बहुत सारे ऐसे इंडिजिनियस पीपल है कम्युनिटीज है उनको लैंड राइट

0: फिर इन लोगों ने फिर ये अपने मैनिफेस्टो में ये भी बताया कि मोर सच थिंग्स विल हैपन. तो ये एक इश्यू है क्योंकि अपर असम कल्चरल हार्टलैंड, अपर असम की जो पॉपुलेशन है उन लोग सोचते हैं कि जो बाहर से जितने भी लोग हैं वो उनका उनको लैंड राइट ना मिले इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन जो असामीज है. तो दैट्स वन ऑफ द इशू देयर. और तीसरा जो है, तीसरा प्लेस ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन अपर असम, तीनसुकिया के डिब्रूगढ़ के. हम तीनसुकिया डिब्रूगढ़ की जब बात करें तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 12 टू 13 सीट्स हैं. तो लास्ट इलेक्शन आई विल से कि एनडीए हैज कैप वेरी वेल. इन दो डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला है, सारे एनडीए को सीट मिले थे. तो उन लोगों ने अच्छी तरह से जो तीसराई पॉपुलेशन है उन लोगों को टैप किया था. दिस कैन बी अ डिसाइडिंग फैक्टर. इसीलिए अभी देख रहे हैं कि जो रुझाने हैं अभी अब 63 हो गई है, कांग्रेस इवन लेगिंग नाउ कि अभी 17 में ही है. तो इसी तरह से सारे असम की जो हम लोग बात करें तो लोअर असम की इश्यूज अलग है. लोअर असम में एनडीए थोड़ा कम की है क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है यहाँ पे जो पॉपुलेशन थोड़ा मिक्स्ड है.
1: जी जी राकेश जी, आगे भी आपसे जानकारी के लिए वापस जुड़ते रहेंगे. और जैसा कि बता रहे हैं राकेश जी भी कि इस समय जो असम में 126 विधानसभा सीटों में से आधे से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है इस समय आगे चल रही है. केरलम से बड़ी खबर सामने आ रही है, धर्मदम से मुख्यमंत्री पिनराई विजयन इस समय पीछे चल रहे हैं.
2: This is something very big from Tamil Nadu. The new party TVK is leading on 24 seats, which is more than the DMK, which is on 16, and AIADMK on 15. So this is really very significant when it would be coming to the formation of the government this time. And as we have been discussing, the TVK, which was formed which has been fighting for the first time, would probably be playing the role of the kingmaker this time, or probably the king itself. What do you say, Umesh ji?
3: पहले भी एक बार हो चुका है ना MGR. उन्होंने नई पार्टी बनाई थी AIDMK, और उन्होंने DMK को इसी तरह से हराया था पिछली सदी के शायद आखिर.
2: So do you see the history being repeated?
3: Yes, yes. कुछ भी हो सकता है राजनीति में. किसने सोचा था कि 2011 में जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इतनी बड़ी जीत लेकर के आएंगी. उत्तर प्रदेश के आप चुनावों को देख लीजिए, 2014 के लोकसभा चुनावों को भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी जीत लेकर के आई थी. MGR की पार्टी का गठन हुआ था तो किसी ने सोचा नहीं था कि कलिंगर को कोई हरा पाएगा. करुणानिधि को कलिंजर कहा जाता था लेकिन उन्होंने हराया था. तो जनता भाई लोकतंत्र में मालिक है, वो किस तरह से सोचती है और किसको समर्थन देती है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है.
1: पुदुचेरी पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं संजीव जी. ये एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहां पर वोटों की गिनती चल रही है और जो ट्रेंड्स इस समय हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी 1 पर, AINRC 3 पर, AIADMK 1 पर आगे है, DMK 1 पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1 पर आगे है. पुदुचेरी में इस समय जो इस चुनाव में जो मुद्दे रहे वो ये रहा पूर्ण राज्य का दर्जा, कोई भी पार्टी उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ती रही है. साथ ही साथ एक और मुद्दा रहा कि वहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उससे टकराव की स्थिति रही. भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई डबल इंजन की सरकार है, हम ज़्यादा से ज़्यादा फंड देंगे, विकास होगा. वहाँ की जनता का क्या मूड नज़र आया?
4: देखिए, तब जो पुडुचेरी बड़ा छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है, 30 सीटें हैं, उसमें ज़्यादातर सेंटर पे निर्भर करता है. जो फंड्स आते हैं सेंटर डायरेक्टली देता है. तो हमने पहले देखा जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे मुख्यमंत्री और किरण बेदी लेफ्टिनेंट गवर्नर थी तो बहुत टकराव रहा एक दूसरे के साथ, हमेशा रोज़ कुछ ना कुछ होता रहा. तो डेवलपमेंट सफ़र करी वहाँ. तो उसके बाद डबल इंजन की सरकार आई, NDA की सरकार वहाँ बनी. तो मुझे लग रहा है कि साउथ की है, सेंटर पे काफ़ी निर्भर है, फंड्स छोटी स्टेट है, छोटी यूनियन टेरिटरी है. तो मुझे अभी भी यही लग रहा है कि लोग वहाँ पे इसी ट्रेंड से जाएंगे कि सेंटर से तालमेल बना रहे, अदरवाइज गवर्नेंस सफ़र करती है. और जहाँ तक तमिलनाडु की बात है, तमिलनाडु में विजय जैसे आगे बढ़ रहा है तो जैसे आपने बोला कि किंग मेकर ही नहीं किंग भी बन सकते हैं.
2: Yes.
4: ऐसे लग रहा है. और यही शो कर रहा है कि एस्पिरेशनल इंडिया जो है उसके साथ यूथ है, उनके साथ

0: है तो एस्पिरेशनल इंडिया इज लुकिंग फॉर अ चेंज एंड अ न्यू फ्यूचर फॉर तमिलनाडु.
1: प्रॉब्ली द मैनिफेस्टेशन एज यू से ऑफ द यंग इंडिया कमिंग इन द फॉर्म ऑफ टीवी के विजय. मीनवाइल वी आर जॉइंड इन बाय आवर कोलकाता कॉरेस्पॉन्डेंट कल्याण लाहा. कल्याण वेलकम, दिस इज निशित कुमार दिस साइड.
2: Hello, Nishit.
1: Yes, Kalyan. Hello. So the BJP kind of, rolling and rolling and rolling, 69, almost 70 now, plus 35 seats up from the last time of 2021. And TMC, not expected like this, going down to 34, minus 40 this time from 2021. This is humongous. All of us, when it came to exit polls and all, when we saw that, it was almost running neck and neck, and almost every kind of political pundit or every sane person would have thought that probably the BJP might have a slight edge over it, or maybe 5 seats or 10 seats, but this is humongous. Your say on that? You have been there on the ground and covering, we know that extensively.
2: देखिए निशित, जैसा अभी ट्रेंड में आ रहा है, बीजेपी बहुत सारे जगह में अभी आगे है, ट्रेंडिंग हो रहा है, और जैसा आपने मेंशन किया है, द फाइट इज ऑन, नेक टू नेक फाइट हो रहा है अभी. अभी पोस्टल बैलेट के जो काउंटिंग है अभी वो खत्म ही होने वाला है, और ईवीएम का काउंटिंग अभी शुरू हुआ है, तो हमें देखना होगा ये ट्रेंडिंग जो चल रहा है. बीजेपी कैंडिडेट सारे जगह में, जैसे सारे डिस्ट्रिक्ट में, जैसे दे आर लीडिंग, लास्ट में कैसा रहेगा.
3: जी कल्याण जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ममता बनर्जी ने ये नैरेटिव सेट किया कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता दिल्ली से आते हैं वो बंगाल के लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हिंदी में बोलते हैं, बंगला में नहीं बोलते हैं, वो कनेक्शन का अभाव है, वो बाहर के लोग हैं, वो बंगाल के नहीं हैं, उनका ये नैरेटिव सेट था. आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वाम दल जो पिछली बार अपना खाता नहीं खोल पाए थे, इस बार उन्होंने भी युवा उम्मीदवारों को ज़्यादा तरजीह दी थी इस चुनाव में. पहले तो ममता बनर्जी के उस नैरेटिव पर क्या बंगाल की जनता का राय है, और साथ ही साथ दूसरी तरफ वाम दलों की क्या स्थिति देख रहे हैं आप, चूंकि चर्चा तो करनी पड़ेगी, 34 सालों तक उन्होंने शासन किया यहाँ पर.
2: देखिए जैसा कि फील्ड का जैसा ट्रेंड है, वोट के जो वोट के आगे से ही हो रहा है इधर पोलिंग करके, वाम जो दल है, लेफ्ट कैंडिडेट इन वेरियस, लेफ्ट हैज प्लेस इन मेनी सीट यंग कैंडिडेट, पीपल आर टेकिंग देम पॉजिटिवली. और ममता बनर्जी का जो रेटोरिक है, जो बाहर से आ रहा है, जो हिंदी भाषी है, बंगाल में उसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो लगता है अभी ये जो ममता बनर्जी का जो रेटोरिक है, पीपल आर नॉट गेटिंग इनटू दैट रेटोरिक.
3: एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे, भवानीपुर में आप बहुत ज्यादा घूमे, लोगों की नब्ज को पकड़ने की कोशिश की, इस समय इलेक्शन कमीशन के पोर्टल के अनुसार वहां से सुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं, लोगों के जहन में क्या समझ में आया आपको?
2: देखिए जैसा के लोगों के जहन के बारे में आप बोल रहे हैं, तो पीपल आर नीडिंग अ चेंज, नॉट ओनली इन भवानीपुर, in all the candidate, in all the areas, in all the constituencies. और जैसे कि आप बोल रहे हैं क्या कैसा people expect कर रहे हैं, तो जैसे देखिए बहुत सारे जगह में तृणमूल कांग्रेस का वोट है, पॉकेट वोट है, और बहुत सारे जगह में बीजेपी का भी वोट है, पॉकेट वोट. तो हमें देखना होगा कि बाद में क्या हो रहा है.
3: जी हाँ कल्याण जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे.
1: या उमेश जी, इवन कल्याण वाज मेंशनिंग अबाउट द ग्राउंड सिचुएशन ओवर देयर नाउ, दिस इज ह्यूमंगस राइट, 70 सीट्स ऑलमोस्ट फॉर द बीजेपी एंड 34 फॉर द टीएमसी. दिस वाज, बट यू वॉन्ट बी सरप्राइज, यू हैव बीन मेंशनिंग दैट दिस हैज बीन द ट्रेंड, दिस हैज बीन द हिस्ट्री, इट्स बीन हैपनिंग टाइम एंड अगेन. बट अगेन कमिंग बैक टू द ग्राउंड ग्रास रूट्स पॉलिटिक्स इन बंगाल, तृणमूल कांग्रेस, लाइक एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इट्स द ग्रास रूट, तृणमूल, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू लाइक अदर फैक्टर्स, लेट्स टॉक ऑफ द आरजी कर इंसिडेंट व्हिच हैपेंड, यू मेंशनड एज वेल इन अर्लियर डिस्कशंस, एंड अदर थिंग, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ कोर्स, दैट इज वन. Now, do you feel that the people of Bengal, the natives over there, because I have also been traveling, over the past 10-15 days, and I have been seeing people kind of, you know, rushing to Bengal this time to vote, which was not the trend earlier, be it the 2021 or 2016 elections. This time, the enthusiasm was very, very much there for us to see. So do you feel that this time really, you know, of course, 92%

0: प्लस परसेंट हैड समथिंग टू से इन दैट।
1: बिल्कुल, जरा जब इस सवाल के पहले आनंद ने एक हिंदी भाषी जो कल्याण लाहा से सवाल पूछा था, तो ये क्या संयोग की बात है कि हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत 30 मई 1826 को कलकत्ता से ही हुई थी और ये 200वां साल चल रहा है, कुछ दिनों में हम 200वीं वर्षगांठ मनाएंगे। तो ये हिंदी को लेकर के सबसे ज़्यादा तो अगर देखेंगे तो कलकत्ता ने ही विकास में योगदान दिया है। सबसे पहले शुरुआती अखबार भी वहाँ से निकले, भारत मित्र निकला और उदंत मार्तंड की तो चर्चा होती ही है, मतवाला मंडल का जो संपादकीय था वो तो बड़ा फेमस था, मतवाला भी वैसे निकला। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या है कि राजनीति अपने ढंग से इन सब विषयों को उठाती है। ममता बनर्जी ने तो नारा दिया था कि बहिर्गतों, मतलब जो बाहरी है, वो आएंगे, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये कैसे भूल जाती हैं कि करीब 60 लाख के करीब मतदाता जो हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से गए हुए लोग हैं, जो वहाँ के एक ज़माने में जो जिन्हें चटकल कहते थे, जूट मिलों में काम करते थे या बाकी उद्योगों में काम करते थे। ये कैसे भूल जाते हैं कि कलकत्ता का जो पूरा स्ट्रीट बिजनेस है, चाय पान की दुकानें हैं, वो इन्हीं पूर्वियाँ लोगों की है, जो ड्राइवर हैं सबसे ज़्यादा वहीं के हैं, तो एक तरह से लाइफ लाइन है। तो ये सब बातें राजनीतिक ढंग से उठाई जाती हैं। जहाँ तक सवाल है कि किन मुद्दों पर मतदाता प्रभावित नज़र आया, तो दूसरी बात यह है कि देखिए आज ना कई तरह से सूचनाओं का मतलब आदान प्रदान हो रहा है, संचार क्रांति हो चुकी है। बेशक पश्चिम बंगाल में हो सकता है कि किसी गांव में बहुत ज़्यादा बिजली न रहती हो, लेकिन आजकल लगभग हर हाथ में फोन है, तो सबके पास सूचनाएं हैं। और पश्चिम बंगाल के लोग भी या यूथ भी देख रहा होगा कि हमको क्यों बाहर जाना पड़ रहा है। और अभी भी जब चुनाव अभियान चल रहा था तो बहुत सारे रिपोर्टरों से युवा बोल रहे थे कि हम तो चाहते हैं कि हमारा पुराना कलकत्ता का वैभव लौटे और उसमें हम आकर के काम करें। तो बहुत सारी बातें होती हैं। और रही बात पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में एक ज़माने में खुद भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी को कहा था कि ममता दीदी साक्षात दुर्गा है। तो दुर्गा वाला जो समाज है वहाँ महिलाओं की एक खास तरह से इज्जत होती रही है बनिस्बत बाकी जो सोसाइटी है उनकी तुलना में। और उस सोसाइटी में अगर आरजी कर की घटना होती है और घटना अगर हो भी गई तो उसको डील कैसे किया जाए, असली बात ये थी। और कलकत्ता या पश्चिम बंगाल की महिलाओं के मर्म को सबसे ज़्यादा चोट उसी ने पहुंचाई। और अगर ये नेक टू नेक फाइट दिख रही है या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है रुझानों में, तो आप देखिए कि पिछले चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी 2021 में, आप देखेंगे कि जो टोटल वोटिंग हुई थी उसमें 4% पुरुष मतदाताओं ने तृणमूल कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के बनिस्बत वोट दिया था और महिला मतदाताओं ने 10% का अंतर था महिला मतदाताओं का। अब ये देखने की बात है, ये तो पूरे नतीजे आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से दिख रही है भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है तो कहीं ना कहीं महिलाओं का तो समर्थन उनसे छीजा है।
0: थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा उमेश जी आपसे, नेक नेक तो बिल्कुल भी नहीं है अभी जैसा दिख रहा है बंगाल में। And behind the humdrum of all these assembly elections, let's not forget that there were by-elections also which were held this time in 7 assembly constituencies across 5 states, and the counting for them are also underway at the moment. And these include Davanagere South and Bagalkot assembly constituencies in Karnataka, Baramati and Rahuri constituencies in Maharashtra, Umret in Gujarat, and Dharmanagar in Tripura, and Koridang Assembly constituency in Nagaland. And the BJP is leading in 4 constituencies, while the Congress and the Nationalist Congress Party, that is NCP, are leading in 1 seat each. In Davanagere South constituency, Srinivasa T. Dasa Karyappa of the BJP is leading, while in the Dharmanagar, BJP's Jahar Chakraborty is maintaining a lead of more than 5,600 votes, while in Umret, Harshad Bhai Govind Bhai Parmar of the BJP is leading by more than 8,300 votes, and in Rahuri, Akshay Shivaji Rao Kardile of the BJP is in the lead. And in the Bagalkot constituency, the Congress candidate Umesh Hulappa Meti is leading by more than 10,000 votes, while Sunetra Ajit Pawar of Nationalist Congress Party is leading in Baramati constituency. Sanjeev Ji.
2: संजीव जी पर वापस आएंगे, लेकिन सुपर वीआईपी टैली पर अगर आपकी दिलचस्पी है तो आपको बता दें कि असम के जालुकबाड़ी से हेमंत बिस्व शर्मा इस समय काफी बड़ी बढ़त पर चले गए हैं, लेकिन असम के जोरहाट से गौरव गोगोई इस समय 3,937 मतों से पीछे चल रहे हैं।

केरल के धर्मदम से पेनुराई विजयन इस समय 5008 वोट से पीछे चल रहे हैं। केरल के कांजिरापल्ली से एडवोकेट जॉर्ज कुरियन, जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, 2086 मतों से पीछे चल रहे हैं। केरल के निमोम से, जिसकी चर्चा कर रहे थे उमेश जी, राजीव चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं। तमिलनाडु के पेरम्बूर से सी जोसेफ विजय यानी सुपरस्टार विजय टीवीके के इस समय बढ़त पर हैं। कोलाथुर से डीएमके के एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं। चेपॉक थिरुवालिकेनी से डीएमके के उदयनिधि स्टालिन भी इस समय पीछे चल रहे हैं। चूंकि विजय दो जगह से इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, तो तिरुचिरापल्ली ईस्ट से भी सी जोसेफ विजय टीवीके के इस समय बढ़त पर चल रहे हैं। इस समय पश्चिम बंगाल से जो बड़ी खबर सामने आ रही है, उसमें भवानीपुर से इलेक्शन कमीशन के पोर्टल के अनुसार अब सुवेंदु अधिकारी पिछड़ गए हैं और ममता बनर्जी इस समय आगे चल रही हैं। नंदीग्राम से सुवेंदु अधिकारी बढ़त बनाए हुए हैं। साथ ही साथ थट्टन चावड़ी से एन रंगासामी, जो एआईएनआरसी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो 3,447 मतों से

0: ये तो इनिशियली तो टक्कर रहेगा, ये जो पहले राउंड हुआ है इसमें 14 जो बूथ है, 6 मुस्लिम प्रण बूथ है, उसमें भी वो लोग जो 90-95% मुस्लिम वोट को पिछले बार मिलता था, इस बार नहीं मिला, क्रैक है।
1: राइट उमेश जी, वी जस्ट हर्ड सुवेंदु अधिकारी से, आई मीन दैट दे वर मोस्टली यू नो द बीजेपी इज and also the trends kind of manifesting or pointing towards that direction only. Now, a more interesting point I would like to make here, or rather ask you, who would be the chief minister in West Bengal?
2: अभी ये तो
1: सुवेंदु अधिकारी, नो
2: देखिए,
1: इट्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट दैट आई एम आस्किंग
2: आपके सवाल पर, सवाल का जवाब देने से पहले जब आपने इस के पहले एक संजीव जी से पूछा था ना, वो सुनेत्रा पवार के बारे में, उसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि उनको एक तरह से वॉक ओवर दिया गया है, जो शिवसेना ने वहां से कैंडिडेट दे करके, कांग्रेस ने दे करके हटा लिया था, शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस गठबंधन ने कैंडिडेट की घोषणा भी कर दी थी, उसके बाद उसको वापस ले लिया था, तो वो तो ठीक है। अब आप बोल रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा, अभी मुझे लगता है कि
1: नाउ व्हाई आई एम आस्किंग यू, मैं क्यों ये पूछ रहा हूं, क्योंकि अभी हमने सुवेंदु अधिकारी को सुना और ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि सुवेंदु अधिकारी ने कितना काम किया है, बिग फेस फॉर द बीजेपी इन इन वेस्ट बंगाल, प्रोबेबली द बिगेस्ट एट द मोमेंट इफ यू लुक एट इट। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या सुवेंदु अधिकारी हमारे अगले मुख्यमंत्री, भाजपा के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं?
2: मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें अभी कम से कम 1 बजे तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि उसके बाद पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगा परिदृश्य। और रही बात यह है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, खासतौर पर आप हाल के कुछ वर्षों में आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि शुभेंदु अधिकारी ही होंगे या हेमंत विश्व शर्मा ही होंगे या कौन होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। आप देखिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में पूरा, मतलब एकदम हिस्टोरिक विक्ट्री जिसको कहते हैं, ऐतिहासिक विजय मिली, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव बने। तो इसलिए ये कहना कि वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, खासतौर पर आज की भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा मुश्किल,
1: थोड़ा खतरनाक हो सकता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि टोपी में से कोई दूसरा खरगोश निकल सकता है?
2: बिल्कुल। इसलिए अच्छा, फिर वो थोड़ा सा चर्चा की शुरुआत अभी बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना कि प्री है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा वोटों पर ही बात करें तो ज्यादा अच्छा है कि कैसे वोट मिल रहे हैं।
1: यू आर प्लेइंग वेरी सेफ उमेश, आई अंडरस्टैंड।
3: संजीव जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं?
4: भारतीय जनता पार्टी की जो प्रक्रिया रही है, वो चीफ मिनिस्टर पहले डिक्लेयर ही नहीं करते, अगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर है तो उसको चलाते हैं, लेकिन लास्ट टाइम जैसे उमेश जी ने बोला कि शिवराज सिंह चौहान सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे लेकिन उनको भी हटा दिया गया, तो बीजेपी की प्रक्रिया पोस्ट पोली होती है, उसके बाद एक प्रक्रिया से जाएंगे।
3: तो संजीव जी, आपका जो इशारा है, क्या असम में भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि ट्रेंड्स में तो भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही, क्या वहां चीफ मिनिस्टर में बदलाव देख रहे हैं आप?
4: मुझे वहां नहीं लग रहा, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा अभी नहीं लग रहा, बाद में बीजेपी क्या करेगी, बिकॉज बीजेपी आपने देखा होगा उत्तराखंड में या कई अदर स्टेट, बाकी स्टेट्स में भी चीफ मिनिस्टर बदलती है ताकि एंटी इनकम्बेंसी जो चीफ मिनिस्टर की है वो खत्म हो जाए। जैसे आप केरला में देखेंगे तो केरला में चीफ मिनिस्टर एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी थी उनके खिलाफ, तो केरला में पहली बार लेफ्ट सरकार, जो पूरे विश्व में पहली वेस्ट बंगाल, पहली
2: केरल की सरकार,
4: केरल में सरकार बनी थी 1957 में जी। तो आज अगर केरला में उनकी सरकार खत्म होती है, अगर कांग्रेस वहां यूडीएफ आती है, तो एक तरह से लेफ्ट का खात्मा होगा और लेफ्ट की अब कोई सरकार नहीं बचेगी पूरे देश में। तो जहां लेफ्ट ने मतलब एक हिस्ट्री बनाई थी कि पूरे विश्व में उन्होंने वो,
3: जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लेफ्ट का खात्मा होना तय नजर आ रहा है।
1: So coming to Tamil Nadu, for the first time the AIADMK has nosed ahead or inched ahead of the TVK, and DMK, as we all know, is languishing back. AIADMK inching forward, nosing ahead with 41 seats and the TVK at 39. This is the first time happening when the counting began this morning.
3: जी हाँ बिल्कुल, और जैसा कि तमिलनाडु पर भी चर्चा कर रहे हैं, और पश्चिम बंगाल के जो ताज़ा रुझान है, भारतीय जनता पार्टी 76 सीटों पर आगे चल रही है। एक दिलचस्प आंकड़ा भी आ रहा है उमेश जी बहुत संक्षेप में जाना चाहेंगे, मुस्लिम बहुल 111 सीटों में से 42 के रुझान आए हैं, जिसमें 17 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और 23 पर तृणमूल कांग्रेस। यानी माना जा रहा था कि एक विशेष वर्ग भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करता है, लेकिन इन आंकड़ों से कहा

0: भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। अमेरिका होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अटलांटिक महासागर में एक क्रूज पर हंता वायरस के प्रकोप से 3 लोगों की मौत। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने और अधिक मामलों की चेतावनी दी। और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अमेरिका को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नेटो के सबसे महत्वपूर्ण साझेदार बताया। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
1: नमस्कार, जनादेश 2026 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में इस समय विधानसभा चुनाव की मतगणना चल रही है। ताजा रुझान क्या है, स्थिति कौन से बड़े उम्मीदवार इस समय बढ़त पर हैं, हम ये लेकर आकाशवाणी पर आते हैं। और इस समय हमारे साथ, मैं हूं आनंद श्रीवास्तव, मेरे साथ हैं को एंकर निशित कुमार और राजनीतिक विश्लेषक उमेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस समय जो सूरत हाल है वो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बड़ी बढ़त पर नजर आ रही है, साथ ही साथ असम में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी बढ़त बना ली है। लेकिन सबसे दिलचस्प टक्कर इस समय तमिलनाडु में देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पर नई नवेली सुपरस्टार विजय की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती नजर आ रही है। डीएमके और एआईडीएमके भी वहां पर जोरदार टक्कर में है। डीएमके पिछड़ती नजर आ रही है, एआईएडीएमके काफी आगे नजर आ रही है। पुदुचेरी में भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। केरलम में यूडीएफ एलडीएफ पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। उमेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका, और आपसे समझना चाहेंगे कि जो पश्चिम बंगाल में स्थिति बनी है वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही बनती नजर आ रही है आपको?
2: देखिए, जो एग्जिट पोल, आमतौर पर तो एग्जिट पोल को लेकर के इस बार जितना विवाद हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ था। तो एग्जिट पोल एक को छोड़ करके लगभग सभी एग्जिट पोल ने यही बात कही थी कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आगे आ रही है। तो उस लिहाज से कहें तो जो अभी रुझान दिख रहे हैं वो एक्सपेक्टेड लाइन पर ही हैं जी।
3: इनफैक्ट उमेश जी, इट इज़ नॉट इवन ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस इफ आई मे से सो। Because the expected lines was a neck and neck fight, which doesn't seem to be at the moment. That is one. And of course, who would have even thought that Mamata Banerjee, of course, she has inched ahead a bit, you know, in Bhavanipur, where Subhendu Adhikari is also kind of giving her a tough fight. So why I'm saying this is, one is that overall, the TMC

0: Ali going down substantially, that is. And the second one, the leader, Mamata Banerjee, also struggling to get her foot in.
1: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैं उस एक्सपेक्टेड लाइन पर कह रहा था जो एग्जिट पोल कह रहे थे. और दूसरी बात, एक चीज़ ये ध्यान में रखने की है कि ममता बनर्जी की जो यूएसपी रही है उनका स्ट्रगलिंग और फाइटर रोल, आप देखेंगे कि पूरे चुनाव में, खासतौर पर ये 2026 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें उनका वो जो फाइटर जो रूप रहा है वो बड़ा कमज़ोर दिखा है और बार बार वो झुंझलाती हुई दिखती नज़र. और एक चीज़ और है कि जो राजनेता ज़मीन पर होता है उसको अंदाज होता है कि जनता उसके प्रति किस तरह का रुख रख रही है और उसके लिए किस तरह से नतीजे आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं इसका वो आभास था. और निश्चित तौर पर वो पिछले 15 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, राज्य की पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर उनकी पकड़ है और बाकी सारी जानकारियाँ उनको मिल ही रही होंगी. तो जो ममता बनर्जी की यूएसपी रही है, फाइटर, योद्धा, लड़ाका, उन्होंने, ठीक है कि हर मुख्यमंत्री से लोग उम्मीद करते हैं कोई विकास करेगा और आज तो विकास का ही दौर है. एक जमाने में चंद्रशेखर कहा करते थे, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, कि विकास से राजनीति नहीं होती है. लेकिन आप देखेंगे कि 2003 के बाद से बिजली, सड़क, पानी, बीएसपी पर राजनीति होने लगी है. तो ममता बनर्जी से भी इस तरह से उम्मीद तो थी, लेकिन फिर भी उनकी जो यूएसपी थी, यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसको कहते हैं, जो उनका एक रूप रहा है, वो लड़ाका का रहा है, योद्धा का रहा है, वॉरियर का रहा है, जुझारू. वो जुझारूपन इस बार कम नजर आ रहा था, बल्कि झुंझलाया हुआ नजर आ रहा था. जिस तरह से वो उसमें जैसे स्ट्रांग रूम में जाकर के बैठ गई एक दिन 4 घंटे तक, वो कहीं ना कहीं वो
0: क्या आपको क्या क्या कारण लगता है, क्या इस बार वो कमिटमेंट क्यों नहीं है ममता बनर्जी की तरफ से? क्या एक ओवरऑल प्रेशर या 15 साल का एक फटीग फैक्टर भी आपको लगता है कि कुछ?
1: हाँ बिल्कुल, 15 साल तक अगर कोई भी दल सरकार में रहता है तो कुछ ना कुछ तो उसके प्रति एंटी इनकम्बेंसी होती ही है, और वो थी. लेकिन जो बार बार हम लोग कह रहे हैं और उसको रेखांकित किया जाना चाहिए कि पश्चिम बंगाल का समाज महिलाओं को लेकर के बाकी जो उत्तर भारत के समाज की स्थिति रही, हालांकि वहाँ भी अब चेंज हो रहा है, खासतौर पर शिक्षा के बढ़ते प्रसार के चलते, सूचना तकनीक के क्रांति के चलते, लेकिन पूर्वी भारत में आप देखेंगे कि महिलाओं को लेकर के खास तरह का आदर भाव रहा है. महिला एक इस तरह से कभी वो पीड़ित और मतलब वो शासित टाइप का भाव नहीं रहा है वहाँ. वहाँ जिस तरह से आरजी कर की घटना हुई, ऐसा नहीं कि देश के किसी और इलाके में नहीं हो सकती है, हुई, लेकिन उसको लेकर के सरकार का जो रवैया रहा, जिस तरह से उसको डील किया गया, जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा कि महिलाओं को चाहिए कि 9 बजे रात को के बाद घर से बाहर न निकले, और पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं होता रहा है. पश्चिम बंगाल में महिलाओं को लेकर के ऐसा नहीं रहा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम, ऐसे इन सब राज्यों में ऐसा नहीं रहा है. तो मुझे लगता है कि ये सब कारण रहे हैं और यही वजह है कि ये रुझानों में इस तरह के नतीजे दिख रहे हैं.
2: ताजा हाल बताएं तो पश्चिम बंगाल में इस समय भारतीय जनता पार्टी 92 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी 57 से अब 59 सीटों पर आगे चल रही है. केरलम में जो स्थिति बन रही है वो UDF इस समय बड़ी बढ़त पर नजर आ रहा है. असम में भारतीय जनता पार्टी 89 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 24 सीटों पर आगे है. तमिलनाडु में इस समय TVK 70 सीटों पर आगे चल रही है, जो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां पर DMK और AIDMK के बीच ही कड़ी टक्कर है. AIDMK इस समय 60 सीटों पर आगे है, DMK प्लस 38 सीटों पर इस समय वहां पर आगे बढ़ती नजर आ रही है. पुदुचेरी की स्थिति की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस 3 पर है, AINRC 11 पर आगे चल रही है, और जबकि TVK का वहां पर इस समय खाता नहीं खुला है. तो ये स्थिति है. असम में 89 सीटों पर उमेश जी इस समय भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, यानी क्लीन मेजॉरिटी से भी काफी ज्यादा सीटें जीतती नजर आ रही है.
1: और दो तिहाई
2: जी, और चर्चा आप कर रहे थे कि भारतीय राजनीति में दूसरे मामा का प्रादुर्भाव हो चुका है.
1: बिल्कुल, भारतीय राजनीति में शिवराज सिंह चौहान जो हैं मामा के रूप में ख्यात रहे, लेकिन इस बार हेमंत विश्व शर्मा ने अपने को खुद मामा के रूप में स्थापित किया, और जिस तरह से चुनावी रैलियों में उनको समर्थन मिलता रहा, और वो भी जिस तरह से पूरा प्रोटोकॉल तोड़ करके सुरक्षा घेरा तोड़ करके जनता के बीच में जाते रहे, तो निश्चित तौर पर वो मामा के रूप में तो स्थापित हुए ही हैं और उसका नतीजा दिख भी रहा है। नतीजों में कि जहां आप सोचिए कि 126 विधानसभा सीटें हैं असम में और वहां आप बता रहे थे कि 80 सीटों पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी, तो लगभग 2/3 मेजॉरिटी और ये बहुत ही ज़बरदस्त मेजॉरिटी मानी जाती है, बहुत बड़ी जीत मानी जाती है।
2: तमिलनाडु में टीवी के 70 सीटों पर इस समय आगे है।

0: एआईडीएम के 60 पर बढ़त बनाए हुए है और डीएमके के पास 38 के आसपास की बढ़त है, क्या वहां पर त्रिशंकु विधानसभा की आप स्थिति देख रहे हैं?
1: हाँ, फिलहाल तो वही लग रहा है, लेकिन एक चीज ये है कि कुछ कुछ 1977 जैसा इतिहास दोहराया जा रहा है। आप जानते हैं कि एआईडीएमके के संस्थापक एम जी रामचंद्रन 1972 तक डीएमके के साथ थे, जो स्टालिन के पिताजी थे करुणानिधि उनके साथ थे, लेकिन 1972 में उनसे थोड़ा मतभेद हुआ, बड़ा मतभेद हुआ और उससे उन्होंने अलग पार्टी बनाई और 1977 में चुनाव लड़ा तो भारी जीत हासिल की, 1977 में हासिल की, 80 में हासिल की, 87 तक वो लगातार मुख्यमंत्री रहे। तो निश्चित तौर पर इसी तरह की राह पर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी टीवीके जो है वो तमिलनाडु दिख रही है आगे। और लेकिन जो हंग असेंबली है, मुझे ऐसा लगता है कि अब पलानी सामी को थोड़ा अफसोस हो रहा होगा कि काश कि वो टीवीके के साथ समझौता कर लिए होते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहती थी, उसने कोशिश भी किया, तो शायद नतीजे और इनके फेवर में और ज़्यादा बेहतर हो सकते थे। आप जानते हैं कि जो टीवीके के संस्थापक हैं विजन, वो चाहते थे मुख्यमंत्री का पद, पलानी सामी तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक का पद भी नहीं देना चाहते थे। तो आप देख रहे हैं कि उन्होंने तो उनको भी पछाड़ दिया है। अभी जो मेरे सामने चुनाव आयोग का डाटा है उसकी वेबसाइट का, तो उसके हिसाब से तो वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर रही है टीवीके। तो ये 1977 तमिलनाडु में दोहराया जा रहा है। हाँ, तब 1977 में एमजीआर को स्पष्ट बहुमत मिला था, अभी रुझानों में ऐसा नहीं लग रहा है कि टीवीके स्पष्ट बहुमत हासिल कर पाएगी। जी,
2: मीनवाइल वी आर जॉइंड इन बाय अमृता मधु कायवालिया, एक्सपर्ट फ्रॉम गुवाहाटी। वेलकम अमृता।
3: थैंक यू फॉर हैविंग मी।
2: या अमृता, वी वुड लाइक टू नो अबाउट द ग्राउंड सिचुएशन देयर इन गुवाहाटी। ऑफ कोर्स वी हैव सीन लाइक द बीजेपी एंड द एनडीए काइंड ऑफ मेकिंग अ क्लीन स्वीप दिस टाइम, सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू हैव बीन द डिफाइनिंग फैक्टर सो फार एज द दिस काइंड ऑफ अ मैंडेट फॉर द बीजेपी गोज?
3: It was quite evident even earlier this year that the BJP was in for another term. And the reason specifically for that is that the BJP has delivered on the ground in terms of infrastructural and developmental projects. There is a bit of anti-incumbency against perceptions around the Chief Minister of Assam. But to counter him, I don't think so. There was a very formidable effort from the opposition. You did not have the Congress coming up with a very strong fight against him. You had the Congress making Gaurav Gogoi the president just months ahead of the elections. And you have the Congress stitching an alliance with two other regional parties barely weeks ahead of the election. So that sort of set them behind in this electoral race. And what you see today is pretty much the work that the BJP has been putting on in the ground in the last few in the last few years, I would say.
1: उमेश जी, अमृता, मैं उमेश चतुर्वेदी बोल रहा हूँ। ये बताइए, आप जी, तो असम से आती हैं, नमस्कार
3: जी,
1: किस तरह से ये तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को नेता बनाया गया और इसके बावजूद कांग्रेस फाइट करती हुई नहीं दिख रही है? आपने कहा कि फाइट कर रही है, लेकिन रुझान में जो नतीजे दिख रहे हैं उसमें तो फाइट नजर ही नहीं आ रही है। 2/3 से ज्यादा बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे?
3: जी नहीं, मैं आपको यही कह रही थी कि जैसे कांग्रेस की जो एक चुनावी एक जो फाइट हो रही होनी चाहिए थी कांग्रेस और उसकी अलायंस पार्टीज को, वो नहीं हुई है। इलेक्टोरली अगर हम देखें, तीन लोकल पार्टीज एक साथ आई हैं और ये दो लोकल पार्टीज हमें लगा था कि कांग्रेस को मदद करेगी, इसलिए क्योंकि यही दो पार्टीज थी रीजनल पार्टीज जिनने लास्ट टाइम कांग्रेस जिन्होंने लास्ट 2021 इलेक्शंस में पोस्ट सीए आंदोलन के बाद भी कांग्रेस की काफी वोट्स मतलब ले ली थी अपनी तरफ। तो ये जो अलायंस इन्होंने स्टिच किया था और ये जो कांग्रेस की जो एक इलेक्टोरल एफर्ट रहती है, जैसे आप किसी भी चुनाव पे जाते हैं आपकी एफर्ट रहती है, मुझे लगता है उनमें काफी कमी रही है क्योंकि संगठन आपकी इतनी और कांग्रेस के जितने भी मतलब लीडरशिप है उन्होंने गौरव जी को असम में प्रेसिडेंट के तौर पे चुना जस्ट वीक्स बेली मंथ्स मतलब 6 महीने 6-7 महीने पहले ही उनका नाम आया एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस यूनिट इन असम। एंड ये जो अलायंस

0: थी अलायंस भी कुछ हफ्तों पहले ही आई है, तो ये मुझे लगता है कि इन जो एक तैयारी होती है इलेक्शन के लिए, वो उनको और ज्यादा करनी चाहिए थी, स्पेशली अगर आपके सामने एक ओपोनेंट जो है, जो हिमंता बिश्वा शर्मा की तरह एक ओपोनेंट है, जो पॉलिटिकली बहुत ही एजाइल है, पॉलिटिकली बहुत अनफॉरगिविंग है, वो बहुत मतलब ही हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, ही इज ऑन द बॉल ऑल द टाइम, इन द सेंस कि आप वो किसी चीज मतलब को ही डजन लीव अ स्टोन अनटर्न, वो किसी तरीके से कुछ भी मतलब छोड़ते नहीं है, वो हर चीज को देखते हैं। अगर आप देखेंगे
1: जी
0: उनकी
1: जी बिल्कुल।
0: अलायंस तब आपको समझ में आएगी।
1: राहुल गांधी भी
0: आई जस्ट
1: बहुत
0: टेक
1: ज्यादा
0: वन मिनट
1: प्रचार करते हुए नहीं दिखे, राहुल गांधी भी,
0: जी
1: जबकि
0: जी राहुल गांधी जी
1: गौरव
0: वहां
1: गोगोई
0: प्रचार करते
1: उन्हीं
0: हुए
1: के।
0: नहीं दिखे।
1: जी जी
0: गौरव जी के साथ
2: जी,
0: ये
2: आपको थोड़े
0: गौरव
2: समय
0: जी
2: के
0: को
2: लिए
0: राहुल गांधी
2: रोकेंगे।
0: के
2: पश्चिम बंगाल की ताजा स्थिति इस समय यह है कि 166 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 97 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 64 पर तृणमूल कांग्रेस आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1 पर आगे है और सीपीएम 1 पर इस समय बढ़त बनाती नजर आ रही है। और हमारे साथ शुभनील जुड़ चुके हैं कोलकाता से। शुभनील, आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: थैंक यू।
2: शुभनील जी, आज एक तरफ जश्न है तो दूसरी तरफ मातम का भी माहौल होगा, लेकिन जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने उठाए थे कि ममता बनर्जी के शासन में बहुत ज्यादा हिंसा फैल रही है, साथ ही साथ उद्योगों का विकास नहीं हुआ, राज्य का जो विकास दर है वो बहुत नीचे रहा, महिलाओं का वो सशक्तिकरण नहीं हो सका जो बीजेपी चाहती है, और साथ ही साथ एक जो उनका बड़ा फैक्टर है, डबल इंजन की सरकार, क्या ये सब आज फलीभूत होता नजर आ रहा है? क्योंकि लगभग शतक की तरफ आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है कि ये शुरुआती रुझान है, कैसे देखते हैं आप?
3: रुझान जो है वो तो बीजेपी के पक्ष में ही दिख रहा है। सवाल ये होता है कि ये जो इलेक्शन हुआ इसमें जो सबसे सेड और अनसेड जो फैक्टर था वो था एसआईआर, और एसआईआर के मुद्दे पे यहाँ पे जो चुनाव हुआ वहां पे 27 लाख से 30 लाख लोग ऐसे हैं जो अभी भी ट्राइब्यूनल में फंसे हुए हैं, तो उनको छोड़ के ये चुनाव हुआ वो अपने आप में हमारे देश का जो डेमोक्रेटिक इथोस है से नहीं जाता है, वो सबको लेके ही चुनाव होना चाहिए था। खैर जो भी चुनाव हुआ उसमें डेफिनेटली एक तो बात यह है कि 15 साल से ममता बनर्जी का सरकार था उसके चलते एंटी इनकम्बेंसी है, ये तो अभी दिख ही रहा है एंटी इनकम्बेंसी है, हालांकि एक तो राउंड का ही रिजल्ट आया है, आगे देखना पड़ेगा, लेकिन जहां तक रुझान का जो सवाल है वो डेफिनेटली बीजेपी के पक्ष में है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक पोलराइजेशन भी बीजेपी यहाँ पे एक पोलराइजेशन जो है हुआ है, तो ममता एंटी ममता पोलराइजेशन कह लीजिए या फिर कम्युनिटी के वाइज पोलराइजेशन कह लीजिए,
2: जी
3: वो
2: बिल्कुल।
3: तो पोलराइजेशन भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे जहां तक अभी तक जहां जो लग रहा है।
2: कुछ महत्वपूर्ण सीटों के बारे में आपको बता दें तो असम के जालुकबाड़ी से हेमंत बिस्वा सरमा काफी बड़ी बढ़त पर हैं, असम के जोरहट से गौरव गोगोई 3,937 मतों से पीछे चल रहे हैं, केरल के धर्मदम से पिनराई विजयन 15,570 मतों से पीछे चल रहे हैं, कांजुरापल्ली से एडवोकेट जॉर्ज कुरियन जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे 3,959 मतों से पीछे चल रहे हैं, कझाकूटम से बीजेपी उम्मीदवार वी मुरलीधरन 4,907 मतों से पीछे चल रहे हैं, केरल के निमोम से जहां पर भारतीय जनता पार्टी खाता खोलने की तरफ देख रही है राजीव चंद्रशेखर 6,604 मतों से आगे चल रहे हैं, पेरम्बूर से जो नई नवेली पार्टी है टीवी के उसके चीफ सी जोसेफ विजय बढ़त पर चल रहे हैं, लेकिन दो बड़े विधानसभा क्षेत्र जहां से चौंकाने वाले परिणाम सामने आ रहे हैं, तमिलनाडु के कोलाथुर से एमके स्टालिन डीएमके के फेस पीछे चल रहे हैं, चेपॉक थिरु वलिकेनी से डीएमके के उदयनिधि स्टालिन भी पीछे चल रहे हैं, इडापड़ी से एआईएडीएमके के इडापड़ी पलनी स्वामी बढ़त पर चल रहे हैं, और अवनाशी से तमिलनाडु का एक और विधानसभा अवनाशी जहां पर डॉक्टर एल मुर्गन इस समय पिछड़ते नजर आ रहे हैं 2,853 मतों से, क्योंकि विजय जो हैं वो दो विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं तो तिरुचिरापल्ली ईस्ट से वो बड़ी बढ़त पर हैं, सत्तूर से नायनार जो बीजेपी के हैं वो इस समय पीछे चल रहे हैं, भवानीपुर जिस पर सबकी नजरें हैं शुभेंदु अधिकारी इस समय 1,670 मतों से पीछे चल रहे हैं, ममता बनर्जी जो तृणमूल

0: And Ratna Debnath is leading by 3,000 votes in her constituency. So this is another very significant thing which is coming in. But Shivendu, you mentioned about the fatigue factor here, 15 years of rule of the Mamata Banerjee. But generally, even if you look at the things which over the past few months, Mamata Banerjee is so we could see her on the back foot this time, if not the back foot, not that aggressive that we have seen her over the years. Now, how do you attribute this thing, with the manifestation of the results that we, not the results, of course, the trends that we see at the moment?
1: No, two, three things happened. One was, of course, you mentioned the Arjikot. The Arjikot incident galvanized a huge protest movement against the government just almost two years back. And the Kolkata suburban middle class came out in large numbers since the TMC government at that point of time. Second is the school service commission corruption. 26,000 teachers lost their jobs, some of whom were innocent. They didn't pay any bribes, but they had to lose their jobs. And third is a general, for example, if you look at the student union elections, we have had student union election for a very long time. The government did not allow any student union election. Mm-hmm. There were serious allegations of malpractices, rigging during the panchayat elections. So clearly there has been some kind of anger. And now to the results are showing that a very significant amount of anger against the government, and which is now getting translated. And the BJP, through its huge money power, as well as the central agencies, as well as the election commission, the SIR is a very contested issue. I would have been very happy if that everybody who are genuine voters could have voted, but that is not the case. That is the most worrying part of this election. Whoever wins, they will always carry this baggage that a large number of our co-citizens, our co-patriots could not vote.
2: जी बिल्कुल शवनील, आगे भी आपसे राय लेते रहेंगे. कुछ प्रमुख सीटों के बारे में आपको बताएं तो मठभंगा जो पश्चिम बंगाल की सुरक्षित सीट है, वहां से भारतीय जनता पार्टी के निशित प्रमाणिक आगे चल रहे हैं. दिनहाटा से तृणमूल कांग्रेस के उदयन गोहा पीछे हैं. तूफानगंज से भाजपा उम्मीदवार मालती रवा रॉय पीछे हैं. बहरामपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी पीछे हैं. इसी सीट पर तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार नारू गोपाल मुखर्जी भी पिछड़ रहे हैं. बागड़ा सुरक्षित सीट से भाजपा उम्मीदवार सोमा ठाकुर ने बढ़त बना रखी है. भवानीपुर से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी पीछे हैं. यहां तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी आगे चल रही हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से बढ़त बनाए हुए हैं. राष्ट्र बिहारी सीट से भाजपा के स्वप्न दास गुप्ता आगे हैं. श्यामपुकुर से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार शशि पांजा पीछे हैं. शिवपुर से भाजपा उम्मीदवार रुद्रनील घोष ने बढ़त बना ली है. मोयना से भाजपा के अशोक डिंडा पीछे चल रहे हैं. अशोक डिंडा जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज रहे हैं. एग्रा से भाजपा उम्मीदवार दिवेंदु अधिकारी आगे हैं, जबकि आसनसोल दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के अग्निमित्र पॉल आगे चल रहे हैं. और इसी के साथ हमारे साथ सुशील तिवारी जो आकाशवाणी संवाददाता है वो भी जुड़ रहे हैं. सुशील जी, चूंकि आप चेन्नई में हैं और वहां पर तो एक दूसरे तरह की राजनीति के रुझान हमें नजर आ रहे हैं, चूंकि जो ताजा रुझान है उसमें टीवी के जो सुपरस्टार विजय की पार्टी है 97 सीटों पर इस समय आगे पहुंच गई है. 214 के रुझान आए हैं. AIADMK 63 पर आगे है और सत्तारूढ़ DMK 37 पर आगे है और उसकी सहयोगी कांग्रेस 3 पर आगे चल रही है. तो क्या आपको लग रहा है कि तमिलनाडु में आज जैसे जैसे शाम ढलेगी वहां राजनीति का नया सवेरा होने वाला है?
3: बिल्कुल बिल्कुल. देखिए क्या है कि तमिलनाडु की राजनीति में एक जबरदस्त परिवर्तन दिखा है और किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी. लोगों ने ये जरूर शुरू में जो राजनीतिक पंडित हैं, विश्लेषक हैं, उन्होंने ये जरूर माना था कि जो विजय की पार्टी है TVC वो थोड़ा बहुत अपने वोट जो है वो वोट परसेंट ले सकती है, वोट शेयर ले सकती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में सीटें उसे मिलेंगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था. तो सनसनी जिसे कहेंगे, आज की सनसनी तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव की, वो एक जोसेफ विजय हैं जो कि खुद दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं जहां से वो लड़ रहे थे. और सबसे हैरानी की बात यह है कि जो एम के स्टालिन जो कि निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं,

0: वो अपनी सीट से पीछे चल रहे थे, उनके छोटे भाई, उनके बेटे और डिप्टी सीएम उदय निधि जो है वो भी अपनी सीट से, जो चेपक सीट है चेन्नई की, वहां से पीछे चल रहे हैं। और चेन्नई में एक तरीके से सूपड़ा साफ हो गया है डीएमके का। स्ट्रांग होल्ड था डीएमके का, पिछली बार पार्टी ने अधिकांश सीटें जीती थी, और इस वक्त सभी सीटों पर टीवी के जो है उसके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, और एक तरीके से कहा जाए कि जो सिनेमा, जो एक आमतौर पर मनोरंजन का माध्यम है, वो तमिलनाडु में राजनीति में प्रवेश का एक बड़ा माध्यम है, एक बार फिर से साबित हुआ है।
1: सुशील, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टीवी के फैक्टर हियर. ऑफ कोर्स नाउ विथ ऑलमोस्ट द पार्टी नियरिंग 100 सीट्स नाउ, एंड वी सी दैट द डीएमके एज वेल एज द एआईएडीएमके लैंग्विशिंग फार बिहाइंड. एआईएडीएमके एट 63 एंड द डीएमके एट 37, द इनकम्बेंट पार्टी. सो कैन वी सेफली से, और रादर यू नो इट्स वेरी एविडेंट इवन नाउ, दैट द टीवी के और विजय, he could be you know the next leader in Tamil Nadu. And of course I'm talking of the chief ministerial candidate here. Your say on that?
0: Definitely, because although it is still the leads, the trends which will convert into the seats in maybe in the later evening, because it is a multi-cornered elections, so the counting may end till the evening or late night at some places. But overall, it seems that Vijay is the big contender for the chief ministership. He will capture the Fort St. George, as they say in the political terms here. But the party will, as per the numbers right now, can fall short of, little short of the majority, which is 118, because of the 234 seated assembly. So it is 118. So they may fell short of some seats
1: Right, Sushil.
0: to get the majority.
1: Right, Sushil. In which case it becomes a bit more, complex. You know, if it falls short of the 118 mark, as you mentioned.
0: Exactly,
1: So in
0: exactly.
1: which yes, so in which case, what scenario do you see emerging? Would the BJP, you see, kind of would extend its hand, you know, and catapult him to the throne?
0: Well, it will be too early to say something about where they will get the support from BJP or Congress, but they can eye on some independents also, some little small parties also, which are which can change change sides and go to their fold also. We have our Chennai correspondent Joy with us. She will throw more light on these equations.
2: हेलो
3: जी
1: राइट
3: जॉय, स्वागत है
2: सीन
3: आपका. और आपसे
2: द
3: यही
2: ट्रेंड
3: समझना चाहेंगे कि जी बताएं.
2: या द ट्रेंड शो दैट टीवीके इज सिक्योरिंग द होल स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड इट इज द न्यू जेन व्हिच हैज बीन कंट्रीब्यूटिंग टू दैट फैक्टर. एक्चुअली द चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट कोट आई वुड लाइक टू से इट इट सेज दैट विसिल पोडु एंड द सिंबल ऑफ टीवीके is whistle. So I think that it has added some credibility, like the game of cricket in elections. Because as far as the state governance is concerned, there is no major issue which is coming in the factor of DMK. And like anti-incumbency, we also can't say, because of the star status, the place where Jayalalitha was standing with a great charisma, that charisma has been taken over by Vijay. That we can say.
3: जी बिल्कुल. और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम अपने श्रोताओं को टीवीके के बारे में बता दें. टीवीके यानी तमिलागा वेट्री कजगम, जिसकी स्थापना सुपरस्टार जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने की थी. 2 फरवरी 2024 को पार्टी बनी थी. पार्टी का मुख्य मकसद तमिलनाडु और पुदुचेरी में राजनीतिक लड़ाई लड़ना था. तमिलागा वेट्री कजगम का अर्थ होता है तमिलनाडु विजय पार्टी. और हमारे साथ यहाँ पर जफर इस्लाम जुड़ चुके हैं, और जफर इस्लाम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, और जो बताएंगे कि किस तरीके से इस समय पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन पर. आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा.
4: सर, जो शुरुआती रुझान है उसको किस आधार पे आप देखते हैं?
5: देखिए, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि जो

0: बंगाल में जनता की आवाज़ जो परिवर्तन चाहती थी जनता, वो उसकी झलक जो है अभी जो रुझान है उसमें दिख रही है। हमने बराबर कहा है, जनता चाहती है वहाँ परिवर्तन, परिवर्तन होकर रहेगा। जो लोगों का विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन में है, उनके गवर्नेंस मॉडल पे है, और इसलिए जनता चाहती है कि वैसी सरकार हो जो जनता के हित में काम करे, प्रदेश के हित में काम करे, उनके उत्थान के लिए काम करे। और इसीलिए जनता जो है बिल्कुल मन बना चुकी थी कि वहाँ पर एक बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए, और परिवर्तन आके रहेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और वहाँ एक अच्छी जो जनता के लिए सरकार देगी।
1: Right, Joy, if you are still with us, okay, she is not with us, it seems. So, Umesh ji, as Joy and others were also speaking sometime back in the TVK factor we were talking about. Now, she was also talking about, the cinema factor. In Tamil Nadu politics, it has always been there, be it the Karunanidhi factor, MGR, Jayalalitha, so on and so forth. You know, we have been seeing this since decades now. Now, with this Vijay factor coming in, how much of the new generation, kind of the Gen Z as we call, and others, the younger people, are attracted? And do you also see that the older population, they would have also kind of gone with him this time?
2: बिल्कुल। और तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ अपने फिल्म जो अभिनेता होते हैं, सुपरस्टार होते हैं, उनकी मूर्ति बना करके पूजा भी होती है। उसमें से एक अभिनेत्री भारतीय जनता पार्टी के भी साथ हैं, वो खुशबू सुंदर। लेकिन आप देखिए कि वो किसके साथ जनता जाना चाहती है और लोग जाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर टीवीके के साथ, जिसकी व्याख्या अभी थोड़ी देर पहले पूरी तरह से हिंदी भाषी और बाकी देश के लोगों के लिए आनंद ने बताया कि उस पार्टी का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, तो विजय प्राप्त कर रही है। जेन जी, जिसके अभी हाल में देखेंगे कि नेपाल के चुनाव में उसका असर दिखा कि एक काठमांडू शहर का 35 साल का मेयर अचानक से देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, बालनशाह, तो कुछ कुछ ऐसा है। लेकिन ये अच्छा, एक चीज़ और भी है कि तमिलनाडु की राजनीति में आप देखेंगे कि जनता एक तरह से फैनेटिक अंदाज में सपोर्ट करती है, बाकी राज्यों की तुलना में थोड़ा कुछ ज़्यादा ही दिखता है। बाकी राज्यों में आप देखेंगे कि राजनीति करने वाले लोगों को ही, राजनेता को ही जनता पसंद करती है। वहाँ हीरो फिल्मी दुनिया के जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन उत्तर भारत में भी 1984 के चुनाव में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग, अमिताभ बच्चन भी चुनाव जीत गए थे, लेकिन बाद के दिनों में आप देखेंगे कि वो क्रेज उत्तर भारत में डाउन हो गया। आप देखिए पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन किस तरह से, ज्यादातर लोग तो टीएमसी के साथ ही हैं। तो ये एक भारत विविधताओं का देश है और उसमें एक तरह से चीजें हैं। लेकिन एक चीज है जो इस तमिलनाडु के चुनाव के नतीजों में देखने की है, जो परिसीमन की बात हो रही थी अभी लोकसभा चुनाव सीटों को, और जिस तरह से जनसंख्या के आधार पर परिसीमन की अपने यहाँ व्यवस्था है, और उसका सबसे बड़ा विरोध एमके स्टालिन कर रहे थे। उन्होंने इसकी लीडरशिप अपने हाथ में ले रखी थी। उनका कहना था कि हमने परिवार नियोजन को लागू किया, मतलब हमने, उन्होंने पूरे दक्षिण भारत के राज्यों को जोड़ने की कोशिश की थी, क्या इसका हम खामियाजा चुकाएंगे कि हमारी सीटें आनुपातिक रूप से कम हो जाए? तो मुझे लगता है कि वो एक जमीनी समस्या, अपने ढंग से जमीनी समस्या को उठा रहे थे, जनता ने उसे जमीनी मानने से इनकार कर दिया।
3: दक्षिण भारत में अमूमन सफेद कपड़े पहने जाते हैं, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम और परिसीमन से आधारित जो कानून अभी संसद के विशेष सत्र में लाया गया था, काले कपड़े पहनकर आए थे एमके स्टालिन और उनके सांसद।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजें आप देखिए कि किस तरह से जनता ने उनको नकारा है। तो आने वाले दिनों में इसका भी एक बड़ा असर पड़ेगा, जो इस मुद्दे पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरे नंबर की भी पार्टी नहीं बन रहे हैं, वो तीसरे नंबर की पार्टी बन रहे हैं। और जिस तरह से स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं, हालांकि आपने सुशील से पूछा तो बोल रहे थे कि छोटी पार्टियां बहुत ज्यादा नहीं जीत पाई हैं, जिस तरह से रुझान दिख रहा है नहीं जीतती नजर आ रही है। 6 सीट और 3 और लोग जीत रहे हैं, तो ये 9 लोग मिलकर के भी सरकार, जिस तरह से टीवीके को बहुमत मिल रहा है, उसको कम से कम 15-18 सीटों की जरूरत पड़ेगी, तो नहीं मिल पाएगा। तो मुझे किसी ने लगता है कि किसी न किसी बड़ी पार्टी से, और वो स्वाभाविक रूप से बड़ी पार्टी AIDMK ही हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी, जिस तरह से एमके स्टालिन ने भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम करने की कोशिश की थी, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोशिश करेगी। लेकिन कई सारे मुद्दे प्रभावित होंगे। एक चीज और देखिए कि दक्षिण भारत के राज्यों को इस बात का बड़ा गर्व रहा है कि वो उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में ज़्यादा विकास किए हैं। तो ज़्यादा विकास का मतलब तो ये होना चाहिए कि

एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती, जैन जी को उनके पीछे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है कि ऐसा जो रुझान में नतीजे दिख रहे हैं ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं भारत को समझने के लिए, एक नज़रिए से आप नहीं समझ सकते हैं। एक राज्य में कुछ और मुद्दे प्रभावित हो जाते हैं, दूसरे राज्य में कुछ और मुद्दे होते हैं, लेकिन एक चीज़ है असम और पश्चिम बंगाल के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि दोनों जगह पर मामला उछलता रहा है घुसपैठ का, अवैध जो घुसपैठिए होते हैं, वैसे तो घुसपैठ अवैध ही होती है, तो वो

0: बारे में मैं कहना चाहूंगा कि दोनों जगह पर मामला उछलता रहा है घुसपैठ का, अवैध जो घुसपैठी होते हैं, वैसे तो घुसपैठ अवैध ही होती है, तो वो मामला सबसे ज़्यादा आप जानते हैं असम में उठता रहा है। असम में एक नई पार्टी बनी थी 1985 में, असम गण परिषद जो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसने सरकार भी चलाई।
1: प्रफुल्ल महंता
0: जी हॉस्टल से सीधे लोग गए थे दिसपुर में शपथ लेने के लिए यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से, तो वो मामला वहाँ बहुत, वही मामला पश्चिम बंगाल में है। तो कम से कम भारत के दो राज्यों में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है और चुनाव नतीजों को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। जी,
2: पश्चिम बंगाल से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। भवानीपुर से एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी आगे बढ़ गए हैं। इस समय 6,380 मत उन्हें प्राप्त होते नजर आ रहे हैं और ममता बनर्जी के पास 4,822 मत हैं, जो अभी की काउंटिंग है उस हिसाब से। कुछ और हाई प्रोफाइल सीट्स पर हम नजर डाल लेते हैं तो जालुकबाड़ी से हेमंत बिस्व शर्मा लगातार आगे बने हुए हैं, लेकिन जोरहट से गौरव गोगोई, जो कांग्रेस के फेस माने जा रहे थे, बड़ी संख्या से पीछे चले गए हैं। पिनराई विजयन, एक और बड़ा नाम जो केरल के धर्मदम से हैं, वो भी पिछड़ रहे हैं। कांजिरपल्ली से भारतीय जनता पार्टी के एडवोकेट जॉर्ज कुरियन पिछड़ रहे हैं, जबकि कझुकटम से वी मुरलीधरन भारतीय जनता पार्टी के वो भी पीछे चल रहे हैं। नेमोम से राजीव चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं और पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट, दो ऐसी सीटें जहां पर सी जोसेफ विजय टीवीके के चीफ हैं, वो इस समय आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में जोरदार संघर्ष हमें देखने को मिल रहा है और जो भवानीपुर सीट है वहां से लगातार हम देख रहे हैं कि आईपीएल मैच की तरह वहां पर रोमांच बना हुआ है। कभी शुभेंदु अधिकारी आगे बढ़ जाते हैं तो कभी ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। असम में बीजेपी समय 79 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 24 पर आगे चल रही है, जबकि पुदुचेरी में AINRC 7 पर आगे है, बीजेपी 3 पर आगे है, DMK 2 पर आगे है। तमिलनाडु में 100 यानी शतक जड़ दिया है रुझानों में कम से कम TVK ने, DMK 38 पर आगे है, AIADMK 65 पर आगे चल रही है। और पश्चिम बंगाल का जो ताजा हाल है, 138 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 81 पर।
1: तो शुभनील, you know, coming back to you in Bengal, we've been seeing this seesaw battle between Shubhendu and Mamata happening in Bhavanipur yet again. As we see the latest, Shubhendu Adhikari has just nosed ahead of Mamata Banerjee. Now, how do you see the political landscape changing in Bengal? That is one. And of course, when we come to TMC and Mamata Banerjee in particular, what could be their politics in the coming days and the road ahead for them?
3: Well, first point is that if Mamata Banerjee is trailing in Bhavanipur, she is Trinamool Congress. I don't think that any other leader in the Trinamool Congress has the charisma or the weight that she carries. Right. We just take one constituency from the state and look at it, and if there's Bhavanipur and she is trailing, so that itself is the biggest statement of this election. Much like in 2011 when Buddhadev Bhattacharya lost from Jadavpur constituency. And so that is the story of the election. If in Bhavanipur, Mamata Banerjee is trailing, the tallest leader, the sitting chief minister. If you ask me, I think she was the person who was standing between the BJP win and BJP loss. If she is trailing, then obviously it's a huge, huge, huge political setback for the Trinamool Congress. In the coming days, what will happen to the Trinamool Congress, I am in no position to say. If going by past records, there have been a number of MLAs who have shifted to BJP. Also, there have been many MLAs who have shifted to the Trinamool. And to be fair, the Trinamool Congress has a welfarist politics. It has said many things against the BJP and all that. But it has also not been able to capture the imagination of the people on a very hardcore secular plank. And secondly, obviously the BJP put forward everything that was there in their kitty to win Bengal election, which we all of us have seen. So in the coming days, things will pan out in a way which will not be very good for the Trinamool Congress. That is what I would say, if these trends persist.

0: Right. Now, Amrita, coming to you, one thing is, of course, we see the BJP kind of sweeping elections this time. Now, also, if you look at the background, with the kind of the negative kind of canvassing or whatever, if you look at the Congresses, how they have been conducting themselves for the past few months, and of course, the Pawan Khera incident and all that happened, and the BJP as well, it went all guns blazing, with Hemanta Biswa Sarma, as in pitchforking his, not in a negative way, of course, but with the achievements, with the work that he had done, on the ground. So how do you see, has that kind of the narrative that the Congress wanted to set there has backfired on them a bit?
1: See, I felt that if you look at the results, it clearly shows that the Congress's effort was kind of, it didn't match to what Hemanta Sarma, Biswa Sarma was putting out on the ground. You have developmental works that Assam has really taken into consideration that Hemanta Biswa Sarma has produced in the last 5 years. But Congress, on the other hand, I think they did not take the fight home in the sense that it was a half-baked effort. And right now, you just told us some time ago that Gaurav Gogoi seems to be trailing from a seat. And that should come as a big surprise to the Congress leadership also, because Gaurav in that particular seat, he's an MP from the Jorhat seat, in which assembly, the assembly segment where he's fighting an election, he's the sitting MP from that seat. And he had clinched that seat in 2024, even when BJP put the entire machinery in that seat, and he won with a margin of, I don't remember the exact number, but it was upwards of 40,000, the margin was that. Now, in that very seat, if in the assembly segment you're not going to win, then it says, really tells the Congress party that they need to introspect into their own electoral, forget about the electoral effort that they put in, but also the organizational issues that they might have. If you see, the Congress lost some really big names in the state in the run-up to the assembly elections. The president was
2: जी अमृता आपके पास वापस दोबारा लौटेंगे. कल्याण लाहा आकाशवाणी संवाददाता कोलकाता से जुड़ गए हैं. कल्याण, वहां पर भवानीपुर में जोरदार संघर्ष है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने के बेहद करीब है, बहुत संक्षेप में.
3: हेलो, देखिए, जैसे अभी का ट्रेनिंग अभी चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बहुत सारे सीट्स में अभी आगे चल रहा है. भवानीपुर में कांटे का टक्कर अभी चल रहा है, नेक टू नेक फाइट हो रहा है. बट बीजेपी इज लीडिंग इन मेनी इंपॉर्टेंट सीट्स लाइक इन पानीहाटी, इन नॉर्थ बंगाल दिनहाटा, एंड इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट दैट बीजेपी कैंडिडेट्स इन कोलकाता प्राइम सीट दे आर लीडिंग एट दिस मोमेंट.
2: जी बिल्कुल, और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना भी जारी है. ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरीडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं. अगर वहां की स्थिति बताएं तो उमरेठ से भाजपा उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार बढ़त बनाए हुए हैं. बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुल्लप्पा मोती आगे हैं. दावणगेरे दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार श्रीनिवास टी दस करियप्पा बढ़त बनाए हुए हैं. राहुरी से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजी राव करदीले आगे हैं. बारामती से पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनेत्रा अजीत पवार बढ़त बनाए हुए हैं. अजीत पवार की इस साल जनवरी में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी. और धर्मनगर में भाजपा उम्मीदवार जाहर चक्रवर्ती आगे चल रहे हैं.
0: Yeah, Umesh, it's almost nearing 11 a.m. now. Earlier than expected, we would think that probably by noon or by 1 p.m. or so, the picture would get more clearer. But it seems that even at 11 a.m., just 3 hours into the counting or more than that, the picture is getting more and more clearer. And probably if the trend continues, we see this thing standing.
4: अब बहुत ज़्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है, जैसा कि अभी अतीत का इतिहास जो है, अभी अतीत के जो अनुभव हैं उससे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि अब ईवीएम मशीनें खुल चुकी हैं और उस तरह से आप जानते हैं. आज एक खास तौर पर आजकल हालिया कुछ चुनाव में आप देखेंगे कि जनता क्लियर मैंडेट दे रही है. हालांकि तमिलनाडु में ऐसा नहीं दिख रहा है, फिर भी वो लगभग क्लियर मैंडेट की ओर जाता हुआ दिख रहा है तमिलनाडु. तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अंतर पढ़ने वाला है जो अभी के रुझान है।

0: जनादेश 2026
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जनादेश 2026। पांच चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव नतीजे अब आ रहे हैं और लगातार हम सुबह से आप तक ताज़ा रुझान और नतीजों के बारे में पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता भी चुनाव वाले राज्यों में मौजूद हैं और उनसे भी हम जानकारी ले रहे हैं बीच बीच में। और हमारे साथ कार्यक्रम में आज मेरे साथ हैं अनुभा रोहतगी, मेरी को होस्ट। जी अनुभा,
3: thank you Vishal and welcome once again to Janadesh 2026. As Vishal just said, we are giving you the latest trends and results coming in from the assembly elections that were held in the month of April for four states and one union territory. The states were of course Assam, Tamil Nadu, West Bengal, Kerala and the union territory of Puducherry. And to discuss these trends and the implications for the state politics in the coming days, we have with us two very distinguished people, panelists with us. We have senior journalist Umesh Chaturvedi with us and political analyst Ashok Tandon. Mr. Tandon and Mr. Chaturvedi, welcome to the program.
4: Thank you.
3: Let's before we begin the program, let's quickly have a look at what the trends are at the moment. Before we do that, so let's look at the trends. As in Assam, the trends are showing that the BJP at the moment, which is the ruling party right now in Assam, it is leading on 77 seats. It's one of its alliance partners, AGP, is leading on 10 seats. Another alliance partner of the BJP or the party that is in NDA, that is BPF, Bodoland People's Front, it is leading on 10 seats. The Indian National Congress is leading on 25. Its alliance partner, Riojar Dal, is leading on one seat. UPPL is leading on one seat. And Badruddin Ajmal's AIUDF is leading on two seats. Vishal.
2: जी, और पश्चिम बंगाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है इस चुनाव में और यहाँ का चुनाव बहुत कुछ निर्धारित करने वाला है, देश की राजनीति को भी और एक दिशा भी देने वाला है। यहाँ पश्चिम बंगाल के जो हमारे पास ताज़ा रुझान इस समय मौजूद हैं, जो मिल रहे हैं हमको, वो ये बता रहे हैं कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 94 सीटों पर पश्चिम बंगाल में आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए 152 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं।
3: एंड लेट्स गो ऑन टू तमिलनाडु। इन तमिलनाडु द रूलिंग डीएमके इज एट द मोमेंट लीडिंग ऑन 38 सीट्स। इट्स अलायंस पार्टनर कांग्रेस इज लीडिंग ऑन 4। अनदर अलायंस पार्टनर डीएमडीके इज लीडिंग ऑन 1। वेयर एज द एआईएडीएमके, व्हिच इज राइट नाउ इन अलायंस विद द बीजेपी एंड पार्ट ऑफ द एनडीए, इज लीडिंग ऑन 69। दैट्स एआईएडीएमके लीडिंग ऑन 69 सीट्स। बीजेपी इज लीडिंग ऑन 2 सीट्स। CPI is leading on 3 seats. CPM is leading on 2 seats. The PMK is leading on 7. PTM is leading on 6. And most importantly, Active Vijay's TVK party, which was formed just 2 years ago and is making its electoral debut in these elections, that party is leading on

0: 105 seats. Another party, VCK, is leading on one seat.
1: जी उमेश चतुर्वेदी जी, शुरुआत आपसे करते हैं. तमिलनाडु, ये जो पश्चिम बंगाल के जो हमारे पास रुझान आ रहे हैं, वो एक तरीके से दिख रहा है कि एग्जिट पोल जो आए और उनके नतीजे जो आए वो लगभग सही साबित होते दिख रहे हैं. भाजपा ने बहुत अच्छी बढ़त वहाँ पर बना ली है.
2: बिल्कुल, अब तो रुझानों में वो बहुमत प्राप्त कर चुकी है, तो ये तो बड़ी बात है. कि आप देखिए कि जो पार्टी 2011 में बमुश्किल 4% वोट हासिल करती है, 2016 में वो 10% से कुछ ज़्यादा वोट हासिल करती है, 2021 में वही पार्टी आते आते एकदम से उछाल लेती है और 38%. और जो ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, उस समय वो करीब 48% वोट पाई थी. अब देखिए कि स्थिति पलट चुकी है. भारतीय जनता पार्टी अब तक के जो रुझानों में जो वोट परसेंट जो चुनाव आयोग का डाटा दिखा रहा है, 44% से कुछ ज़्यादा ही वोट हासिल कर चुकी है और रुझानों में तो आगे बढ़ती हुई दिखी रही है, बहुमत प्राप्त कर चुकी है. तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जो 77 सीटें हासिल की थी उसमें से उसके अलावा उसने 38 सीटों पर वो 5% के वोटों के मार्जिन से हारी थी और करीब 43 सीटें ऐसी थी जिस पर 10% के जिनसे वो हारी थी. तो वो क्या है कि इन सीटों पर ये जो 38 और 43 जो करीब 81 सीटें हैं, इन 81 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया और जो 77 सीटें उसके खाते में पहले से थी उसको वो तो मान के चली रही थी, क्योंकि वो एक कहिए कि अलग तरह के सिचुएशन में उसने इस तरह की जीत हासिल की थी तो मान के चल रही थी. तो उसने पूरा काम किया और जो 80 सीटें वहां मुस्लिम बहुल मानी जाती हैं, उन 80 सीटों में से भी आप देखेंगे तो अच्छी खासी सीटों पर वो आगे बढ़त बनाई हुई है. तो ये कहना कि ममता बनर्जी के पक्ष में एक अल्पसंख्यक वर्ग का पोलराइजेशन था वो भी इस धारणा को तोड़ता हुआ नजर आता है. तो ये एक तरह से देखेंगे तो एग्जिट पोल की ओर से जो एक्सपेक्टेड था उसी लाइन पर वहां के चुनाव नतीजे दिख रहे हैं पश्चिम बंगाल के.
0: Mr. Chandan, I'll come to you now. You know, if you look at all the five states, union territories where the election is being held, if we look at the overall Assam, BJP Himanta Biswa Sarma, the CM, is seeking a third consecutive term. If we talk about the Tamil Nadu, M.K. Stalin is seeking a second term. Puducherry CM N. Rangaswamy is seeking a second straight term. In West Bengal, Mamata Banerjee is seeking a fourth straight term. We don't know what the result is going to be yet. And Kerala, again, the LDF, Pinarayi Vijayan, is seeking a third term. So if you look at all the places, all the states and union territories where the elections are being, were held, it's a question of, not just consolidation, but also of, would you say that survival? Because we're seeing a lot of the trends are not coming as per the expectation of the ruling dispensation. What would you say? A lot at stake for all the parties, ruling parties and the CMs.
3: You're right. Certain cases, it's really very disruptive. Particularly Tamil Nadu, if I may say so. All the opinion polls and exit polls were showing DMK alliance to win.
0: Right.
3: And what is coming out is a great disruption in Tamil Nadu politics. A film star is now leading almost.
0: Mr. Chandan, interrupt you right now, because we have online with us Mr. Tom Vadakkan, our BJP spokesperson. Mr. Vadakkan, welcome to Akashwani's Janadesh 2026.
4: सर, शुरुआती रुझान है उसको किस तरीके से देखते हैं?
5: देखिए, अभी ट्रेंड चल रहा है. एक घंटे के अंदर हमें पता लगेगा कि एग्जैक्ट पोजीशंस क्या है, लेकिन इनिशियल ट्रेंड से क्लियर इंडिकेशन है. असम, वेस्ट बंगाल और स्टेटों में भी हम कुछ नए सीट्स पर आ रहे हैं. मोदी जी के लीडरशिप में हमने देखा है ये डबल इंजन गवर्नमेंट सक्सेसफुल है और जो अर्ली ट्रेंड्स इंडिकेट कर रहा है, जनता जनार्दन को विश्वास है जो मोदी जी जो प्रॉमिसेस करते हैं वो डिलीवर करते हैं. और इसी डबल इंजन गवर्नमेंट करीबन हिंदुस्तान के हर स्टेट में होगा आने वाले दिनों में.
0: That was BJP spokesperson Tom Vadakkan speaking to media earlier in the day. Mr. Tandon, back to you.
3: We were talking about Tamil Nadu. For long, Tamil Nadu has seen contest between DMK and AIADMK led alliances. They have been in fact alternating in the office. But now the early trends from Tamil Nadu suggest that

0: vote percentage, there seems to be a swing in favor of BJP up to 7%. If that is going to happen now, then I think the results at most of the exit polls had also indicated the same thing. I think the exit polls have gone wrong only in Tamil Nadu. Mm-hmm. They were predicting the UDF victory in Kerala.
1: Yes.
0: They were predicting a very handsome victory of Assam, BJP in Assam, and also victory of the BJP in West Bengal. So I think let's wait for the final result. But the initial indications very clearly say that there was anti-incumbency against Mamata Banerjee's three terms, and BJP was emerging as an alternative to Trinamool. Now, what has happened to the left front?
1: Exactly.
0: Which was ruling West Bengal for a long time.
1: What More has than happened? 3 decades before Mamata
0: Banerjee. So that means, see, now West Bengal is seeing a two-party system.
1: Yes.
0: Whereas there was no BJP when it used to be left front versus Congress.
1: Yes.
0: Then slowly it emerged as left front versus Trinamool. Now it has emerged as Trinamool versus BJP. So I think it's time for Congress party particularly to introspect what has gone wrong with them in West Bengal. Assam. See, Assam, their leader himself, I think, is trailing. Some time ago,
1: Gaurav Gogoi was
0: trailing.
1: Jora.
0: So I think in a democracy like India, a party which is more than 100 years old, they need to introspect where things are going wrong, because slowly they are losing state one by one, except for Kerala, where the UDF is coming back to power, where Congress, of course, is the leading partner. But I think it's early to analyze all the elections, but initial trends indicate that West Bengal, BJP is doing extremely well. And in Tamil Nadu, the film star turned politician Joseph Vijay is also emerging as a star in Tamil Nadu.
2: Ji, aur is beech hamare samvaddata Deependra ne भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से बात की है. जी,
3: शुरुआती ट्रेंड हम देख रहे हैं, लेकिन हम खास तौर पे जो हमारा सवाल होगा पश्चिम बंगाल को लेकर कैसे देख रहे हैं इसे?
4: देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और वहाँ पे हम लोग 180 भी पहुँच सकते हैं. ये पहली बार होगा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और इसके साथ ही अंग बंग कलिंग, मतलब कि हमारी सरकार बिहार में, हमारी सरकार बंगाल में और हमारी सरकार उड़ीसा में और पूर्वोत्तर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि जिस प्रकार की विकास की प्यास और आवश्यकता पूर्वोत्तर को थी, उसी को देखते हुए आज मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक महिला विरोधी तुष्टिकरण वाली सरकार को बाहर निकालने का कार्य शुरू कर दिया है और मोदी जी की सरकार को लाने के लिए वो वहाँ पे तत्पर है. असम में भी अगर आप देखो तो हमारी तीसरी बार सरकार बन रही है. इसका मतलब हम सरकार जब चलाते भी हैं तो अनलाइक DMK, अनलाइक लेफ्ट पार्टी या अनलाइक TMC, हमारी सरकार डिलीवर करती है, इसलिए तीसरी बार भी हमारी सरकार बनती है.
2: जी, दीपेंद्र हमारे संवाददाता, बीजेपी प्रवक्ता, भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से बात करते हुए. उमेश जी, यहाँ पे पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल को एक लास्ट फ्रंटियर के रूप में देखा जाता था अभी तक, कि उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में बात करें तो भाजपा अपना परचम लहरा चुकी थी. ये एक ऐसा मात्र राज्य बचा था जहाँ पर कि बीजेपी, भाजपा बहुत दिनों से और बहुत सालों से मेहनत कर रही थी. जनसंघ के संस्थापक जो हैं शायद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका गृह राज्य माना जाता है. पश्चिम बंगाल में भाजपा का सत्ता में आना, ये आपको कितना महत्वपूर्ण लगता है और राष्ट्रीय राजनीति पे इसके क्या असर आप आने वाले वक्त में देख रहे हैं?
5: देखिए, माना नहीं जाता है, उन्हीं का गृह राज्य है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का. वहीं कलकत्ता के रहने वाले थे, उनके पिताजी आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे. बिल्कुल. लेकिन एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा कि 1967 में जो कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जो संयुक्त विपक्ष के ने चुनाव लड़ा था, तो उसमें 24 परगना जिले की गोसाबा सीट से भारतीय जनसंघ के गोपाल चंद्र मंडल जीते थे. पहली बार वहाँ जीती थी भारतीय जनता पार्टी 1967 में, तब उसका नाम भारतीय जनसंघ होता था. 58 सीटें लड़ा था भारतीय जनसंघ उस बार, लेकिन एक सीट पर जीत मिली थी. तो निश्चित तौर पर जिस राज्य के निवासी रहे हों भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती संगठन भारतीय जनसंघ के संस्थापक, वहाँ जीत के एक अपने मायने हैं. दूसरी क्या है कि एक चीज़ जो हम पूरी चर्चा में छोड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल हल्के नहीं बल्कि नक्सलवाद के उभार के बाद से देखेंगे।

0: गए तो चुनावी हिंसा के लिए जाना जाता रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में थोड़े बहुत नहीं 58 लोगों की मृत्यु हुई थी ऑन द रिकॉर्ड, मारे गए थे चुनावी हिंसा में। जो पंचायत चुनाव हुआ था उसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसमें 75 लोग मारे गए थे। ये पहला चुनाव है जिसमें एक भी मौत नहीं हुई है, ये बड़ी बात है। इसके लिए चुनाव आयोग को बधाई दी जानी चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग आजकल बड़ा सवालों के घेरे में रखा गया है कि उसने एक तरह से 2.5 लाख केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और BSF और ITBP और CISF के जवानों को उतार करके उसने चुनाव कराया। और हम भूल जाते हैं कि KJ राव 2005 में चुनाव आयोग के एडवाइज़र थे और उन्होंने अगर इस तरह से कड़ाई नहीं की होती तो शायद बिहार में भी, जो वो भी चुनावी हिंसा और बूथ लूट के लिए जाना जाता था, वहाँ पारदर्शी और स्वच्छ मतदान नहीं हो सकता था। तो इन जो पश्चिम बंगाल में जीत जो है ना, पूरब का द्वार है पश्चिम बंगाल, वहाँ देखिए असम में जीत चुकी है, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अरुणाचल में है, त्रिपुरा में है, अब वहाँ एक पश्चिम बंगाल एक प्रश्न प्रदेश बन के रहा था। तो अब प्रश्न प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने हल कर लिया है। चुनाव आयोग को भी हम लोगों को बधाई देनी चाहिए कि उसने हिंसा मुक्त चुनाव कराया है, बहुत छिटपुट हिंसा हुई है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि चुनाव आयोग की ओर से एक मैसेज भी आया है, बाकी 4 राज्यों में चुनावी विजय यात्रा पर रोक चुनाव आयोग ने नहीं लगाई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में लगा दिया है। यह देखते हुए भी कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, उस पर एक जो आरोप लग रहा है, तो मुझे लगता है कि चुनावी हिंसा को रोकने के लिए वो बड़ी पूरी तरह से मुस्तैद है। और पश्चिम बंगाल की जीत जो है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो अब अगले साल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने हैं, या उसके ठीक अगले साल फिर एक साल बाद राष्ट्रीय चुनाव होंगे, तो इन चुनावों के लिए एक उत्प्रेरक का काम करेगा, उत्साह का काम करेगा। और हर चुनाव में जब जीत मिलती है किसी भी पार्टी को तो उत्साहित होती है। उत्साहित तो कांग्रेस भी होगी क्योंकि UDF को जीत मिल रही है केरल में, तो ये इस तरह से भी देखा जाना चाहिए।
1: जी अशोक जी,
2: मैं इसमें थोड़ा खेल प्रेमियों के लिए एक रोचक जानकारी देना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स, टेनिस, इनके कई लोकप्रिय खिलाड़ियों को टिकट दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक डिंडा को टिकट दिया था, और इसी तरह अगर हम देखें तो तृणमूल कांग्रेस ने पूर्व क्रिकेटर शिव शंकर पॉल को मैदान में उतारा, और आगे देखें तो जो TMC ने जो स्वपन बर्मन हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको उतारा। इसी तरह से और बहुत नाम
1: हैं। जी अशोक जी, वी हैव विद अस BJP spokesperson Tuhin Sinha has joined us on line right now. Mr. Sinha, welcome to Akashvani's Janadesh 2026. Sir, what are your initial comments on your thoughts on the trends that are coming in?
3: Well, it's no longer just the trends, because the trends have held on for the last 3.5 hours now.
1: Right.
3: So very clearly, the BJP is headed towards a 3-2 win. Of course, in Puducherry, it's an NDA government which seems to be on its way. But in Assam, it's a very decisive win. In West Bengal, again, it's a very comprehensive win. It's not a close election at all. And if the present trends hold, we are on course to get more than 175 seats at least. Now, very clearly, it's a rejection of the Diamond Harbor model of governance, where intimidation of women, threats and crime were holding sway. And people have expressed their faith in BJP's promise to revive, the rule of law in the state. So it's end of TMC's Gunda Raj in West Bengal.
1: तोहिन जी, आपसे मैं खासकर वेस्ट बंगाल की बात करना चाहूँगी कि आपने जैसे कहा कि हम जो ट्रेंड्स भी देख रहे हैं, 170 सीटों पे बीजेपी पहले अभी ऑलरेडी लीड कर रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस जो वहाँ पर जहाँ सरकार थी जिसकी अब तक, वो सिर्फ 93 सीटों पर है। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा कौन सा एक जो फैक्टर था वो बीजेपी जो अपना इतनी इसने बढ़त ले ली पिछले इलेक्शन में 77 सीटें थी?
3: हमारा पूरा संवाद ही जनता से भय बनाम भरोसा
1: जी।
3: तो जो TMC के आतंक का माहौल पिछले 15 सालों से चल रहा था
1: जी।
3: और पिछले 45 दिन में तो TMC के अगर नेताओं का भाषण आप सुने
1: जी,
3: तो एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर तो ये लोग व्यवहार ही नहीं कर रहे थे। इनका पूरा आचरण एक माफिया एम्पायर का था, लोगों को डरा रहे थे, धमका रहे थे। तो आज महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाजपा पर अपना भरोसा जताया है। अगर आप देखें, रीता देवनाथ जी बड़ी

0: and Rajnikanth. There was speculation that they may be entering politics. So that means there was a vacuum. Suddenly both, I don't know why, Kamal Haasan of course floated a party, yes, but suddenly now there is an emergence of Joseph Vijay, and he has proved that there was anti-incumbency against Stalin government, and alternative AIADMK alliance was nowhere in the picture. So he has captured that vacuum and he has emerged victorious, and we are not very sure whether he will be forming the government on his own, or he may need some support from either one breakaway group of AIADMK or maybe even BJP. You never know, because BJP was trying to cozy him before the election that we will project you as CM candidate, so you come and join us. But he decided to contest on his own. So I think picture is very clear in Tamil Nadu, and the anti-incumbency. See, in three states,
1: yes,
0: Tamil Nadu, Kerala,
1: yes,
0: West Bengal. It is anti-incumbency. The government, sitting governments are being ousted.
1: Yes.
0: And that is a result which I think should be an eye-opener for the parties who are losing. They need to do something, some introspection.
1: Right.
2: जी, और सकलेन अख्तर हमारे संवाददाता इस समय कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद है नई दिल्ली में. जी सकलेन, क्या जानकारी है आपके पास ताजा वहां से?
3: अभी हमारी जो है कांग्रेस मुख्यालय पर जब हम यहां खड़े हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि कांग्रेस के पक्ष में केरल अभी जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी चार राज्यों पर वो किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बच रहे हैं. अभी अभी हमारी बात कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा से हुई थी. पवन खेड़ा ने भी यही कहा कि नतीजे अभी नहीं आए हैं, रुझान है, इसी पर वो किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बच रहे हैं. लेकिन कार्यकर्ता केरल के जो अर्ली ट्रेंड्स हैं, जो रुझान है, उनको देख के काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं.
2: जी धन्यवाद सकलेन. चतुर्वेदी जी, ये यहाँ पर केरल की बात अभी हम कर रहे थे, हमारे संवाददाता भी कांग्रेस मुख्यालय से बता रहे थे, केरल में कांग्रेस की वापसी एक तरीके से देखा जाए तो क्या अब हम ये मान के चलें कि वाम दल जो हैं या वाम राजनीति जो है अब एक आखिरी किला माना जाता था केरलम को, वहाँ से भी अभी धीरे धीरे दरक रहा है?
4: आज़ादी के बाद ये पहला मौका है. वैसे तो पहली बार 1957 में केरल में ही चुनी हुई, कोई दुनिया की चुनी हुई पहली वामपंथी सरकार बनी थी. तो ये तो सही है कि आज़ादी के बाद भारत में पहली बार कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां वामपंथ की सत्ता में सीधी भागीदारी हो या सत्ता जिसके हाथ में है. और जो अनुभा जी ने जो पहले सवाल पूछा था उसमें मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा. पिछले विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में 25 सालों के अंतराल के बाद 133 सीटों के साथ अपने दम पर, हालांकि गठबंधन में चुनाव लड़ा था डीएमके ने, अपने दम पर बहुमत हासिल करके सरकार बनाई थी. इसका मतलब जनाकांक्षाओं का एक बड़ा उफान उनके साथ था. और आप देखेंगे कि वो पूरी तरह से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है उसके विरोध में, कभी भाषा के मुद्दे पर, जबकि भाषा वहाँ गौड़ हो चुकी है. हिंदी का मामला इतना सिर्फ राजनीतिक ढंग से उछाला जाता है. श्रीधर बेम्बू जो जोहो के संस्थापक हैं, उन्होंने कह दिया था कि भैया अगर आप हिंदी नहीं सीखोगे तो बड़ी नहीं होती है, तो उनको भी एक तरह से ट्रोल किया गया था. और वो जो नई शिक्षा नीति है उसको लागू करने से इनकार, आप जानते ही हैं, तमिलनाडु अकेला राज्य जहां नवोदय विद्यालय नहीं है अभी भी. तो केंद्र की नीतियों का विरोध में राजनीति करना, 133 अकेले दम पर, 234 में 133 पाना, ये बड़ी बात थी. तो निश्चित तौर पर ये हार ममता बनर्जी की हार से कहीं कमतर नहीं है, ये भी बड़ी हार है तमिलनाडु की. और दूसरा जो केरल में आपने सवाल पूछा कि कांग्रेस उभर रही है, ठीक है अभी जीती है तो माना जाएगा कि उभर रही है, लेकिन केरल में जो जीत हो रही है वो विकल्पहीनता के चलते यूडीएफ की जीत है. अगर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बार, ठीक है कि उसको तीन सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, नेमम पलकड़ और एक तीसरी सीट है, तो लेकिन उसने वोट शेयर उसका लगातार बढ़ रहा है. पिछली बार के 16% की तुलना में अभी तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन शायद 20% से ऊपर जा रहा है. तो ये क्या है कि आगे अगर भारतीय जनता पार्टी, जो कि मुझे लगता है जो आपने अभी पिछले सवाल में पूछा था ना कि पूरब का द्वार है पश्चिम बंगाल, वहाँ कब्जा हो गया, तो अब वो कंसनट्रेट करेगी दक्षिण के राज्यों में, केरल में, कर्नाटक में तो उसकी उपस्थिति मजबूत पहले से है ही, तेलंगाना में मजबूती से वो बढ़ ही रही है, तो अब वो कंसनट्रेट करेगी. तो मुझे लगता है कि अगला उसका टारगेट केरल ही होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस को खुशियां मनानी चाहिए क्योंकि उसकी सत्ता में वापसी हो रही है। तो

0: मुझे लगता है कि इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए। जी
1: अशोक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
2: केरल के बारे में, केरलम के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा। पिछले चुनाव में लेफ्ट फ्रंट ने जीत हासिल की थी दोबारा, क्योंकि उससे पहले हमेशा बदल होता रहा था। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कमज़ोर रही केरल में, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वहाँ काम बहुत अच्छा है। तो पहले ये माना जाता था कि जो UDF है, कांग्रेस लेड UDF, क्योंकि उसमें केरला कांग्रेस है, उसमें मुस्लिम लीग है, तो जो हिंदू वोटर था वो अंत में जाकर जब देखता था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं है नहीं, तो वो LDF को वोट दे देता था, क्योंकि केरला में लेफ्ट फ्रंट को हिंदू पार्टी माना जाता है। लेकिन इस बार ज़्यादा जोर लगाया भारतीय जनता पार्टी ने, विशेष तौर से जब वो त्रिवेंद्रम की म्यूनसिपैलिटी जीत गए, तो उनको लगा कि अब हमको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है तो हमको अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी। इसलिए राजीव चंद्रशेखर को वहाँ भेजा गया और उन्होंने पूरा दमखम लगाया, और उसके चलते अगर वो 2-3 सीट अगर जीत रहे हैं या लीड कर रहे हैं, लेकिन उनका मत प्रतिशत बढ़ने वाला है। लेकिन इसका सीधा सीधा नुकसान LDF को हो रहा है ऐसा दिखता है, क्योंकि पहले अगर आखिरी मोमेंट पर संघ और भाजपा का वोट LDF को चला जाता था, जिसके कारण वो जीतते थे, इस बार अगर वो नहीं जा रहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना वोट प्रतिशत बढ़ाना चाह रही है, तो हो सकता है अंत में चलकर ये LDF की हार का एक कारण ये भी बने कि जो हिंदू वोट है जो LDF को मिलता था वो इस बार बढ़ गया है, और भारतीय जनता पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाह रही है और वोट प्रतिशत बढ़ाकर आगे विकल्प बनना चाहती है। तो शायद केरल की जब एनालिसिस होगी केरलम की, तो ये एक फैक्टर भी ध्यान में रखा जाएगा।
1: And now let's go over to Kolkata, where Akashwani correspondent Kalyan Laha is with us. Kalyan, welcome to the program. What is the latest that you have for us from West Bengal?
3: The latest news is West Bengal mein jo hai abhi, BJP is leading in 156 seats. And Trinamool Congress is leading in nearly 82 seats. And in major fight in Bhavanipur seat, sometimes we note that the Trinamool Congress is Mamata Banerjee is leading, and sometimes we see that the Shubhendu Adhikar is leading, and there is a neck-to-neck fight we are witnessing here. And in a significant development that in all the districts where Trinamool Congress's candidates were sitting position, and they are trailing, and BJP is leading in many seats. In several districts where there was no presence of BJP earlier.
1: Kalyan, West Bengal में इस बार जो काउंटिंग के दौरान जो सुरक्षा इंतजाम किए गए बहुत ज़्यादा पुख्ता इंतजाम है, और पिछले कई चुनावों के अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंतजाम किया है इलेक्शन कमीशन ने, उसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं?
3: देखिए, आपने सही बोला है एकदम। पिछले चुनाव और लोकसभा हो और विधानसभा है, हमने देखा है कि बहुत वायलेंस होता था। इवन काउंटिंग के दिन भी बहुत वायलेंस होता था, एजेंट को जो अपोजिशन एजेंट्स को मारा पीटा जाता है, ऐसे भी हम इंस्टेंसेस देखते हैं। बट अभी जो इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए, टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, 3-layer सिक्योरिटी है आपका काउंटिंग सेंटर में, अंदर एकदम अंदर है आपका CAPF। और इसमें और एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जो है, हिस्ट्री में जैसे देखा नहीं गया पहले, पुलिस ऑब्जर्वर भी काउंटिंग सेंटर में है, बट उसको एकदम भीतर में अलाउड नहीं है। जो सीनियर एक IPS ऑफिसर होगा सारी काउंटिंग सेंटर में है और ऑब्जर्वर भी है, और राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग हो रहा है, इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और जैसे में हम देखे कि वोटिंग के दौरान 23rd में और 29th में जो वोटिंग हुई, कोई भी वायलेंस ऐसा मेजर नहीं हुआ है, अभी तक कोई वायलेंस का इंसिडेंट नहीं है, पूरे एकदम शांतिपूर्ण से सभी जगह में काउंटिंग हो रहा है।
4: जी कल्याण, अगर हम बात करें मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और बीरभूम, ये ऐसे जिले रहे हैं जहां पर कि 118 सीटें 294 में से, यानी कि 40% सीटें इन्हीं जिलों से आती हैं, और 2021 में TMC ने कुल 103 सीटें इन्हीं 6 जिलों से पाई थी। इस 2026 में इस बार क्या स्थिति है वहाँ की, कुछ जानकारी आपके पास है ताज़ा?
3: देखिए, अभी तक जो ट्रेंडिंग अभी दिख रहा है इस जिले में, सारी जिले में जैसे आप मेंशन किया है अभी, BJP बहुत सी जगह में इस जिले में सीट जो कंस्टिट्यूएंसी है लीड कर रहे हैं अभी। देखिए, मुर्शिदाबाद में भी BJP बहुत सारे सीट्स में लीडिंग कर रहे हैं, दक्षिण 24 परगना में भी लीडिंग लीड कर रहे हैं, और उत्तर 24 परगना में भी लीड कर रहे हैं अभी। BJP की स्थिति अभी बहुत अच्छा है, बाकी अगर पास्ट इलेक्शन के को हम कंपेयर करें तो अभी बहुत

0: पुख्ता स्थिति है बीजेपी का।
1: जी कल्याण, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड बिफोर वी टेक द प्रोग्राम अ लिटिल फर्दर, विशाल, लेट्स गिव आवर लिसनर्स द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन व्हाट्स हैपनिंग।
2: जी, ताज़ा रुझान हम अपने श्रोताओं को बता दें, तमिलनाडु से जो हमारे पास ताज़ा रुझान आ रहे हैं, पेरम्बूर सीट से टीवी के उम्मीदवार सी जोसेफ विजय बढ़त बनाए हुए हैं, कोलातूर से डीएमके उम्मीदवार एम के स्टालिन पीछे चल रहे हैं, हार्बर से डीएमके उम्मीदवार पी के शेखर बाबू पिछड़ रहे हैं, चेपक तिरुवल्लिकेणी से डीएमके उम्मीदवार उदयनिधि मारन पीछे हैं, अन्ना नगर से ऑल इंडिया अन्ना डीएमके उम्मीदवार एस गोकुल इंदिरा पीछे चल रहे हैं, सैदापेट से डीएमके उम्मीदवार सुब्रमण्यम पीछे हैं और माइलापुर से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन पीछे चल रहे हैं। श्री पेरम्बूर सुरक्षित सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के सेल्वा पेरुनतगई पीछे चल रहे हैं, कटपड़ी से डीएमके उम्मीदवार दुरई मुरुगन पिछड़ रहे हैं, पेन्नागरम से कांग्रेस उम्मीदवार जीकेएम तमिल कुमारन पीछे चल रहे हैं।

0: भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर तमिलीसाई सौंदरराजन पीछे चल रहे हैं। श्री पेरम्बूर सुरक्षित सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के सेल्वा पेरुनतगई पीछे चल रहे हैं। कटपड़ी से डीएम के उम्मीदवार दुरई मुरुगन पिछड़ रहे हैं। पेन्नागरम से कांग्रेस उम्मीदवार जीकेएम तमिल कुमारन पीछे चल रहे हैं। धर्मपुरी से पीएम के उम्मीदवार सौम्या अंबुमणि बढ़त बनाए हुए हैं। किलपेन्नातूर से डीएम के उम्मीदवार पिटचांडी के पीछे हैं। एडापड़ी से ऑल इंडिया अन्ना डीएम के उम्मीदवार एडापड़ी पलनीसामी आगे चल रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है ये। और गोबी चेट्टीपलयम से टीवी के उम्मीदवार सैन गोट्टियन के ए बढ़त बनाए हुए हैं। अवंशी सुरक्षित सीट से भाजपा के डॉक्टर एल मुरुगन पीछे हैं। कोयम्बतूर उत्तर सीट से भाजपा उम्मीदवार वनती श्रीनिवासन पिछड़ रहे हैं। कोयम्बतूर दक्षिण से डीएम के उम्मीदवार वी सेंथल बालाजी बढ़त बनाए हुए हैं। तिरुचिरापल्ली पूर्व सीट से टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आगे चल रहे हैं। कुरिंजीपड़ी सीट से डीएम के उम्मीदवार एमआरके पनीरसेल्वम पीछे हैं। करईकुड़ी से एनटी के उम्मीदवार सीमन पिछड़ रहे हैं। और तिरुपत्तूर से डीएम के उम्मीदवार पेरिया करुप्पन बढ़त बनाए हुए हैं। बोडीनायाकुरनूर से डीएम के उम्मीदवार ओ पनीरसेल्वम बढ़त बनाए हुए हैं। सत्तूर से भाजपा उम्मीदवार नैनार नांगेरतरन पीछे हैं। और राधापुरम से डीएम के उम्मीदवार अप्पवू एम पिछड़ रहे हैं।
1: और इसके अलावा पांच राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव भी हुए थे, चलिए आपको उनके रुझान बताते हैं। तो जैसा कि मैंने भी कहा था कि पांच राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की मतगणना भी आज हो रही है। ये सात सीटें हैं गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडंग और त्रिपुरा में धर्मनगर। इनमें से चार सीटों पर भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है। उमरेठ से भाजपा उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार आगे हैं चल रहे हैं। बागलकोट कर्नाटक में कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुलप्पा मेती आगे हैं। दावणगेरे दक्षिण में कांग्रेस उम्मीदवार समर्थ शमनूर मल्लिका अर्जुन आगे हो गए हैं। अगर बात हम महाराष्ट्र की करें तो राहुरी से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजी राव करदिले आगे हैं। बारामती से पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार सुनेत्रा अजीत पवार बढ़त बनाए हुए हैं। और नागालैंड में कोरिडांग से भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई इमेचेन आगे हैं। वहीं त्रिपुरा में धर्मनगर से भाजपा उम्मीदवार जाहर चक्रवर्ती आगे चल रहे हैं।
0: जी अनुभा, कुछ हाई प्रोफाइल सीटों पर भी नजर डाल लेते हैं, क्या वहां पर इस समय ताजा स्थिति है। असम की अगर हम जानू कबारी सीट की बात करें तो हेमंत बिश्व शर्मा बीजेपी के भाजपा के आगे चल रहे हैं और लीड बनाए हुए हैं। असम से ही जोरहाट सीट से जो है गौरव गोगोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं।
1: आई विल यू नो विशाल, व्हाट्स इंटरेस्टिंग हियर इज दैट गौरव गोगोई इज एक्चुअली द सिटिंग एमपी राइट नाउ फ्रॉम जोरहाट। ही वन द यू नो मैसिव मार्जिन इन 2024 इलेक्शंस एंड टू सी हिम यू नाउ लीडिंग इन द असेंबली इलेक्शंस। बिफोर यू गिव एनी मोर ट्रेंड्स, आई वांट अ कमेंट फ्रॉम बोथ उमेश जी एंड अशोक जी ऑन दिस।
2: इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ऑन द ईव ऑफ द इलेक्शन हेमंत बिश्वा सेड आई वांट हिम टू विन, I want Gaurav Gogoi to win and come to the assembly and then I will show him what exactly we have done, my performance. Because sitting in Lok Sabha, he may not be observing my performance in Assam, but unfortunately he is losing. So having won the Lok Sabha election, Gaurav Gogoi is trailing and he was the Congress face Assam election. He was perhaps... emerging as a very popular, he's a very good parliamentarian, no doubt about it. So he was, that's why he was asked to go and contest the assembly election and perform well as far as Congress is concerned, because Congress had been ruling Assam for a very long time, and only when they lost Hemant Biswa Sarma, he left Congress and joined BJP, that was a huge loss for Congress. But now he is trailing, but Hemant Biswa wanted him to win and become leader of opposition so that he can face to face tell him the performance of the Hemant Biswa government in Assam.
1: Umesh ji,
3: Tarun Gogoi के पिछड़ने के संबंध में आपने सवाल पूछा है।
1: गौरव गोगोई,
3: सॉरी गौरव गोगोई, तरुण गोगोई के बेटे, सॉरी। हाँ जी, देखिए तरुण गोगोई निश्चित तौर पर कांग्रेस का असम में चेहरा थे और जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है वो हाफ हार्टेड जिसको कह सकते हैं कि वो चुनाव लड़ा है। और एक चीज़ और ध्यान में देने की है कि

0: का असम के प्रभारी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहे, पवन खेड़ा प्रकरण भी वही हुआ और जिस तरह से इसको उछाला गया और जिस तरह से हेमंत बिश्व शर्मा ने भी उसको टैकल किया, जिस पर कि अभी पवन खेड़ा को दो दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, तो कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि वो जीत सकती है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। एक चीज़ और भी था कि कांग्रेस के तीन जो कैंडिडेट की लिस्ट तीन जगह तैयार हो रहे थे, एक प्रियंका गांधी तैयार कर रही थी, एक भूपेश बघेल कर रहे थे और तीसरा राहुल गांधी कर रहे थे, लेकिन आप देखेंगे कि राहुल गांधी जो उनके स्टार चेहरे हैं, सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने शायद एक ही दिन असम में प्रचार किया। तो निश्चित तौर पर आप जब किसी को नेता प्रोजेक्ट करते हो और उसके पीछे अगर पूरी तरह से खड़े नज़र नहीं आते और उस नेता का कोई चमत्कारिक व्यक्तित्व तो नहीं होता जिस तरह से कि हेमंत बिश्व शर्मा का दिख रहा है, तो ये ऐसे ही नतीजे आने थे। तो एक चीज़ तो ये है कि कांग्रेस अगर, जैसे कि टंडन जी बता रहे थे कि अगर गौरव गोगोई जीत गए होते तो शायद उनको नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए जो रहाट की सीट से उन्हें इस्तीफा देना पड़ता तो शायद वो भी सीट कांग्रेस के खतरे में पड़ सकती थी। कम कह सकते हैं कि वो सीट कांग्रेस बचाने में कामयाब रही है, जो रहाट की लोकसभा सीट। तो मुझे लगता है कि इस तरुण गौरव गोगोई की जो का पिछड़ना है वो कांग्रेस के लिए एक आईना हो सकता है कि आपको किस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए और किस तरह से अपने लोगों को साध के रखना भी चाहिए, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा कहा जाता है कि वो पहले तरुण गोगोई के ही लेफ्टिनेंट थे, हालांकि मेरे पास जानकारी ये भी है कि वो अहमद पटेल के भी लेफ्टिनेंट थे और उनके लिए भरूच में भी काम करते थे, लेकिन किस तरह से वो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं और ना सिर्फ वो असम बल्कि पूरे पूर्वोत्तर का भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में आमतौर पर आयातित नेताओं को इस तरह से नंबर वन की सीट नहीं मिलती रही है, इस परंपरा को भी वो तोड़ने में कामयाब होते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके चमत्कारिक नेतृत्व के सामने गौरव गोगोई की जो स्थिति है वो शोचनीय है कही जाएगी, कांग्रेस के लिए चिंता की बात है।
1: जी अशोक टंडन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
2: हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस नेतृत्व का जो फेल्योर है वो केवल चुनाव जितवाने तक नहीं है, वो अपने नेताओं को संभाल के रखने की भी एक समस्या है और हेमंत बिश्व शर्मा उसका एक बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। वो कांग्रेस के स्टालवर्ड थे पूरे नॉर्थ ईस्ट के असम के, वो कई लंबे समय से राहुल गांधी से समय मांगते रहे थे और ऐसा जो हमने रिपोर्ट देखी मीडिया में, जब उनको समय मिलता है तो हेमंत बिश्व शर्मा उनको पूर्वोत्तर की राजनीति दिख समझा रहे हैं और वो अपने कुत्ते के साथ खेल रहे हैं। तो ऐसे कई कांग्रेस के नेता हैं जो नेतृत्व से निराश होकर कांग्रेस छोड़ी है जिन्होंने, और ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस नेतृत्व अगर चुनाव नहीं जितवा सकता लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं को तो संभाल सकता है। एक एक करके जो लोग छोड़ रहे हैं कांग्रेस, और कई वरिष्ठ नेता छोड़ रहे हैं और ऐसे युवा नेता भी छोड़ रहे हैं, एक तो उनको कांग्रेस में भविष्य इसलिए भी नहीं दिखता कि नेतृत्व तो एक परिवार के हाथ में है, चाहे पार्टी हारे या जीते नेतृत्व तो एक परिवार के हाथ में ही रहना है, तो ऐसे में हमारा भविष्य क्या है। तो ये सोचकर भी कांग्रेस को, मैं समझता हूँ, और कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो इस पर विचार विमर्श करना चाहते हैं कि ये जो एक जिंक्स टैच को तोड़ा जाए कि कांग्रेस क्यों ही एक परिवार के नेतृत्व में रह सकती है, कांग्रेस इतनी लंबी पुरानी स्वतंत्रता संग्राम की पार्टी है, क्यों नहीं उसमें कोई नेहरू गांधी फैमिली के बाहर का नेतृत्व आ सकता है। तो ये मैं समझता हूँ जो सोच चल रही है कांग्रेस के कुछ नेताओं में, उनको अब मुखर होकर सामने आना पड़ेगा, नहीं तो पार्टी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, और पार्टी समाप्त होना कोई अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में राष्ट्रीय दल दो रहने चाहिए, अभी लेफ्ट फ्रंट खत्म हो गया तो बाकी तो सब क्षेत्रीय दल रह जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस के अंदर इस पर मंथन होना चाहिए।
3: जी हम क्योंकि बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट असम, वेरी क्विक कमेंट बिफोर वी गो इनटू ब्रेक एट 12 नून फ्रॉम बोथ ऑफ यू। असम, यू नो, इट्स द फर्स्ट इलेक्शन दैट्स बीइंग हेल्ड इन असम आफ्टर द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज ऑफ 2023। अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी रिगार्डिंग, यू नो, सराउंडिंग दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज। How do you see, what is the impact? Ashok ji, very quick comment.
2: I think a major issue, one of the major issue has been infiltration from across the border.
3: Right.
2: And Hemanta had made it a point that we will not allow this kind of a thing to happen. So if you look at the earlier Assam movement, agitation, that was the issue. Why we should allow Bangladeshis to settle in Assam.
3: Right.
2: So I think that has gone home very well with the people of Assam.
3: Umesh ji, bahut quick comment.
0: तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को ही सोचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बल्ले बल्ले की बात है।

0: बिल्कुल
1: जी। और अब यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और समाचारों का वक्त हो रहा है, हिंदी और इंग्लिश बुलेटिन प्रसारित होंगे, उसके बाद हम 10 मिनट बाद 12:10 पर आपसे फिर मिलते हैं।
2: बट उसके पहले क्विकली आई गिव यू एन अपडेट इन असम, द बीजेपी इज लीडिंग ऑन 80 सीट्स, एजीपी इज लीडिंग ऑन 9, AIUDF इज लीडिंग ऑन 2, इन केरल द CPM इज लीडिंग ऑन 30, द CPI is leading on 30-11 and CPM is leading on 30 seats and we'll be back.
3: நேர்கள் இதுவரை கேட்டது தேர்தல் முடிவுகள் குறித்த நேரடி கலந்துரையாடல். ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.

0: जनादेश 2026
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
2: वेलकम बैक टू आकाशवाणी स्पेशल प्रोग्राम जनादेश 2026, वेयर वी आर डिस्कसिंग द ट्रेंड्स एंड रिजल्ट्स कमिंग इन फ्रॉम द असेंबली इलेक्शंस दैट वर हेल्ड इन 4 states and 1 union territory in the month of April. Once again, we have with us in studio senior journalist Umesh Chaturvedi and political analyst Ashok Tandon. And right at the beginning of this section of the program, let's give you the latest trends coming in.
3: जी अनुभा, और सबसे पहले अगर हम असम के जो रुझान आ रहे हैं उन पर नजर डालें तो असम में भारतीय जनता पार्टी 126 सीटों में से 79 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। असम गण परिषद 9 सीटों पर आगे चल रही है। AIUDF 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस जो है वो 23 सीटों पर आगे चल रही है। केरलम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आगे है और CPI 12 सीटों पर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 12 सीटों पर आगे चल रही है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी 29 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस पार्टी जो है वो 56 सीटों पर वहाँ पर आगे चल रही है।
2: इफ यू टॉक अबाउट पुदुचेरी, देन द AIADMK इज लीडिंग ऑन 1, द रूलिंग AINRC व्हिच इज पार्ट ऑफ द एनडीए अलायंस इज लीडिंग ऑन 10 सीट्स, BJP पार्ट ऑफ द एनडीए अलायंस इन पुदुचेरी इज लीडिंग ऑन 4 सीट्स, DMK इज लीडिंग ऑन 4, कांग्रेस इज लीडिंग ऑन 7 एंड इंडिपेंडेंट्स आर अहेड ऑन 3 सीट्स। And talking about Tamil Nadu, the AIADMK is leading on 64 seats. BJP, the AIADMK partner, is leading on 3 seats. The DMK, which was in government till, is the present government, is leading on 43. Its alliance partner, Congress, is leading on 5. IUML is leading on 1. Actor Vijay's TVK, which is being seen as the biggest disruptor in these elections in Tamil Nadu, is leading on 106 seats. And quickly, Vishal, why don't you give the...
3: जी, पश्चिम बंगाल के अगर हम रुझानों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी 191 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। 286 सीटों के हमें जो है इस समय रुझान मिल रहे हैं और 293 सीटों के लिए वहाँ पर गणना हो रही है, चुनाव वोटों की गिनती हो रही है और AISF 1 सीट पर आगे है। AITC 91 सीटों पर आगे चल रही है तृणमूल कांग्रेस।
2: जी, एंड नाउ लेट्स गो ओवर टू चेन्नई फ्रॉम वेयर पॉलिटिकल एनालिस्ट सतीश कुमार श्रीवास्तव इज ऑनलाइन विद अस। मिस्टर श्रीवास्तव, वेलकम टू आकाशवाणी जनादेश 2026।
4: नमस्कार मैम।
2: नमस्कार सर। सर, दिस इज द फर्स्ट दीज इलेक्शंस, यू आर बेस्ड इन चेन्नई, यू नो कॉलिंग टॉकिंग टू अस फ्रॉम चेन्नई, व्हाट इज योर फर्स्ट असेसमेंट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन तमिलनाडु? वी जस्ट सेड सॉ दैट एक्टर विजय TVK लीडिंग ऑन 106 सीट्स, अ वेरी वेरी बिग सरप्राइज, बिकॉज इफ वी गो बाय द एग्जिट पोल्स हार्डली एनीबडी हैड गिवन यू नो एनी क्रेडेंस टू TVK इमर्जिंग एज प्रोबेबली नॉट जस्ट किंग मेकर बट एज द नेक्स्ट फॉर्मिंग द नेक्स्ट गवर्नमेंट इन द स्टेट।
4: Yes, ma'am. Actually, the youth is with the TVK.
2: Gee.
4: That is the first thing that youth voters like from that college students and till 30 years age youth is with the TVK, and that 30 year age number percentage of voters is more than near about 20% voters of Tamil Nadu is that is. Second thing, the Tamil Nadu public want to change the DMK, AIADMK, DMK, AIADMK. They want the changing of that.
2: Right.
4: This pattern.
2: जी, तो आपको जी
3: जी कुमार श्रीवास्तव जी, जो आपने कहा कि युवा जो हैं वो टीवी के साथ जा रहे हैं, क्या वजह है, क्या टीवी में ऐसा क्या आकर्षण युवाओं को लगा कि वो टीवी की तरफ खींचे चले गए वोटर के तौर पर?

0: एक तो जो इनका फैंस क्लब था, जो इन्होंने इनके फैंस थे, ये केवल अभी चुनाव में इस बार उतरे हैं, लेकिन इसकी तैयारी ये पिछले कई सालों से कर रहे थे,
1: अच्छा
0: लोगों की मदद करना, और इन्होंने युवाओं को जोड़ रखा था। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि एक अभिनेता के
1: जी
0: रूप में जो
1: जी
0: विजय है
1: सतीश जी
0: वो
1: जी
0: कहीं ना
1: सतीश जी
0: कहीं इनकी एक था।
1: हाँ, मुझे आपको यहाँ पर माफी चाहूंगी, रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन GVL नरसिम्हा जुड़ गए हैं। मिस्टर नरसिम्हा, वेलकम टू आकाशवाणी जनादेश 2026।
2: नमस्कार जी।
1: नमस्ते सर। ये जो अभी हम रुझान देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बीजेपी लेड एनडीए असम में ऑलमोस्ट अपनी अपने दम पर तीसरी बार सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है, और बाकी जगह भी जो हम रिजल्ट्स देख रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपके उम्मीद के मुताबिक नतीजे नजर आ रहे हैं आपको?
2: बिल्कुल पूरी तरह बीजेपी के जो पूर्वानुमान था, जो लक्ष्य था, उसके अनुकूल आज के परिणाम सब लगभग सभी राज्यों में आ रहे हैं।
1: जी
2: ये उस असम में तीसरी बार हम और बड़े बहुमत से सरकार बनाएंगे, यही हमारा एक आकांक्षा थी, एक लक्ष्य था, वो पूरा होते हुए नजर आ रहा है। और असम की जनता को इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और हमारे सरकार उनके उम्मीदों पर खरी उतरी है, इसलिए असम की जनता ने और बड़ी बहुमत से बीजेपी की सरकार वहां बना रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी अपने सरकार अपने पूरी तरह अपने बलबूते पर सरकार बनाने जा रही है।
1: जी
2: एक बड़ा राज्य होने के नाते पश्चिम बंगाल का देश के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा उनका स्थान है, और ऐसे राज्य में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा में सीट 42 सीट पश्चिम बंगाल से आते हैं, और ऐसे राज्य में एक क्षेत्रीय दल के खिलाफ लड़ते हुए एक बड़े जीत को हासिल करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हम पश्चिम बंगाल की जनता को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। और जनता ने, पश्चिम बंगाल की जनता ने एक तरह से टीएमसी के शासन से एक तरह से बहुत ही दुखी होकर, और वहाँ जिस प्रकार की करप्शन, भ्रष्टाचार और गैर संवैधानिक गतिविधियों के खिलाफ एक तरह से बीजेपी को चुना है मोदी जी के, नरेंद्र मोदी जी के उनके नेतृत्व में बीजेपी को, यहाँ बीजेपी के सरकार बनाकर ही केवल विकास के रास्ते पर बंगाल आगे बढ़ सकती है। इसी आशा के साथ, इसी विचार के साथ वहाँ की जनता ने बीजेपी को इतना बड़ा जीत दिया है, ये उनके लिए धन्यवाद। और पुडुचेरी में फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है,
1: बिल्कुल,
2: तो यही हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का हमारे लिए विषय है।
1: मिस्टर नरसिम्हा, इफ यू लुक एट दी यू नो इफ यू लुक एट द ट्रेंड्स कमिंग इन फ्रॉम तमिलनाडु, बीजेपी ऑन इट्स ओन इज लीडिंग ऑन 3 सीट्स, सेम वी सी दैट इन केरल बीजेपी इज अगेन लीडिंग ऑन 3 सीट्स, वाइल इन पुदुचेरी इट्स लीडिंग ऑन 4 सीट्स। सो ऑल्दो इट मे बी यू नो पार्ट ऑफ द अलायंस, हाउ डू यू सी दीज ट्रेंड्स दैट the BJP is you know has been making an effort to make expand its footprint, especially in Kerala and Tamil Nadu, the southern states. How do you see these trends coming in?
2: See, Kerala, this would be the first time that a BJP BJP would have its presence in the state assembly. You've seen how BJP formed, BJP won the local corporation elections in Trivandrum, Thiruvananthapuram, and BJP has been increasing its vote share election after election, but our attempt this time was to make a strong presence in the assembly, and that will make a foundation that will help us to form a foundation for future success for the BJP. So we are quite happy that BJP is leading in some seats, and we will also see a big rise in BJP vote share in Kerala, which should be a sort of a ladder for us to grow on our own in future. When it comes to Tamil Nadu, our main aim in Tamil Nadu was to defeat the DMK Congress combined, because this is it is the DMK which ran a lot of negative campaign against the BJP and the central government. They in fact tried to create an impression that BJP was anti-South by alleging that delimitation was going to be harmful for the for the southern states. So all this propaganda. For this propaganda, the BJP always wanted to defeat the DMK, and that was our primary aim, and that certainly is coming true in today's

0: election results. But as you, as we all see, the TVK, which came on the horizon as a new new party, certainly has taken Tamil Nadu, has given a new alternative to the people of Tamil Nadu, and they have swung heavily in TVK's favor. So it appears to be hung assembly in Tamil Nadu for the last 3-4 hours. We see a hung assembly scenario. We'll see how it pans out, but it will certainly be an anti-DMK, anti-Congress government in Tamil Nadu, which is likely to be certainly pro-center and work towards realizing the dreams of Prime Minister Narendra Modi ji as far as development is concerned.
1: Mr. Narasimha, thank you so much for joining Akashwani.
0: Thank you, ji.
1: That was BJP spokesperson GBL Narasimha.
2: जी अमीश चतुर्वेदी जी, तमिलनाडु के जो नतीजे आ रहे हैं, एक तरीके से पूरा बड़ा उलटफेर वहाँ पर देखने को मिला है, बिल्कुल एक राजनीति में ट्विस्ट एकदम से देखने को मिल रहा है वहाँ पर। टीवी के 105 सीटें पर आगे चल रही है, बढ़त बनाए हुए है और लगभग लगभग अब लगता है कि बहुमत की तरफ भी बढ़ती दिखाई देगी, लेकिन अभी देखना होगा कि उसको कितनी सीटें और कहाँ पर अभी मिलती हैं। कुल मिलाकर के आप जो तमिलनाडु में ये जो परिवर्तन देख रहे हैं, ये क्या बता रहा है?
3: देखिए, ये तो बता रहा है कि जिस तरह से तमिलनाडु में एक्टर को लेकर के, फिल्मी जो दुनिया के लोग रहते हैं, जो सितारे रहे हैं, उनको लेकर के जो एक खास तौर का फैनेटिज्म दिखता रहा है, उसकी एक पुनरावृत्ति दिखती है। लेकिन एक चीज़ इसमें जोड़ना चाहूँगा, थलपति विजय की एक फिल्म रही है घीली, तमिल फिल्म है घीली, उसमें उन्होंने एक डायलॉग दिया था, यह एरिया हो या वो एरिया, हर जगह का विजेता मैं ही हूँ। तमिलनाडु के जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, उससे साबित हो रहा है कि वो हर जगह के विजेता हैं, हर तरफ के लोगों के उन्होंने एक तरह से लोगों को आकर्षित किया है, लोगों की बातों को रखा है और लोगों को उम्मीदों पर, लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की है।
2: जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक चेन्नई से सतीश कुमार श्रीवास्तव ऑनलाइन जुड़े हैं। जी श्रीवास्तव जी, चेन्नई में आप हैं और इस समय वहाँ पर जो आप देख रहे हैं तमिलनाडु के जो नतीजे आ रहे हैं, वो नतीजे, आप इससे पहले भी हमारी आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि जो टीवीके के साथ जो है युवा मतदाता तमिलनाडु का, राज्य का, वो सबसे ज़्यादा जुड़ा है जाकर के, और उसने अपील किया है युवा मतदाताओं को टीवीके पार्टी ने, टीवीके पार्टी ने या विजय ने, अभिनेता विजय जो हैं, जो उसके नेता हैं, उन्होंने ऐसा क्या सामने रखा वहाँ के मतदाताओं के सामने कि जो युवा मतदाता हैं उससे बहुत प्रभावित नजर आए?
4: सर, एक तो जो कहते हैं ना कि ये जो अभिनेता वाला फैक्टर है यहाँ तमिलनाडु में,
2: जी
4: ये तो है ही है। और उसके बाद ये इन्होंने कई जगह इनके जो फैंस क्लब इन्होंने बनाए हुए थे यहाँ पर, तो ये जो इनका फैंस क्लब है, ये जब ये अभी राजनीति में अटकलें लगाई जा रही थी कि तलपति विजय राजनीति करेंगे, उस समय भी इनका ये फैंस क्लब जमीनी स्तर पर जाकर के काम कर रहा था, लोगों की मदद कर रहा था। और जो एक मैं पहले भी बताया कि ये डीएमके एआईडीएमके, ये दोनों पार्टियां आ रही थी जनता इनको इन दोनों पार्टियों से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी, एक तीसरे विकल्प की तलाश कर रही थी, तो इस तीसरे विकल्प का भी इनको फायदा मिला। और युवाओं के आकर्षण, एक जो अभिनय इनका था अभिनेता के रूप में, युवाओं के रूप में के बीच में ये उस समय भी लोकप्रिय थे जब अभी राजनीति की अटकलें लगाई जा रही थी।
3: एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि इसमें रजनीकांत और कमल हासन, इन दोनों की क्या भूमिका रही इस चुनाव में?
4: सर, रजनीकांत और कमल हासन की जो इसमें मतलब इनके साथ या इनके विपक्ष में वो नहीं रहे, वे साइलेंट रहे। वे जब राजनीति में आने के का जब उनका प्रयास शुरू हुआ, तो उस मतलब जो इनका काम राजनीति में आने के पहले जन सेवा का जो इनका कार्य था टीवी का, वह कार्य टीवीके का, वह कार्य न तो रजनीकांत का था और ना कमल हासन का था, तो इसका भी इनको फायदा मिला, जनता भी इनसे जुड़ी, केवल युवा वर्ग तो इनके साथ था ही, लेकिन कई ऐसे भी लोग थे जो उम्र दराज थे और उनके विचार में परिवर्तन आया।
1: मिस्टर सतीश कुमार श्रीवास्तव, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन आकाशवाणी जनादेश 2026। मिस्टर चंदन, आई वांट टू कम टू यू एंड आई वांट टू कम बैक।

0: to Assam now. In Assam, we've seen for long years, Badruddin Ajmal's AIUDF had been a very decisive force in Assam politics. But we saw in the 2024 elections, he himself lost his, you know, constituency Dhubri by one of the biggest margins. Now he's contesting at the age of 76. He's contesting his very first, you know, assembly election. Last assembly election, Congress and AIUDF were together. This time they're, you know, contesting separately. So has that also made an impact? Because the trends show us that AIUDF is leading only on two seats.
1: I think he himself is leading, if I'm not wrong. He himself is leading, but there was no alliance with the Congress.
0: Yes.
1: And there was no alliance actually led by Congress. There were no other smaller parties also in the... Congress wanted to revive its fortunes on its own. And they thought that Gaurav Gogoi, being a young, dynamic leader, may be able to turn the table. But unfortunately, it has not happened. But as far as this fringe group is concerned, no, they were actually trying to corner all the Muslim votes in Assam. And that has been a setback for the Congress for quite some time. So, but I think the factor which has weighed very heavily in favor of BJP and Hemanta Biswa Sarma is that their, you know, call that they will not allow infiltration. They will in fact send back the Bangladeshi infiltrators. And that, I think, is the core sentiment in Assam for a very long time, because Assam has been flooded with infiltration from Bangladesh, and many of them were not even a legitimate people coming into Assam. So all the infiltrators, so they will now be pushed back. That was one of the main agenda of Biswa Sarma. So let's see what happens. But I personally feel that the Congress needs to do some introspection in Assam. Because it was a very powerful party in Assam earlier.
2: जी, उमेश चतुर्वेदी जी, महिला मतदाताओं की अगर हम बात करें, असम की हम बात कर रहे हैं, तो बीजेपी की बहुत बड़ी, भाजपा की बहुत बड़ी ताकत रही है महिला मतदाता हैं. और अरुणोदय एक योजना जो है भारतीय जनता पार्टी हेमंता सरकार ने वहाँ पर चलाई और महिलाओं के खाते में हर महीने 1250 रुपये भेजे हैं. ये इसका असर भी आप देखते हैं चुनाव नतीजों पर?
3: बिल्कुल, ये तो हर जगह दिख रहा है. आप देखिए लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में लड़की योजना, ये झारखंड में माई योजना, छत्तीसगढ़ में इसी तरह की योजना, पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी ने वो दे रही थी, लक्ष्मी क्या योजना, भाग्य नहीं, लक्ष्मी कुछ ऐसे दूसरा नाम है, तो उस योजना का. लेकिन एक चीज़ देखिए कि पश्चिम बंगाल में वो करामात क्यों नहीं दिखा पाया, क्योंकि वहाँ आरजी कर के मामले को लेकर के जिस तरह से सरकार का रवैया रहा, उसको लेकर के महिलाओं में एक क्षोभ रहा और उसका असर दिख रहा है. लेकिन असम में ऐसा नहीं है. और दोनों राज्यों में एक चीज़ बार बार देखना चाहिए, घुसपैठ का मामला असम से उठता है. आप देखेंगे कि घुसपैठ को लेकर के सबसे बड़ा सवाल पहली बार असम में उठा था 1985 में. तो एक सरकार ही बनी थी, असम गण परिषद अभी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो घुसपैठ के मामले पर ही उभरी थी और वो सरकार बनाने में भी कामयाब रही थी. लेकिन वही मामला पश्चिम बंगाल में भी आया, और सिर्फ महिलाओं का मामला ही नहीं है, बाकी कई सारे मामले हैं. ठीक है कि वो एक मामला है, महिलाओं ने वोट डाला, लेकिन एक चीज ये देखना चाहिए, पश्चिम बंगाल में पिछले 2021 के चुनाव में महिलाओं का 10% ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी की तुलना में ममता बनर्जी को मिला था. लेकिन इस बार जाहिर है कि वो महिलाओं ने साथ छोड़ दिया. उन्होंने जो लक्ष्मी योजना है जिसमें वो 1500 रुपये महीने दे रही हैं, और ये वादा भी किया था कि 500 रुपये और देंगी चुनाव जीतने के बाद, वो काम नहीं आया. तो महिलाओं का देखना ये है कि किन जगहों पर वो उनके साथ ये सहयोग कर रही हैं सरकारें या पार्टियां, और किस जगह पर वो उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है. ये दोनों ही चीज़ें हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई. तो असम में उनकी सुरक्षा के साथ कोई चिंता नहीं जुड़ी हुई है, तो इसलिए असम में तो कामयाब रहा, हेमंत बिस्व सरमा को समर्थन मिला, ममता बनर्जी को इसका समर्थन मिलता हुआ नहीं दिख रहा है. तो ये राज्यवार हिसाब से देखें तो अलग अलग ढंग से उसको आप व्याख्यायित कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं.
1: जी, ये महिला सुरक्षा का मुद्दा बंगाल में बहुत जोर पकड़ गया था, और अभी हम देख रहे हैं कि वो जो रेप विक्टिम की माँ है वो लीड कर रही है चुनाव में. तो वो जो एक इंसिडेंट हुआ था जिसने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया था, जो महिला उत्पीड़न हुआ था और वो बलात्कार का मामला हुआ था, तो उसके चलते बंगाल में महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था. तो केवल ये नहीं है

0: कि महिलाओं को आप सुविधा क्या देते हैं? मुझे लगता है महिलाओं के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है महिला सुरक्षा, जिसके बारे में लोगों का विश्वास ममता के प्रति डगमगा गया था, और वो शायद इसलिए चुनाव में भी ये परिणाम में भी उसका कुछ ना कुछ असर दिखाई दे रहा है।
1: अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जो ये कहा था आरजी कर मामले पर, आरजी कर जैसे मामले हो सकते हैं, आपराधिक कहीं भी हो सकते हैं, सवाल ये है कि उसके साथ डीलिंग कैसी हुई, उसको लिया कैसे गया, सरकार ने उस पर कैसे किया। तो आमतौर पर आप मोटे तौर पर आप देखेंगे कि ममता सरकार लिपापोती करती हुई नजर आई, और एक बड़ा बयान ये शायद उत्तर भारत में चल भी जाता, कुछ और राज्यों में जो हिंदी भाषी राज्य हैं, ममता बनर्जी ने एक बयान दिया था कि 9 बजे रात के बाद महिलाएं सड़कों पर ना निकलें, बाहर ना निकलें। ये बात पश्चिम बंगाल में जो, क्योंकि वहाँ महिला को सम्मान की नज़र से देखा जाता है, वहाँ दुर्गा की धरती है, शक्ति की धरती है, तो उस राज्य की महिलाओं ने इसे एक अलग ढंग से लिया, और ये शायद इसी वजह से उनकी लक्ष्मी योजना कामयाब नहीं रही। और असम में आप देखेंगे कि बार बार एग्रेसिव ढंग से हेमंत विश्व शर्मा घुसपैठ का मुद्दा उछालते हैं, बार बार यहाँ तक तो ये कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे तो किसी को रहने ही नहीं देंगे, घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें, सिर्फ महिला योजना नहीं है, महिलाओं का साथ देना, सुरक्षा देना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्बत की 1500 या 2000 या 1500 रुपया देना।
2: जी, प्रचार के दौरान पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने जो झालमुड़ी खाई, और उस इलाके में भाजपा जो है वहाँ चारों सीटों पर आगे चल रही है, झाड़ग्राम, बिनपुर, गोपी बल्लभपुर और नयाग्राम, ये जो प्रधानमंत्री मोदी का जो कनेक्ट करने का मतदाताओं से जो एक तरीका है, ये कितना असर करता है?
1: बिल्कुल, देखिए गांधी जी के बारे में कहा जाता है ना कि वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर थे, संचारक थे, बड़े रिसर्च होता रहा है। मुझे लगता है कि एक रिसर्च नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी होना चाहिए, और एक उनकी टाइमिंग कि कब कैसे कनेक्ट करना है। आप याद कीजिए, बिहार चुनाव होने वाले थे तो उसके कुछ दिन पहले यहीं इंडिया गेट पर दिल्ली में उन्होंने लिट्टी चोखा खा करके एक तरह से पूरे बिहार को कनेक्ट कर लिया था, और जो लिट्टी चोखा नहीं खाता है, जो उसको पसंद भी नहीं करता था या जानता नहीं था, वो भी लिट्टी चोखा के पीछे दौड़ पड़ा। तो ये कनेक्ट करने का उनका तरीका है। उन्होंने, आप देखिए, उस दिन उन्होंने एक बात भी बोली, वो पूछता है बाल जो झालमुड़ी बेचने वाला कि प्याज खाते हैं, तो उन्होंने कहा प्याज खाता हूँ, दिमाग नहीं खाता। तो वो भी एक बात थी, एक सीधे सीधे वो जनता के मर्म को छूने वाली बात थी। और उसके बाद ये देखिए कि सिर्फ झालमुड़ी ऐसा, ठीक है कि बंगाल जाने वाले सब लोग जानते हैं कि झालमुड़ी क्या होता है, लेकिन झालमुड़ी ने बंगाल के झालमुड़ी को ही नहीं बल्कि बंगाल के मर्म को छू दिया, और उस मर्म के जरिए उन्होंने एक तरह से बंगाल के दिलों में पैठ बना ली। तो एक तो रिसर्च ये होना ही चाहिए कि वो कैसे कम्युनिकेटर हैं, तो वो एक कनेक्ट कर लेते हैं, सीधे सीधे कनेक्ट करते हैं। ममता बनर्जी यही आरोप लगा रही थी ना कि ये जो लोग भाजपा वाले हैं वो यहाँ के लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हिंदी बोलते हैं। हालांकि ये बात भी याद रखना चाहिए कि अभी 30 मई को हिंदी पत्रकारिता के 200 साल होंगे, और उसकी शुरुआत उसी कलकत्ता में हुई थी 30 मई 1826 को, और मतवाला एक बड़ा मशहूर पत्रिका होती थी, बड़ी मशहूर, वो भी उसी बंगाल से निकली। रामानंद दोषी जो बहुत बड़े मतलब विचारक थे बंगाल के, उन्होंने हिंदी में प्रवासी पत्रिका निकाली। तो ये कहना, सवाल ये नहीं है कि हिंदी में आप बात करके कनेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, कनेक्ट करने का तरीका क्या होता है, कम्युनिकेशन। हम सब लोग यहाँ पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं, चारों लोग बैठे हुए हैं, टंडन जी तो हम लोगों में सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो कनेक्ट करना होता है। अब वो नरेंद्र मोदी जानते हैं कि किस इलाके में कैसे कनेक्ट करना है। अगर वो बलिया से उज्ज्वला योजना की शुरुआत करते हैं तो पहली लाइन बोलते हैं कि मतलब भोजपुरी में बोलते हैं, वहाँ लोगों को भोजपुरी से कनेक्ट करते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं तो उत्तराखंडी बोली से बोलते हैं, पंजाब जाते हैं पंजाबी में बोलने लगते हैं, केरल में भी 4 शब्द मलयालम को बोल लेते हैं। तो वो एक उनका कनेक्ट करने का तरीका है, और ये नतीजे तो दिखा रहा है कि किस तरह से उन्होंने कनेक्ट किया है।
3: अशोक जी, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू दिस, व्हाट अमेश जस्ट सेड अबाउट द वे प्राइम मिनिस्टर मोदी कनेक्ट्स, यू नो, डायरेक्टली विद द वोटर्स?
0: No doubt about it. He is a great communicator, but you know, sometimes innovation is very important. No, I'll give you a very small example. Till he emerged on the political scene at the center, no party leader of any party was wearing the party badge on his jacket or shirt or coat. And not only that, he in fact told the party members that why the symbol of lotus is in saffron color, because on the EVM machine the lotus will be white. He started wearing the white lotus symbol on his jackets and all that.
3: Right.
0: No, these are very small things. Every lectern, wherever he used to address a public meeting, there used to be the symbol of the BJP.

0: he invariably sits in the front seat of his car. The light on his head was always on,
1: mm-hmm.
0: so that people could see him.
1: Right.
0: So these are small, very little things in politics which do matter. Then not only the boat ride which he did, you know, around Howrah Bridge, then on, because when the campaigning ends, he went to Bellur Met. Yes. Met. No, anybody could have gone there. Mamta could have gone or anybody. No, his going to Bellur Met was criticized. Why he is doing election politics and religion? But it was his, you know, innovative idea.
1: Right.
0: Getting blessings from Bellur Met, having a boat ride around the Howrah Bridge. So all these things are, and one thing I may tell you,
1: yeah.
0: he himself is a lone think tank. He is not going by any advisor. He does not have any think tank. He himself is the think tank.
1: Right.
0: About all these innovation which he does in politics is his own brainchild.
1: Right.
2: जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से आकाशवाणी समाचार ने विशेष बात की. आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा.
3: पश्चिम बंगाल में जो रुझान दिख रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठी है और रुझान दिखा रहे हैं कि वो निरंतर एक ज्वार में परिवर्तित हो रही है और जब वो परिणाम में परिवर्तित होंगे तो वो सुनामी के रूप में दिखाई पड़ेगी.
4: पहली बार जो है भाजपा
3: सरकार नहीं, ये निरंतर तीन चुनावों में आप भाजपा का ट्रेंड देखें. 2011 के विधानसभा चुनाव में हम अप्रासंगिक दल थे. 2016 में हमने 3 सीटें प्राप्त की और 10% वोट प्राप्त किया. 2021 में 77 सीटें, मुख्य विपक्षी दल 38% वोट. तो जो ट्रेंड दिख रहा था वो दिखा रहा था कि 12 वर्षों के नितत सतत प्रयत्न, निरंतर संघर्ष और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की दूरदृष्टि के साथ, कार्यकर्ताओं के संघर्ष बलिदान के साथ हम इस मुकाम तक पहुंचने में सफल दिखाई दे रहे हैं.
4: कांग्रेस बहुत आश्वस्त है, क्या हो गया?
3: मुझे लगता है कांग्रेस को आश्वस्तता के पैमाने पर पुनर्विचार करना चाहिए. असम में 2011 के चुनाव में हमारी 3-4 सीटें थी. आज लगातार तीसरी बार सरकार, ये अपने आप में दिखाता है कि पूर्वोत्तर में कितना बड़ा बदलाव आया है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी ने वहाँ बहुत शानदार काम किया. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अपार लोकप्रियता, अमित शाह जी की रणनीति, और उससे हम कह सकते हैं असम में जो हमें हैट्रिक मिली है ये पूर्वोत्तर की दृष्टि से भी एक अभूतपूर्व कार्य है.
1: और अब समय है एक रुझान, कुछ रुझान बताने का.
2: जी, प्रमुख उम्मीदवारों.
1: जी विशाल,
2: प्रमुख उम्मीदवारों के सीट्स पर हम नजर डाल लें कि तमिलनाडु में कोलातूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएम के उम्मीदवार एम के स्टालिन पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनके सुपुत्र उदयनिधि स्टालिन चेपक तिरुवल्लिकेणी सीट पर आगे हो गए हैं. अब पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फिलहाल पीछे हो गए हैं, लेकिन नंदीग्राम से बढ़त बनाए हुए हैं. पुदुचेरी में तट्टन चावड़ी सीट से AINRC उम्मीदवार एन रंगासामी काफ़ी आगे चल रहे हैं, लेकिन मंगलम सीट पर वे पिछड़ रहे हैं.
1: Ashok ji, I'll, you know, draw your attention to what Sudhanshu Trivedi was, you know, he said a lot of things, but he also mentioned the fact, he was talking about the organization, the BJP as a party's organization, it's, you know, the way they approach things. So he talked about Home Minister Amit Shah's ranniti, ki unki ranniti bhi ek factor rahi. Aap uske baare mein kya kahenge, jis tarah se pura chunav ko unhone organize kiya hai?
0: Dekhiye, pichle कई चुनावों में, राज्यों के भी और लोकसभा के चुनावों में भी, हमारे पत्रकार मित्र ये पूछते थे कि जब इनको मालूम है कि हम जीत रहे हैं तो फिर इतना जोर क्यों लगाते हैं.
1: जी,
0: अब सवाल ये है कि पॉलिटिक्स में, एज वी से, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड.
1: एब्सोल्युटली,
0: आप हर तरह से अपना पूरा जोर लगाइए और उसके लिए योजना को ग्राउंड पर, ज़मीन पर उतारना है. तो जब योजना ड्राइंग बोर्ड पर बनती है तो उसको ज़मीन पर उतारने के लिए आपके पास जो हैं एक ऐसे लोग चाहिए जो उसको मूर्त रूप दे सके. तो इस मामले में अमित शाह पूरी तरह से खड़े उतरते हैं. वो हर चुनाव में ज़मीन पर उतरते हैं, स्वयं जा जाकर एक एक चीज़, जिसको पन्ना प्रमुख और ये एक एक बूथ का हिसाब लेते हैं और स्वयं वहाँ पर बैठकर उसको योजना को कार्यान्वित करते. लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ हम ये और नहीं भूलें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी नीचे की इकाई बना रखी है जिलों के उस स्तर पर, वो लगातार उसको एक तरह से सींचा भी जाता है. लेकिन इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, जो पीछे रहकर ज़मीनी स्तर पर इसको एक तरह से ताकत दे

0: देते हैं और ये लोग मानते भी हैं। और इस वजह से जो मशीनरी है इलेक्शन मशीनरी, बहुत पार्टियां उनके इस पूरे कैंपेन मैकेनिज्म को कहीं इतनी इतनी बुरी तरह से पिछड़ जाती हैं। जैसे कांग्रेस हर चुनाव में इनकी सिस्टम से, इलेक्शनियरिंग से, कैंपेनिंग से, स्ट्रेटजी से बहुत दूर रहती है, लेकिन ममता बनर्जी के पास क्योंकि खुद की मशीनरी भी थी, स्ट्रेटजी भी रही है और वो सत्ता में भी रही हैं, तो वो इस बार भी एक डटकर मुकाबला करती हुई दिखाई दी है। लेकिन बाकी पार्टियां कहां गई बंगाल में? बंगाल में जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपने, लेफ्ट फ्रंट ने और कांग्रेस ने पूरा मैदान छोड़ दिया और बंगाल जैसे राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी आज से 20 साल पहले कुछ थी ही नहीं, उसको आपने इतनी आगे बढ़ने दिया। तो ये सब पार्टियों के लिए चिंता का विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव मशीनरी है, जो स्ट्रैटेजी है, जिस तरह से हर कार्यकर्ताओं को लगाना है और राज्यों से भी कार्यकर्ताओं को भेजना है, तो ये तो एक सीखने लायक चीज़ है जो बाकी दलों को सीखना पड़ेगा। सिर्फ उसकी आलोचना करने से बात नहीं बढ़ेगी।
1: जी जी चतुर्वेदी जी, ये जो अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने भाजपा कहा पश्चिम बंगाल के संदर्भ में खासतौर पर कि भाजपा के राष्ट्रवाद को पश्चिम बंगाल की मतदाता ने स्वीकार लिया है इस बार और उस पर मोहर लगाई है, मूलतः जो हम अभी तक देखते आ रहे थे 2021 तक की जो मूलतः बांग्ला भाषी लोग थे, जो मारवाड़ी नहीं थे, जो बाहर से आकर नहीं बसे थे, उनका जुड़ाव इन चुनावों से पहले तक भाजपा के साथ पूरी तरीके से नहीं देखा जाता था, एक तरीके से बाहरी पार्टी की छवि थी भाजपा की वहाँ पर। तो जो बीजेपी का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है उससे इस बार बांग्ला भाषी लोगों ने ज़्यादा आइडेंटिफाई किया अपने आप को?
2: देखिए इसको ना थोड़ा सा और हम पीछे ले जाना चाहेंगे। ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस है उसका गठन उन्होंने 1997 में किया था और 1998 में वो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ, तब टंडन जी भी सरकार में होते थे, उन्होंने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। उसके पहले के चुनावों को आप देखेंगे, खासतौर पर राम मंदिर के आंदोलन के उभार के बाद, कोठारी बंधु जिनका बलिदान हुआ था राम मंदिर के आंदोलन में 1991 में, तो कोठारी बंधु उसी कलकत्ता से आए थे। आप देखेंगे उस समय का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का वो 10% से ज़्यादा था, जो सुधांशु त्रिवेदी अभी 2011 की बात कर रहे हैं, 10% का, 16 की बात कर रहे हैं, तो 10% से ज्यादा था। लेकिन ममता बनर्जी जब आती हैं उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के, तो ये वोट बैंक घटने लगता है। आप देखेंगे कि 4% पर आ जाता है। हालांकि 1998 में एक सीट जीती थी, तपन सिकदर दमदम से जीते थे, 1999 में दो सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, तपन सिकदर दमदम से और शायद कृष्णानगर से सत्यव्रत मुखर्जी जी जीते थे, दो लोग जीते थे। और एक चीज और देखिए कि ममता बनर्जी दबाव बहुत बनाती थी, उनकी छवि ही रही है लड़ाका की, लड़ने वाले की, तो वो क्या करती थी कि जब समता पार्टी वाला मामला आया, तहलका वाला मामला आया, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अलग रास्ता चुन ली थी और उसके बाद वो सरकार से अलग हो गई थी। और एक चीज और भी है कि टंडन जी ज्यादा गहराई से बता पाएंगे, हम तो रिपोर्टर के नजरिए से देखे हैं कि तपन सिकदर जैसे वरिष्ठ नेता को ममता बनर्जी के दबाव में मंत्रिमंडल से हटाया भी गया था। तो जो भारतीय जनता पार्टी है, जो 4% जो 2011 और उसके 2004 में या 9 में दिखती है 4% के आसपास, उसके पीछे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का ही साथ रहा है। अब ममता बनर्जी का उभार भी भारतीय जनता पार्टी के ही साथ होता है। आप देखिए कि बलबीर पूंजी का एक राज्यसभा में दिया हुआ भाषण याद आता है, उन्होंने कहा था कि हमारी ममता दी तो साक्षात दुर्गा है। लेकिन ममता बनर्जी जो हैं, जब 2011 में सत्ता पाती हैं, वो उस समय भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ती हैं, वैसे तो साथ छोड़ना और लेना उनका चलता रहा है, और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक को खाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी बदलती है और आप देखिए कि 2016 में उभरना शुरू करती है और 2019 में तो उसने लोकसभा चुनाव में जो किया था, आप देखिए 18 लोकसभा सीटें जीत लेना, ये मामूली बात नहीं थी। उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी का कारवां बढ़ता है। तो ये कहना कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पहली बार वहां आ रहा है, ऐसा नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बंगाल ने 1991-92-98 में भी देखा था, समझा था, पकड़ा था। और फिर मैं दोहरा रहा हूं कि 1967 में जो विपक्षी दलों की कांग्रेस के खिलाफ जो गोलबंदी हुई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का पूर्ववर्ती संगठन भारतीय जनसंघ 58 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 24 परगना जिले की गोसाबा सीट से जनसंघ के गोपाल चंद्र मंडल चुनाव जीते थे, रिजर्व सीट थी। तो ये ठीक है कि

0: minister for this debacle for Trinamool Congress.
1: Sandeepan Dasgupta, thank you so much for joining us on the program.
0: Thank you.
1: And thank you. Just in.
2: जी, पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के ताज़ा रुझान हमारे सामने हैं। 30 सीटों के रुझान हमें अभी तक मिले हैं और कुछ सीटों पर परिणाम भी मिलने लगे हैं। अब तक 3 सीटों के परिणाम मिल चुके हैं, एक सीट AINRC, एक सीट भारतीय जनता पार्टी और एक सीट

0: सीटों पर परिणाम भी मिलने लगे हैं। अब तक 3 सीटों के परिणाम मिल चुके हैं, एक सीट AINRC, एक सीट भारतीय जनता पार्टी और एक सीट DMK के खाते में गई है। AINRC 8 सीट, भाजपा 1, कांग्रेस गठबंधन 1, ऑल इंडिया अन्ना DMK 1 और अन्य 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं।
1: Ashok ji, I want to get back to you. What we just heard our, you know, correspondent was saying, that Mamata Banerjee is still very sure. She's I won't say hopeful, but she saying that it is still early days, so to speak. It's only a few rounds of counting that has happened, and she's sure that the TMC will be able to form a government. Would you agree to that? Because only a few rounds have been counted. There's still a few more rounds of counting to go on. So things can turn around, or can they?
2: No, first of all, I think every leader has to keep his or her cadres in good humor.
1: Right.
2: And they don't want to demoralize them so that they run away from the counting centers. So they have to be there.
1: Right.
2: And that's a very, very right strategy also. But this is also a fact that not even the half of the votes have been counted so far.
1: Right.
2: Less than half votes have been counted. So every party has a right to be optimistic about the results. And therefore, I think there is nothing wrong in claiming that by the time that is counting is over, we will be still doing well. But these are all still initial trends. But sometimes, initial trends are not showing any neck and neck fight.
1: Right.
2: It's almost 97 and 190. So even if it is initial trends, but they are, I think, a very clear indicator the way things are going.
0: जी अशोक जी, पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ा हुआ जो मतदाता है, अल्पसंख्यक मतदाता है, वो तृणमूल कांग्रेस का कोर वोट बैंक माना जाता था। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ वहाँ पर और उसके बाद, क्या आपको लगता है कि ये जो रिवीजन हुआ वहाँ पर, अब ये जो कोर वोट बैंक था वो डाइल्यूट हुआ है वहाँ पर?
2: नहीं, देखिए, जो 83 लाख वोट काटे गए हैं वेस्ट बंगाल के SIR में, उसमें हिंदू वोट ज़्यादा थे। ऐसा नहीं है कि ये माइनॉरिटी वोट थे, लेकिन ये भी साथ में सच्चाई है कि जो वोट काटे गए थे वो या तो मर गए थे या वहाँ रहते नहीं थे। तो ये SIR पर बहस मुझे लगता है बंद हो जाएगी, क्योंकि ये इसी से वोट परसेंटेज बढ़ी है। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर 100 वोट पर हम परसेंटेज देखते थे 60 आती थी, अब 80 वोटों पर देखी जा रही। 20 वोट जो थे वो सचमुच में ही डेड वोट था, या तो वो लोग मर गए थे या वोटर नहीं। लेकिन इसको अगर धर्म या उसके साथ जोड़कर देखें तो ये 83 लाख वोट जो कटे, इसमें ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी के बहुत सारे वोट काट दिए गए जिसके कारण ये हुआ। लेकिन कुल मिलाकर, जो मैंने अभी पूछा भी प्रश्न उनसे, कि जो ये दो फैक्टर आए, अवैसुद्दीन और ओवैसी भी वहाँ गए और हुमायूं कबीर सडनली खड़े हो गए कि मैं वहाँ पर एक बाबरी मस्जिद बनाऊँगा, और हमने देखा नौजवान मुस्लिम किस तरह से ईंटें लेकर और पत्थर लेकर वो मस्जिद बनवाने के लिए निकले, और इसलिए फिर ये भी आरोप लग रहा था कि हुमायूं कबीर को तो भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है। लेकिन कुछ भी हो, ये अल्पसंख्यक वोट में सेंध तो लगी है, इसमें दो राय नहीं है। कहाँ कहाँ लगी है, कितनी लगी है, ये देखने की बात। फिर हम एक चीज़ और नहीं भूलें कि बहुत लंबे समय तक जब वाम मोर्चा सत्ता में था तो मुस्लिम वोट वाम मोर्चे को भी ज़्यादा जाया करते थे, उससे पहले कांग्रेस को भी जाते थे। तो ये जो एक ट्रेंड है, अभी तो भाजपा भी कहेगी कि भाई 2-4% वोट हमें भी मिले हैं, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी होगी, मैं समझता हूँ इसके लिए हमको इंतज़ार करना चाहिए।
1: And before we move forward, let me share with our listeners that of the results that have come in from Puducherry, Chief Minister N. Rangasamy has won from one of the constituencies. He contested elections on 2 constituencies and he has won from Thattan Chavdi. Mr. Ashok Tandon, I want to ask you, and then Ashok Ji, Umesh, I want to get back to you. In Puducherry, Union Territory, but obviously it has an assembly, 30 seats. And if you look at this Chief Minister, he's seeking a second consecutive term, but he's been in power as Chief Minister since 2001, in the sense that off and on he's been there. So he's been a very popular Chief Minister. How much of what is happening, and for, in fact, even his party, AINRC, is ahead in Puducherry. How much is it to do with his personal connect with the people, his personal charisma with what's happening in Puducherry.
2: See, traditionally Puducherry, DMK used to leave Puducherry to the Congress party, and it

0: used to be invariably Congress Chief Minister.
1: Yes.
0: And now because of changes which have taken place, no, it is BJP, AIDMK plus this particular individual who is very popular there.
1: Yes, the Chief Minister.
0: So it is not really a victory of BJP. BJP is not having much seat there. But turning Puducherry in favor of BJP and AIADMK is something very phenomenal. Traditionally, it used to be Congress which was ruling in Puducherry.
1: In fact, it's interesting because what you're saying about Congress and Rangasamy, the present chief minister, he became chief minister and he, you know, as a Congress chief minister in 2001 and then in 2006. Mm-hmm. Later on, it was only in the, you know, he had to, of course, he resigned in 2008 and then 2011, he formed his own party, which is NRC. So, and after that, of course, he joined hands with the BJP and now there's an NDA government. Umesh ji, aap kuch kehna chahenge?
2: Dekhiye, wo Bharatiya Janata Party ki to jeet se zyada wo नारायण स्वामी जी की जीत कही जाएगी. और दूसरी बात, एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि जो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ इलाका है, तीनों राज्य पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी और तमिलनाडु और असम को भी जोड़ लीजिए, तो इन तीनों में एक चीज़ देखिए कि जो आक्रामक नेतृत्व है, पुदुचेरी को छोड़ दीजिए, तो उस जो जनता के पक्ष में आक्रामक है उसको समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है. जैसे टीवीके को वहाँ, भारतीय जनता पार्टी को, और वहाँ असम में हेमंत विश्व शर्मा को भी कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को. और दूसरी एक चीज़ और है कि जो SIR का सवाल पूछा था, मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा. मैं दूसरे फेज का, जो पश्चिम बंगाल का जो 29 अप्रैल को चुनाव हुआ था, उसको मैं मतलब नहीं देख पाया हूँ उस तरह से. लेकिन फर्स्ट फेज में जो 152 सीटों पर चुनाव हुए थे, आप देखेंगे कि SIR की तुलना में, पिछले साल की तुलना में, जो गिनती के हिसाब से देखेंगे, काउंटिंग के हिसाब से, तो 26 लाख ज्यादा वोट पड़े थे. ज्यादा वोट पड़े थे मतलब परसेंटेज के हिसाब से भी नहीं, गिनती के हिसाब से. तो मुझे लगता है कि सिर्फ SIR एक मुद्दा तो था, लेकिन सिर्फ SIR ही एक मुद्दा नहीं रहा.
3: और इस बीच आनंद कुमार हमारे संवाददाता भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से जुड़ गए हैं. जी आनंद, इस समय आप वहाँ भाजपा मुख्यालय पर मौजूद हैं, क्या माहौल है कार्यकर्ताओं में, कितना उत्साह देख रहे हैं आप वहाँ पर इस समय?
4: जी बिल्कुल, जिस तरह से वेस्ट बंगाल में जो रिजल्ट आए हैं बीजेपी के फेवर में, उसको देखते हुए कार्यकर्ताओं में काफी यहाँ पे हर्ष का माहौल है. और जितने भी हमारे बीजेपी प्रवक्ताओं से बात हुई, बीजेपी लीडर से बात हुई है, सबका कहना है कि जो वहाँ भय का माहौल था उसकी समाप्ति हुई है. और प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में उनके गवर्नेंस मॉडल को लेके लोगों ने वहाँ भरोसा दिखाया है कि वहाँ एक चेंज की जो बदलाव की जो जरूरत थी वो साकार होता हुआ दिख रहा है. क्योंकि इलेक्शन के जो रिजल्ट आ रहे, जो ट्रेंड है, उसका असर मेजोरिटी लेवल से काफी आगे पहुंची हुई है. और इसी तरह से आसाम में देखें तो वह तीसरी बार वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट बनाने जा रही है अपनी. तो इन सब को देखते हुए इनमें काफी उत्साह भरा हुआ है. और सबसे अच्छी बात इसमें एक और खबर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे, शाम के समय पहुंचेंगे, और वो पार्टी कार्यकर्ताओं को एड्रेस करेंगे. परफॉर्मेंस के ऊपर को लेके उन्होंने जिस तरह से मेहनत की कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को वहां आगे बढ़ाने में, और इन सबको, इन पांचों राज्यों में जो बीजेपी के परफॉर्मेंस को लेके वहां पे बात होगी, किस तरह से उन्होंने गवर्नेंस मेडल को वहां स्थापित किया है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, असम हो, और वहाँ पुदुचेरी में भी एनडीए की वहाँ पे बढ़त है. और डीएमके भी, डीएमके वहाँ पे देखे, अगर तमिलनाडु की बात करें तो डीएमके भी वहाँ पिछड़ती नजर आई है. तो जिस तरह से इनका एक गवर्नेंस मॉडल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जिस तरह से बात हुई है दोनों स्टेट में देखे, आसाम और वेस्ट बंगाल में, तो निश्चित रूप से लोगों ने एक बहुत मजबूत भरोसा दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके लीडरशिप को लेकर.
1: आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. तो अब हमारे पास समय रह गया बहुत कम, पर इससे पहले कि हम ब्रेक में जाएं, लेट अस गिव यू द लेटेस्ट ट्रेंड्स कमिंग इन फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी. इन असम, बीजेपी हैज ऑलरेडी टेकन लीड इन 79 सीट्स. इट्स एलाय एजीपी इज लीडिंग ऑन 9 सीट्स एंड बीपीएफ इज लीडिंग ऑन 10. इन केरल, बीजेपी इज अहेड ऑन 2 सीट्स. इंडियन नेशनल कांग्रेस इज लीडिंग ऑन 60 सीट्स. इन पुदुचेरी, द AINRC इज लीडिंग ऑन 6, and BJP is leading on 3. In Tamil Nadu, TVK is leading on 108 seats, whereas in West Bengal, the BJP is leading on 192 seats. And that's all we have time for in this segment of the program. We will be back at 1:10 p.m. Till then,

0: जनादेश 2026
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
2: एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम जनादेश 2026 में। इस कार्यक्रम में आज सुबह से हम ला रहे हैं आप तक नतीजे चुनावों के। चार राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में जो चुनाव हुए उसके नतीजे सुबह से हम लगातार रुझान जो भी हमें मिल रहे हैं वो हम आप तक पल पल की खबर पहुंचा रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में इन रुझानों पर, इन नतीजों पर चर्चा के लिए विशेष मेहमान भी जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले अगर हम ताज़ा रुझानों पर नज़र डालें तो
3: Vishal, before we start do that, let's introduce once again introduce our panelists to our listeners. We have with us, of course, senior political analyst Mr. Ashok Tandon, who's been with us for the last couple of hours, and now joining us on the program is another political analyst, N.K. Singh. Mr. Singh, Mr. Tandon, welcome to the program again.
4: Thank you.
2: जी। और रुझानों पर नजर डाल लेते हैं। अब असम से जो हमें ताज़ा रुझान मिल रहे हैं, इस समय असम गण परिषद 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है वहाँ पर। रुझानों से जो हमें लग रहा है 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 24 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। केरलम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर वहाँ बढ़त हासिल है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 9 सीटों पर आगे चल रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 63 सीटों पर आगे चल रही है।
3: Talking about Puducherry, the AINRC, which is a part of the NDA government that is in power there at the moment, it is leading on 5 seats. The other partner in the alliance, BJP, is leading on 2, while the DMK is leading on 3 and the Indian National Congress is leading on 6. Let's move on to Tamil Nadu. In Tamil Nadu, actor Vijay's TVK has emerged as the surprising factor in this election. His party TVK is leading on 110 seats, whereas the ruling dispensation DMK is leading on 48 seats. The BJP is leading on 1 seat. BJP's alliance partner AIADMK is leading on 57 seats, and the Indian National Congress is leading on 4 seats.
2: Ji, aur Pashchim Bengal mein 293 seaton के रुझान हमारे पास हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ती दिखाई पड़ रही है। 193 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है भारतीय जनता पार्टी। तृणमूल कांग्रेस 95 सीटों पर सिमटती दिख रही है, और इसके अलावा AISF को 2 सीटों पर बढ़त मिली हुई है और CPM को 1 सीट पर बढ़त हासिल हुई है।
3: And before we already have, you know, we have a few panelists with us online also. But before we do that, Mr. Singh, a very quick comment on the results that have come in, expected or, like I said, in Tamil Nadu, a surprise.
4: No, I'm completely surprised by the results of West Bengal. Mm-hmm. I mean, it was unexpected. I mean, whoever says that he had been in the know of the things and he had been knowing as to what exactly the result is going to be, I think he's not correct.
3: Right.
4: Nobody had expected 2/3, mind you, it's not 2/3 seat, number of seats, and that to a quantum jump of 6% over the last assembly elections, Lok Sabha elections. So, and 10% over the last assembly elections. That's, I mean, willy-nilly, that says that there is something more than what meets the eyes.
3: Right.
4: And broadly, if you take the entire scenario, mm-hmm. there is a very palpable situation where BJP enrolls in a state which is culturally altogether different, which has strong cultural moorings.
3: Yes.
4: And if they can transgress that and broad national Hindu nationalism, that gets completely that becomes influential in that West Bengal, which has its own cultural identity.
3: Yes.
4: That shows that BJP, I mean, there is no limit for BJP's expansion.
3: Right.

0: Yeah.
1: strongest also came at the end its moment, you know, at the last moment.
0: Right.
1: So a lot of this has gone into the fact that the Congress did not do well, and Gaurav Gogoi's loss should be like a, you know, a moment of reflection for them, because introspection for them, because that is the Jorhat seat. If
0: Yeah.
1: you look historically, Jorhat was the seat of Ahom power, the dynasty. Ahom
0: Right.
1: dynasty was the seat of power, and there is a saying in Assam, which is there is an old saying in Assam that Jorhat decides who sits in the CM seat
0: All
1: in
0: right.
1: Dispur, and Majuli is the
0: Yeah.
1: constituency of the former CM Sarbanand Sonowal. Only Himanta Biswa Sarma had bucked that trend. So far, it seems that, you know, that the new the bucking of the trend will continue with this term as well.
0: Right. और सतीश श्रीवास्तव चेन्नई से हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी सतीश, हेलो।
2: नमस्कार सर।
0: जी सतीश जी, तमिलनाडु के जो जो जो नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, बहुत चौंकाने वाला प्रदर्शन जो है इस बार देखने को मिला है हमें। 110 सीटों पर तमिलगा वेत्री कझगम इस समय आगे चल रही है। थलपति विजय की पार्टी है, अभिनेता विजय की पार्टी है ये, और अब महज अभी 2 साल ही नहीं हुए हैं इनको राजनीति में कदम रखे हुए, और 2 साल के भीतर ही इतना बेहतरीन प्रदर्शन करना, एक तरीके से कहेंगे तो अचंभे में डालने वाला प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन को वहाँ पर राजनीतिक हलकों में किस तरीके से देखा जा रहा है, और ख़ासतौर पर अगर हम उसकी बात करें, डीएमके की बात करें, डीएमके को जिस तरीके का सेटबैक लगा है, इस पर लोगों का क्या सोचना है?
2: देखिए, डी जो दलपति विजय जो हैं वो ये 2 साल पहले राजनीति में प्रवेश किए हैं, लेकिन सामाजिक कार्यों में इनकी जो भूमिका थी वो पिछले 5-7 सालों से नजर आ रही थी। ये लगे हुए थे जमीनी स्तर पर। और डीएमके की स्थिति ऐसी थी कि एक तो डीएमके ने भी इनको जमीन दी कि ये अपनी अपनी जो राजनीतिक पारी खेल सके, एक पिच तैयार की। एक तो इनके यहाँ परिवारवाद चला,
0: जी
2: करुणानिधि ने स्टालिन जी को स्टालिन जी ने उदयनिधि स्टालिन जी को अपनी पार्टी का प्रमुख बनाने का प्रयास किया, उसका भी था। और डीएमके की जो हिंदू विरोधी छवि निकल करके आ रही थी, वो सीधे सीधे जो बोल रहे थे, उसका भी प्रभाव पड़ा। और डीएमके ने जो पिछले चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए थे, उसमें कई वादे वो जो हैं अभी पिछले 5-6 महीनों में पूरा करना शुरू किए।
0: जी
2: तो इसका भी जनता जनता मूर्ख नहीं है। जनता समझ रही है कि आप किस लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। जैसे विद्यार्थियों को लैपटॉप, अब इनको याद आया 3-4 महीना पहले कि नहीं, हमने हमको विद्यार्थियों को लैपटॉप देना है। उसके पहले ये शांत शांत पड़े हुए थे। तो ये कई चीजें थी। और उसी में वहां पे ये पिछले 2 सालों से जो इनकी पार्टी थी वो जगह जगह जमीनी स्तर पे जाके काम कर रही थी। और जो इनका अभिनेता की छवि थी समाज के बीच में वो तो थी ही। युवा वर्ग जो कि 20% मतदाता है,
0: जी
2: वो तो सीधे तौर पर विजय को देख रहा था।
0: जी जी धन्यवाद सतीश जी। एन के सिंह जी, तमिलनाडु के जो हम नतीजे अब देख रहे हैं, और जिस तरीके से टीवीके ने एक तरह से हैरतअंगेज प्रदर्शन किया है, पहली बार विधानसभा चुनाव में ये उत्तरी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम, और ये जो प्रदर्शन है टीवीके का, क्या ऐसी क्या इन्होंने मतदाताओं के सामने क्या विचारधारा अपनी रखी, इस तरीके की राजनीतिक विचारधारा जो कि मतदाता खींचे चले गए?
3: देखिए, ट्रेडिशनल एनालिसिस जब हम करते हैं तो हम ये एक फ्रेम बनाते हैं कि ये विचारधारा इसकी क्या रही होगी, भाजपा की ये है, कांग्रेस। मतदाता जरूरी नहीं कि इन चीज़ों से मुतासिर बहुत ज़्यादा होता हो आज का मतदाता। और तमिलनाडु का तो कल्चर रहा है कि फिल्म वर्ल्ड से आए लोग, आप देखते होंगे कि
0: जी
3: कई बार अगर फिल्म की दुनिया का कोई मर जाता है तो 10-20 लोग सुसाइड कर लेते हैं,
4: मंदिर बनते हैं,
3: कुछ लोग मंदिर बनवा देते
4: जी
3: हैं। तो वहाँ पे पेंचेंट फॉर हीरोज, फिल्म हीरोज, ये कुछ अजीब सा है जो कि बाकी दुनिया को समझ में नहीं आता, लेकिन वहाँ पे है। तो अगर आप देख रहे हैं कि विजयन अचानक 2 साल में ये मेटियोरिक राइज होता है और इलेक्शन स्केल पे वो क्वांटम जंप लेते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो जनता का आशीर्वाद उनको उनके फिल्म का जो पास्ट है। आप देखें तमिलनाडु की सारी पार्टियां, जयललिता का मुझे याद है, जब जयललिता को करप्शन चार्जेस में जेल किया गया तो अगले इलेक्शन में उनका वोट परसेंटेज बढ़ गया।
4: जी
3: तो ये अजीब राज्य है जहां अपनी कल्चरल आइडेंटिटी बेहद

0: development is that even Communist Party, the then ruling party, now CPM. It is CPM, LDF is organizing the religious functions.
1: Yes.
0: So why is it happening? Because BJP has forced them to fall in line and toe the same line which BJP does.
1: Right.
0: So these are the factors one has to take into consideration while analyzing the development.
1: Right.
2: और अब हमें चुनावों के नतीजे भी मिलने लगे हैं मतगणना के, और पुदुचेरी से हमारे पास नतीजे आ रहे हैं। पुदुचेरी के जो रुझान हैं और नतीजे हमारे पास हैं, पुदुचेरी में केंद्र शासित प्रदेश में कुल 30 विधानसभा सीटों के लिए मतदान कराया गया था, और अभी जो ताज़ा नतीजे और रुझान हैं वो हैं ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस को 4 सीटें मिल चुकी हैं, 4 सीटों पर जीत हासिल कर ली है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में, और 5 पर बढ़त बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी 1 पर बढ़त बनाए हुए है, 1 पर आगे चल रही है, और 1 सीट उसने भारतीय जनता पार्टी ने भी पुदुचेरी में जीत ली है, अपने नाम कर ली है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1 सीट जीतने में कामयाबी हासिल हुई है, और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम ADMK को भी 1 सीट जीतने में कामयाबी मिली है।
1: एंड अनदर रिजल्ट कमिंग इन, the result has come in from Assam, where the Congress leader, the face of Congress in this elections, Gaurav Gogoi, has lost from the Jorhat assembly seat. In fact, it is a seat where he had won the 2024 assembly, 2024 Lok Sabha elections. विशाल,
2: और केरलम से भी हमारे पास ताज़ा रुझान आए हैं। केरलम में विधानसभा की सभी 140 सीटों में से 3 के परिणाम मिल गए हैं। 2 सीट कांग्रेस को गई हैं और 1 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जीती है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है। ये गठबंधन 103 सीटों पर आगे है, LDF 35 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, और भाजपा गठबंधन 2 सीटों पर आगे चल रहा है।
1: एंड ऑफ द 2 सीट्स दैट द कांग्रेस हैज वन इन केरलम, लेट मी गिव यू द रिजल्ट्स फॉर those 2 seats are Thrissur, where its candidate Rajan J. Pallan has won by a margin of over 26,000 votes, and the other seat where the Congress candidate has won is Haripad, where Ramesh Chennitala has won by more than 23,300 votes. So those are the results that we have right now.
2: Ji, N.K. Singh ji, Keralam ki baat kare to jo LDF hai wo 35 seaton par badhat banaye hue hai, और कांग्रेस का नेतृत्व वाला UDF गठबंधन इस बार निर्णायक बढ़त बना ली है इस बार उसने, और 103 सीटों पर यह गठबंधन आगे चल रहा है। LDF का पिछड़ना केरलम में एक तरीके से जो वाम राजनीति देश की थी उसमें एक आखिरी किला केरलम माना जाता था। अब ये नतीजे क्या बता रहे हैं कि वाम राजनीति अब किस दिशा में जा रही है, क्या उसकी स्थिति होने वाली है आने वाले समय में?
0: देखिए, एक बात तो है कि वाम आदर्श जो आइडियोलॉजिकल इसके बोरिंग्स हैं वो कभी डाई नहीं करेंगे। वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, वाम भारत के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इसलिए फेल हुआ कि भारत आइडेंटिटी ग्रुप्स में बटा हुआ है, और जब जब कोशिश की कि नहीं ब्रॉडर गरीबों का एक आइडेंटिटी वो बनाए जिसमें शोषित हों, एक्सप्लॉयटेड हों, प्रोलेटेरिएट हों, ये हो नहीं पाया, क्योंकि वो फिर वापस जाति में चला जाता था, धर्म में चला जाता था, तो आइडियोलॉजी फेल हो गई। इसमें कोई दौर नहीं, इंडिया में इलेक्टोरली फेल हो गई, लेकिन आइडियोलॉजी तो रहेगी। हाँ, यहाँ पे है तो ये तो केरल में आप जानते ही हैं कि वो अल्टरनेट करते हैं, आज यहाँ हैं, आज उन्होंने कांग्रेस को दिया है, अगली बार वो फिर लेफ्ट को देंगे, तो ये अल्टरनेट कर, उनके पास विकल्प है, और दोनों गवर्नमेंट्स फेयरली ओके करती हैं। पब्लिक वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं वो वहाँ बहुत ही स्मूथ चलती हैं, और वेलफेयर की स्कीम सारी इम्प्लीमेंट बहुत अच्छी होती है। मैं चूंकि मेरा सब्जेक्ट है तो मैं केरल के डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को देखता हूँ, तो ताजुब होता है। इवन जुडिशियल प्रोसेस आप देखें तो वहाँ पे अगर किसी को चार्जशीट कर दिया गया है तो 91% केसेस में उसका कन्विक्शन सर्टेन है
1: जी,
0: जबकि बिहार में इसके ठीक उल्टा है, सिर्फ 8% रेट ऑफ कन्विक्शन या 11% होता है, बाकी लोग छूट जाते हैं। तो क्वालिटेटिव आप देखें ज्यूरिसप्रूडेंस के भी स्तर पे, तो मुझे लगता है केरला बेस्ट गवर्न है, और ये अल्टरनेट एक विकल्प है तो करते हैं, बाइपोलर सिस्टम है। हाँ, जब बीजेपी इसमें चली जाएगी, जब

0: बीजेपी का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो ये ट्राइपोलर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि वहां पे तीन समूह हैं, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स एंड
1: जो हिंदू मलयाली पॉपुलेशन
0: जी, और ये एक ही पोस्ट डाल है, उसमें थोड़ा सा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए एजवाज है, मुस्लिम्स है, तो जिसे कांग्रेस को ब्रांड किया गया आपकी बार की मुस्लिम्स पार्टी है, विच वॉज नॉट द केस, क्योंकि कांग्रेस को इसे आप देख रही हैं कि वोट मिला है, सबका मिला है। तो मुझे लगता है कि ये कहना, और कांग्रेस इस वजह से नहीं जीत रही है वहां पे कि कोई यहाँ पे से केंद्र में बैठा मेहनत कर रहा है
1: जी,
0: वो वहां पे कांग्रेस का अपना वजन है, अपना स्ट्रक्चर है
1: जी,
0: जिसकी वजह से जीत रही। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के देखें तो केरल एक डिफरेंट स्टेट है और वेरी वेल गवर्न्ड स्टेट है, वहाँ की मैच्योरिटी समझ में आ रही है
1: जी। एंड लेट्स गेट बैक टू गुवाहाटी वेयर पॉलिटिकल एनालिस्ट अमृता मधु कैवल्या इज विद अस। अमृता, अर्लियर यू नो आई वाज टॉकिंग टू यू एंड वी वर टॉकिंग अबाउट गौरव गोगोई, एंड नाउ द रिजल्ट हैज कम इन। गौरव गोगोई हैज लॉस्ट द जोरहाट असेंबली सीट टू हिज बीजेपी राइवल। What were the factors for his? Because, okay, the Jorhat seat as it is, the sitting MLA was from BJP, but the fact that he had won the bigger, the Lok Sabha constituency, and yet he's lost the assembly constituency in the same segment.
2: I think initially just looking at, I don't know the numbers, exact numbers, and I don't know how the, you know, how the numbers are stacked against Gaurav, but and which areas have not voted for him. But I must tell you that Hiten Goswami, his rival, is an old BJP hand.
1: Yes.
2: He is not a new face, and he's been in that area. I have roots in Jorhat, and I have family in Jorhat, and I know that Hiten Goswami is very, he's very popular, he's very liked, simply because of the fact that he's there for people. He's there with people, if there is a small function somewhere, you see Hiten Goswami being around with his presence. I think people were expecting Gaurav to win this seat because his father has been one of the promised leaders, political leaders of the state, and he hails from that area.
1: Yeah.
2: But Gaurav also has not been particularly present in the constituency much, because he has to deal with his duties as the deputy Lok Sabha leader of the Congress of the Congress. I think that's also one thing that has really worked against him. And the other, I would imagine, is that I think the delimitation of the seat, has also played a part.
1: Okay.
2: And this is Gaurav's first assembly election.
1: Yes.
2: And I think what really shows that, I think being present there and being around for the people, I think is a huge, would have made a huge difference for him.
1: Right. And now
3: जी, हमारे दीपेंद्र संवाददाता भाजपा मुख्यालय से इस समय जुड़ गए हैं। जी दीपेंद्र
4: जी।
3: हाँ दीपेंद्र, इस समय आप भाजपा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर मौजूद हैं, किस तरीके का उत्साह आप कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को भाजपा मुख्यालय पहुंच रहे हैं?
4: जी बिल्कुल, जिस तरह से असम और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए पार्टी मुख्यालय में इस समय जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। जो कार्यकर्ता है हाथों में पार्टी का झंडा लिए हुए जीत की खुशी में नारे लगा रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई भी खिला रहे हैं। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले आतिशबाजी हो रही थी और ढोल नगाड़े की धुन पर जो कार्यकर्ता है वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी के नेता और जो कार्यकर्ता जो है, कई लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि यह जो जीत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा के सुशासन मॉडल जो जनता का भरोसा है ये उसकी जीत है। और क्योंकि आपको बता दूं कि शाम में जो है प्रधानमंत्री मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उनका आभार जताएंगे। जी
1: जी दीपेंद्र, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई विल गेट बैक टू आर आर पैनलिस्ट इन द स्टूडियो। वी टॉकिंग अबाउट असम एंड वी जस्ट वर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट गौरव गोगोई द फेस ऑफ कांग्रेस हैज लॉस्ट इन जो हिज द जोरहाट असेंबली सीट एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट बीजेपी ऑन इट्स ओन दिस टाइम हैज मैनेज टू गेट अ मेजोरिटी ऑन इट्स ओन इन असम ऑन इट्स वे टू बिकम मेक अ गवर्नमेंट फॉर द थर्ड टाइम, इट्स ऑन अ हैट ट्रिक। सो वॉट डज इट से अबाउट द ऑपोजिशन in Assam assembly seat? Because Congress, as we see that at the moment, I can see the trends that are coming in, Congress is leading on 25 or probably 24 seats. So what does it say about the opposition in the party, Mr. Ashok Tandon?
5: No, as we know, Congress has been ruling Assam for a very long time, and BJP was a very late comer into the Assam politics. But gradually, the Congress started losing ground. They had stalwarts in

0: past. But I don't know, I think I would blame the central leadership of the Congress as far as failure in Assam is concerned. Okay. They were not really genuinely contesting the Assam election. Otherwise, I think if I'm not wrong, Rahul Gandhi made only one trip to Assam. So they had not put all their guns blazing in Assam. And the leader who was their deputy leader in Lok Sabha, Gaurav Gogoi.
1: Yes.
0: So they fielded him, as your correspondent was saying, that people were perhaps confused whether he wants to remain the Lok Sabha member or he wants to come here. In the process, you know, when you are trying to ride two boats. So that was perhaps one reason. And in the absence of stalwarts, like earlier, Tarun Gogoi and others, they have not been able to develop a new leader.
1: Right.
0: The only leadership which has emerged is Gaurav Gogoi, and he won the Lok Sabha election, and he was performing well in Lok Sabha. He was deputy leader also.
1: Yeah.
0: But then you relying on him to win assembly was perhaps, I think...
1: It also shows that at a state level, the party doesn't have... You do not have any, you know, strong leaders or faces that you can promote.
0: Plus, also, the central leadership was not very seriously contesting the Assam election.
1: Okay.
0: I may be wrong, but I'm guessing can...
2: No. Ashokji is 100% correct, but I will add to that.
1: Yeah.
2: You see, in so many states, you will find BJP doesn't have a leader.
1: Yeah.
2: But still, why BJP is wrong-forming? Why this this kind of catchment area that BJP completely owns? The reason is that its leader does it, I mean, does the rest of the work.
1: He leads from
2: all
1: the front.
2: Through, I mean, continuously.
1: Yeah.
2: Which is not the case with the Congress.
1: Right.
2: Had Rahul Gandhi, whoever they are, I mean, it's Nehru family. But even if at that juncture, he had continuously done what Ashokji is saying, that the absence of the national leader would determine as to whether people should vote or not.
1: Right.
2: And that is what is happening.
1: Right.
3: जी गौरव भाटिया को सुनते हैं, उन्होंने कुछ कहा है पार्टी की जीत पर और चुनाव नतीजों पर, क्या कहा है ये सुनते हैं।
4: People of West Bengal wanted a change, a positive change which can create Sonar Bangla, and they see that change coming under the leadership of Shri Narendra Modi. Second reason, the appeasement politics of Mamata Banerjee has been rejected. This country belongs to everyone, and the majority, the Hindu class, cannot be treated like a second grade citizen. Third, women empowerment. This has to come. And the Bharatiya Janata Party government will ensure that in West Bengal, Mamata Banerjee, being a female, was seen standing with goons of TMC who were targeting females and violating their dignity.
3: जी एन के सिंह जी, सोनार बांग्ला जो अभी उन्होंने कहा भाजपा प्रवक्ता ने मिस्टर भाटिया ने, कि सोनार बांग्ला का जो नैरेटिव था भाजपा ने रखा वहाँ पर, और तुष्टिकरण की राजनीति जो वहाँ पर बांग्ला पश्चिम बंगाल में होती रही, और महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो भाजपा ने सवाल उठाए और उन्होंने बताया भी, तो क्या आपको ये जो बातें इन्होंने बताई भाटिया जी ने कहीं कि जीत का कारण है, क्या इससे आगे भी कुछ और आपको दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पश्चिम बंगाल में जो जीत हुई है, इतनी बड़ी जीत हुई है, इसके पीछे इससे आगे भी कुछ और है?
2: देखिए, सवाल थोड़ा डीप, इसका एनालिसिस की जरूरत है। डेमोक्रेसी एक वादा करता है, और हमारा संविधान का जो हमारा प्रीएम्बल है वो वादा करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये सबके लिए करता है, राइट टू इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी वगैरह वगैरह। क्या आज एक अफसर, एक मंत्री का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता है जिसमें कि एक गरीब का बच्चा पढ़ता है, तो उस काउंट पे आप फेल रहे 70 साल से? आखिर जनता को क्या वजह है कि वो हिंदू मुसलमान, चाहे यादव ठाकुर राजपूत ब्राह्मण, ये क्यों करना पड़ रहा है, वो आइडेंटिटी ग्रुप्स में क्यों जा रही है? जब इसको एनालाइज करेंगे कि डेमोक्रेसी के इस सिस्टम में जो किरदार थे वो लोग फेल हो गए वो डिलीवर करने में, तो मजबूरन उसको वापस, आप देखें कि सोशल जस्टिस फोर्सेस के नाम पे जब जयप्रकाश के आंदोलन के बाद ये शुरू हुआ, तो आपने देखा कि किस तरह लालू यादव, मुलायम सिंह, ये सारे लोग उभरते हैं, क्या वो डिलीवर कर पाए? अगर नहीं किया तो नतीजा ये हुआ कि आज बीजेपी एक ब्रॉडर कैनवास लेके आ रही है, और वो अपने, क्योंकि अभी देखा आपने गौरव भाटिया ने फिर वापस आ गए, बोले कि हिंदुओं को इस तरह दबने नहीं देंगे,
1: जी जी
2: वो कहा ना, तो अंत में आके यहाँ पे रुकता है, और तब हम रेशनल जो थिंकिंग होती है उसकी जगह हम अपने पहचान समूह के साथ रहते, वो हमें ज्यादा सुरक्षा देता है, ये हमारा मानना हो जाता है
1: जी।
2: तो हमें लगता है कि इसकी डीप एनालिसिस

0: की जरूरत है कि बीजेपी का एक्सपेंशन क्यों हो रहा है और कांग्रेस क्यों वो ग्राउंड्स देती जा रही है बीजेपी को। उसकी वजह यह है कि लीडरशिप में वो शिद्दत से लड़ने का जज्बा नहीं है जो कि बीजेपी के लीडरशिप के पास है
1: जी। एंड नाउ बीजेपी स्पोक्सपर्सन सुधांशु त्रिवेदी हैज जॉइंड अस। मिस्टर त्रिवेदी, वेलकम टू आकाशवाणी। हेलो जी, आकाशवाणी के जनादेश 2026 में आपका स्वागत है
2: जी।
1: सुधांशु जी, अभी जो नतीजे आ रहे हैं भाजपा के लिए तो बहुत ही ज्यादा आशावान, बहुत ही बढ़िया नतीजे आ रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
2: देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैं कहना चाहूंगा कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठकर अब ज्वार से सुनामी का रूप धारण कर रही है और ये एक ऐतिहासिक युगांतकारी निर्णय है। और आसाम में हमने शानदार सफलता हासिल की, हम 100 सीटों के आसपास आ रहे हैं जो अभूतपूर्व है। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी और पश्चिम बंगाल में हमारा नेतृत्व और केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अपार लोकप्रियता के चलते हुए संगठन की गतिशीलता, अमित शाह जी की रणनीति और सबसे मिलकर भारतीय जनता पार्टी आज वो काम कर रही है जो मात्र 15 साल पहले कल्पना से परे माना जाता था
1: जी।
2: बंगाल में हम 2011 में अप्रासंगिक दल से 2016 में 3 सीटें 10% वोट, 2021 में 77 सीटें 38% वोट। आसाम में हम 2011 में केवल 3-4 सीटें थी, आज लगातार तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि कड़ी मेहनत, अच्छी नीति और कुशल नेतृत्व के द्वारा क्या अचीव किया जा सकता है वो दिखाई पड़ रहा है
1: जी। और एक जो हमेशा एक भाजपा का जो एक नैरेटिव है कि डबल इंजन की सरकार, आप जो केंद्र में हमेशा हम चुनावों में देखते हैं कि जो भाजपा प्रधानमंत्री भी कहते हैं और आपके नेता भी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार का सीधे सीधे फायदा राज्यों को भी होगा।
2: बंगाल में पहली बार डबल इंजन की सरकार आई है तो निश्चित रूप से अगले 5 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन पश्चिम बंगाल में विकास की दिशा में दिखाई पड़ेगा
1: जी। सुधांशु जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। सो व्हाट आई वाज आस्किंग मिस्टर त्रिवेदी, मिस्टर टंडन, आई विल आस्क यू आल्सो, द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द बीजेपी लीडर्स व्हेन दे गो आउट कैंपेनिंग, दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट, दे हैव बीन एम्फसाइजिंग द फैक्ट एंड यू नो दैट व्हाई पीपल शुड वोट फॉर बीजेपी, बिकॉज इट गिव्स देम द एडवांटेज ऑफ अ डबल इंजन गवर्नमेंट। सो इट सीम्स टू बी, यू नो, आई एम नॉट श्योर, बट डू यू थिंक दैट दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स दैट वी सीइंग दिस काइंड ऑफ, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल एंड द यू नो दैट द वे द बीजेपी हैज द स्वीप द बीजेपी सीम्स टू बी मेकिंग इन द स्टेट?
3: आई थिंक द डबल इंजन गवर्नमेंट कम्स लेटर। Initially, if I am not wrong, before the West Bengal election, maybe about 6-7 months ago, the journalists were talking whether BJP has got enough candidates to be fielded.
1: Okay.
3: Fielding 292-93 candidates was a huge, big task before BJP. And I may be wrong, but the leader of BJP in West Bengal is really not a very stalwart. And in spite of that, the BJP strategy, the electioneering, the campaigning style, and the ground level work, I think that was one of the reasons why they got into a contest with Trinamool Congress.
1: Right.
3: And once they were in the fray, and I have always been saying, where is the left front? What is the Congress doing in West Bengal? So you made it a two-party contest. And then whenever there is anti-incumbency against the incumbent government, obviously somebody has to fill in.
1: Right.
3: And there is where the BJP came in and they have proved. And plus the machinery and the leadership quality, I must say, that all has put BJP into the saddle in West Bengal.
1: Right. And so now it's time for us. We will be going into a break for our bulletins a very little time. So before we do that, let's give you the latest trends and results coming in from the states and union territory. In Tamil Nadu, the actor Vijay led TVK is leading on 109 seats. AIADMK is leading on 57 seats. Its partner BJP is leading on 1 seat, whereas the DMK is leading on 49 seats. Vishal.
4: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 194 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, आगे चल रही है। तृणमूल कांग्रेस 94 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इसके अलावा सीपीएम 1 सीट पर आगे चल रही है।
1: बात करते हैं अगर असम की, सो इन असम द बीजेपी इज लीडिंग ऑन 70 सीट्स, इट हैज its alliance partner AGP is leading on 7 seats and another alliance partner BPF is leading on 8 seats, whereas the Indian National Congress is leading on 25 seats and AIUDF is leading on 2 seats. In Kerala, the CPM is leading on 23 and the Congress is leading on

0: जनादेश 2026
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
2: वेलकम बैक टू आकाशवाणी स्पेशल प्रोग्राम।

0: program on the assembly election results, the elections that were held in four states and one union territory. You are with us on Janadesh 2026. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Vishal Sharma, and we have a panel of two very distinguished guests in our studio. Once again, we have senior political analyst N.K. Singh and senior journalist Umesh Chaturvedi with us. Both of you, welcome to the program.
1: Thank you.
2: Ji, studio mein, मौजूद मेहमानों से अतिथियों से हम बात भी करेंगे, चुनाव नतीजों पर चर्चा भी करेंगे, और फिलहाल सबसे पहले डाल लेते हैं नज़र अभी तक के जो लेटेस्ट जो हमारे पास ताज़ा रुझान है और जो हमारे पास परिणाम इस समय हमें जो मिले हैं। असम की अगर हम नज़र डालें तो असम में भारतीय जनता पार्टी 59 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और 22 सीटों पर उसने जीत हासिल कर ली है। असम गण परिषद 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, 2 पर उसे विजय मिली है, और इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 21 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अभी तक उसे कोई सीट नहीं मिली है, कोई सीट नहीं जीती, लेकिन 21 सीटों पर आगे चल रही है।
0: If we talk about Kerala, then the INC or the Indian National Congress, which is part of the UDF, is leading on 44 seats. It has won 19 seats till now. Its partner IUML is leading on 20 seats, has won 2 seats, and Kerala Congress is leading on 5 seats, has won 2 seats, whereas the BJP is leading on 2 seats, and the CPM, which was part of the present government, the LDF government, CPM is leading on 20 seats. It has won 7 seats. CPI is leading on 4 seats. It has won 4 seats so far.
2: पुदुचेरी के नतीजों पर नज़र डालें तो AIADMK को 1 सीट मिली है और AINR कांग्रेस को 9 सीटें जीतने में कामयाबी मिली है, 1 सीट पर वो आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली हैं और 2 पर वो आगे है। DMK 3 सीटों पर आगे चल रही है, 1 सीट वो जीत चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, 1 सीट जीत चुकी है। ये हुई पुदुचेरी की जानकारी, और इसके बाद अब बढ़ते हैं तमिलनाडु की तरफ।
0: राइट जी, तमिल टॉकिंग ऑफ तमिलनाडु, नाउ वी हैव रिजल्ट्स एंड ट्रेंड्स फ्रॉम अबाउट 234 सीट्स। The DMK, which was in government till now, is leading on 52 seats. It has won only 1 seat so far. TVK of actor Vijay, that's Tamilaga Vettari Karagam, is leading on 106 seats. It has won 2 seats right now. The AIADMK, which is part of the NDA alliance along with BJP, is leading on 54 seats. It hasn't managed to win any seat till now. The BJP is leading on 1 seat and not won any seat till now.
2: पश्चिम बंगाल के रुझानों और नतीजों पर नज़र डालें तो अभी तक हमें वहां से कोई नतीजा तो अभी तक घोषित नहीं किया गया है पश्चिम बंगाल से, लेकिन रुझान हमारे पास लगातार आ रहे हैं। 293 सीटों के रुझान हमारे पास हैं, 293 सीटों में से 194 बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन के साथ बीजेपी ने वहाँ पर भाजपा ने जीत हासिल कर ले, आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है। 194 सीटों पर आगे है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस 94 सीटों पर आगे चल रही है।
0: एंड जॉइनिंग अस ऑनलाइन नाउ वी हैव पॉलिटिकल एनालिस्ट विनय सिंह बिहारी, हु इज जॉइनिंग अस फ्रॉम कोलकाता। मिस्टर विनय सिंह बिहारी, वेलकम टू आकाशवाणी जनादेश 2026।
3: Thank you very much.
0: Mr. Bihari, we were just telling our listeners the trends.
3: You can name me Vinay ji.
0: तो अभी हम अपने हाँ जी बिल्कुल हम अपने श्रोताओं को बता रहे थे कि जो वेस्ट बंगाल से जो ट्रेंड्स रुझान आए हैं उसमें साफ दिख रहा है कि इस बार अब भाजपा जो है वो अपनी सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। 193 सीटों पर उसको बढ़त मिल चुकी है, जबकि तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 95 सीटों पर अभी जो है उसको बढ़त मिली है। आप ये जो रुझान आ रहे हैं, आप इसमें सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं, सबसे बड़ा फैक्टर क्या मानते हैं कि जो पिछली बार की 77 सीट्स थी उसके कंपेरिजन में अब डबल से भी ज़्यादा जो है इस वक्त बीजेपी उन सीटों पर आगे बढ़ी हुई है?
3: एक तो एंटी इनकम्बेंसी लहर थी और सत्ता विरोधी लहर थी, ये तो साफ जाहिर हो रहा था। हम लोग बाजार जाते थे, ऑटो रिक्शा वालों से बात करते थे, सामान्य लोग बिल्कुल खिलाफ बोल रहे थे। आज से नहीं, 3 महीने पहले से जहाँ भी हम जाते थे,

0: चाय की दुकानों पर चर्चा हो रही है, और ये जो 26,000 अध्यापकों की नौकरी बिल्कुल एकदम से, वो 8 साल से 10 साल से नौकरी कर रहे थे और 26,000 अध्यापकों की नौकरी चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि कुछ गड़बड़ किया था इन लोगों ने, और जो आरोप था कि जो प्लेन कापी जमा करके आए हैं बिना कुछ लिखे, अपना नाम और रोल नंबर लिख के चले आए हैं बस, वो सिलेक्ट हो गए, और जो मेरिट लिस्ट में जो मेहनत करके गए थे वो नहीं चुने गए। तो 26,000 अध्यापकों की नौकरी का जाना ये बहुत बड़ा शॉक था नई पीढ़ी के लोगों, युवाओं के लिए, कि फिर हम लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। सेकेंडली, इससे भी महत्वपूर्ण एक और बात मैं बताना चाहूँगा, बांग्लादेश में जो खालिदा जिया के हटने के बाद जो हिंसा हुई, एंटी हिंदू, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा था, और इसी दौरान यहाँ मुर्शिदाबाद कांड हो गया, जिसमें वो वक्फ बोर्ड के आंदोलन के बहाने से वहाँ हिंदू, दो हिंदुओं को मार दिया गया गांव में घुस के, वो एक खास कम्युनिटी के लोगों ने घुस के दो हिंदुओं को मार दिया
1: जी।
0: और जो उस तरह का उबाल हुआ, और जो यहाँ के पश्चिम बंगाल के हिंदुओं में जो शॉक एक लगा
1: जी,
0: वो एक बहुत बड़ा शॉक हम लोग देख रहे हैं, आँख से देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई बात, हम बिल्कुल देख रहे हैं, ग्राउंड पे देख रहे हैं। तो वो शॉक, एक दो जो शॉक लगे, एक तो 26,000 नौकरियों का अचानक से जाना, क्योंकि भ्रष्टाचार सरकार ने किया है इसलिए 26,000 नौजवान युवाओं की नौकरी चली गई, और अब पता नहीं वो कहाँ जाएंगे, अनिश्चय भविष्य हो गया। और सेकेंडली, वो जो बांग्लादेश बगल में है, पश्चिम बंगाल के बगल में, जैसा कि आप जानती हैं, हम लोग ट्रेन से अगर चाहें तो 3 घंटे 4 घंटे में पहुंच जाएंगे बांग्लादेश, बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। तो इतने नज़दीक एक देश में एंटी हिंदू हत्याएं हो रही हैं, और यहाँ मुर्शिदाबाद जैसा कांड हो रहा है, तो यहाँ के हिंदुओं में एक एक पैनिक क्रिएट हो
2: जी। विनय जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार का और सोनार बांग्ला का जो नैरेटिव रखा, उसने मतदाताओं को किस हद तक छुआ?
0: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन दोनों फैक्टर्स ने छुआ। ये इन एडिशन क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति और उस तरह के कल्चर को लेकर जो बात छिड़ी, पश्चिम बंगाल का कल्चर ये तो नहीं था कि हत्याएं हो
2: जी,
0: एंटी हिंदू चीजें हो, सांप्रदायिक बातें हो, ये तो नहीं था जो सत्तारूढ़ दल ने किया। तो उसको लेकर, इन मुद्दों को लेकर के मोदी जी और अमित शाह जी ने इतना बढ़िया से लोगों को कन्वे किया कि देखिए, बंगाल की संस्कृति रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद से शुरू होकर के, और अनेक कलाकार बहुत प्रतिष्ठित कलाकार हुए, उनकी संस्कृति रही है, मार काट और गाली गलौज और हिंसा नहीं रही है, सांप्रदायिकता नहीं रही है। तो इसको लेकर के मोदी जी और अमित शाह जी ने इतना बढ़िया से यहाँ रह के काफी उन्होंने जनसभाएं की
1: जी,
0: और इतना बढ़िया उन लोगों ने कन्विंस किया है
1: जी,
0: कि अद्भुत है
1: जी,
0: और यहाँ शुभेंदु अधिकारी, अन्य भाजपा के लोग भी बहुत ही बढ़िया से उन लोगों ने कन्वे किया है। मुख्य बात यह है कि आम लोगों को उन लोग जो वो बोलते थे वो उनके हृदय में उतर जाता था, चाहे मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे यहाँ के लोकल भाजपा के नेता हों शुभेंदु अधिकारी, और यहाँ के जो भाजपा अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के, तो वो श्रमिक, तो इन लोगों की बातें इतनी प्रभावशाली ढंग से उन लोगों ने इस बार अद्भुत ढंग से ये हुआ है।
2: धन्यवाद विनय जी हमारे साथ हमसे बात करने के लिए। एन के सिंह जी, अब बंगाल की, पश्चिम बंगाल की जो तस्वीर है वो लगभग अब बिल्कुल साफ होती दिख रही है, क्या अब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जो डबल इंजन की सरकार, अब हम बंगाल में किस तरीके के बदलाव हम उम्मीद कर सकते हैं?
3: ये एक टेस्ट केस होगा जिसमें कि बीजेपी एक उस इलाके में जो कल्चरली बहुत स्ट्रांग रहा है, जिसकी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी और अपनी समझ रही है, स्वतंत्रता आंदोलन में अगर आप देखेंगे तो इसमें नेशनलिज्म का सूत्रपात ही यहीं से हुआ है, बंग भंग

0: का जो हुआ मूवमेंट, वहीं से नेशनलिज्म मूवमेंट आया है। तो आज बीजेपी जो उसको ओन अप करती है, दरअसल वो बंगाल का है। तो अब जब गवर्नेंस पे जब आप आ रहे हैं तो क्रॉस करेंट्स होंगे, और माइंड यू वहाँ पे 27-28% मुसलमान है, तो आप वहाँ पे कैसे लेके, यूपी में तो आपका कम है, 18-19% है, लेकिन वहाँ पे एक साइजेबल नंबर है। वहाँ पे डेवलपमेंट क्या इगैलिटी सबका साथ सबका विकास वाला हो पाएगा? और होगा तो जो दो वर्गों के बीच में इतनी इस चुनाव के बाद से दुराव हो गया है, उसको इफेक्टिवली आप कैसे कंट्रोल करेंगे, डिलीवर करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, और वो भी डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिसमें हैवी इंडस्ट्रीज आपकी ख़त्म हो गई हैं। ये बात सही है कि ममता बनर्जी ने एमएसएमई सेक्टर को मजबूत किया है। अगर आप जंगल महल एरिया में देखेंगे तो एमएसएमई सेक्टर इस समय तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, इन्हीं दो जगहों पे अच्छा रहा है। लेकिन नेशनल एवरेज अगर आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम का, तो वो भी नेशनल एवरेज से सवा गुना बंगाल का ज़्यादा है
1: जी।
0: तो उस चैलेंज को आपको लेना पड़ेगा कि डेवलपमेंट भी करें, डेवलपमेंट दिखाई भी दे, सोशल फीचर्स जो हैं, जो सामाजिक दुराव हो गया है, उसको आप कैसे मिटिगेट करेंगे, क्योंकि अब आप गवर्नेंस में हैं
1: जी।
0: तो मेरे ख्याल से ये चैलेंज बीजेपी के लिए बहुत बड़ा रहेगा
1: जी। एंड वी हैव रिएक्शंस कमिंग इन फ्रॉम अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। लेट्स फर्स्ट लिसन इन टू व्हाट बीजेपी एमपी रवि किशन सेड ऑन द रिजल्ट्स एंड ट्रेंड्स दैट हैव कम इन टुडे।
2: यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास पूरे बंगाली समाज को, गृह मंत्री अमित शाह जी की रणनीति और उनका वहां बैठना, सेना बल को लगाना, और बंगाली हिंदू, बंगाली सनातनी, बंगाली हर व्यक्ति अपने आप को आजाद कराना चाहता था उस भय की दुनिया से, उस माफिया और गुंडों से, उस बम के आतंक से, उन हत्याओं से। बंगाल एक सुनार बंगला हुआ करता था, एक लिटरेचर, एक अध्यात्म की जगह, माँ दुर्गा की शक्ति। आज दोबारा बंगाल अपने अस्तित्व को पा लिया, अपनी पहचान को दोबारा पा लिया, दोबारा बंगाल अपने कदमों पे, अपने अध्यात्म, अपनी शक्तियों के साथ आगे बढ़ेगा। समस्त भारत को इस बधाई देना चाहता हूँ, पूरे भारत की जीत हुई, भारत के विचारों की जीत हुई, कि भारत में एक अलग राज्य बना के ये लोग रह रहे थे, वो ऐसा राज्य जहाँ पर बांग्लादेशी घुसपोटियों का पूरा आतंक मचा हुआ था, उससे आज हम लोग मुक्त हुए, हमारा भारत मुक्त हुआ 2047 के सपनों में। अब बंगाल इकोनॉमी में आगे बढ़कर हम लोगों की रीढ़ की हड्डी बनेगा इस भारत की। मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को
3: जी। विधानसभा चुनावों में भाजपा की जबरदस्त जीत पर दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी कुछ कहा, ये सुनते हैं।
4: बंगाल की जीत एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। बंगाल में जिस विचार को श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जन्म दिया था, उस विचार का आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है, और इसलिए बंगाल की जीत हमारे लिए बहुत भावनात्मक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। असम में हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, पुदुचेरी में हमारी सरकार बनने जा रही है, एनडीए ने तमिलनाडु में भी अच्छा किया और केरल में भी हमने अच्छा किया है। इन पांच राज्यों के चुनावों का जो परिणाम है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत शानदार है, उसका हम अभिनंदन करते हैं।
1: And now let's listen into what senior Congress leader Imran Pratap Gadhi had to say about the results that are coming in.
5: नतीजों के बाद अगर और मगर का बहुत प्रश्न नहीं रह जाता है, ठीक है, पार्टी ने एक निर्णय लिया था, उस निर्णय के साथ गए थे, लेकिन अंततोगत्तो मैं ये कह सकता हूं कि तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन बुरी तरह से हारा है। बाकी जो भी ताकतें जीती हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए के खिलाफ खड़ी हैं, तो मुझे लगता है कि उस जीत को भी, उस जीत पर भी, विजय की जीत पर भी उनको बधाई देता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि वो जीत हमारी हार नहीं है।
1: Mr. N.K. Singh, we just heard Imran Pratap Gadhi, senior Congress leader, saying ki he was congratulating the BJP, but he's saying their win is not our loss. How do you interpret that?
6: No, उन्होंने BJP को नहीं congratulate किया, विजय को किया, विजय को.
1: My bad. Sorry. Yeah.
0: So, there is a logical fallacy. Yeah. When you study logic, there is a fallacy which is described as a selective appropriation of facts.
1: जी.
0: Here. इमरान गढ़ी इज सेइंग कि साहब वो हमारी हार नहीं।
1: मिस्टर सिंह, आई विल इंटरप्ट यू हियर बिकॉज बीजेपी लीडर राजीव प्रताप रूडी इज ऑनलाइन विद अस। मिस्टर रूडी, वेलकम टू आवर प्रोग्राम।
7: हाय
1: जी। मिस्टर रूडी, योर कमेंट्स ऑन द वे द बीजेपी हैज यू नो ऑलमोस्ट मेड अ क्लीन स्वीप ऑफ दीज इलेक्शंस।
7: सो व्हेन वी लेट्स स्टार्ट विद वेस्ट बंगाल।
1: यस।
7: Now, we never had a government in West Bengal. This is the first time since

0: independence, we have had a government there. Yeah. Now, we're going to have a government there. Now, this mandate was truly between the Prime Minister and Mamata Banerjee, because we did not have any leadership to project. Now, having said that, it's a fact that with this election, the presence of the Prime Minister has been reimposed and reiterated at the national level that he's just not there in Delhi and other states. He's there even in a place like West Bengal. That how did we reach them? We reached them through the schemes and the programs of the Prime Minister, which possibly was perceived there but not implemented.
1: Right.
0: Now, it's a loss to TMC, whatever may be the reasons, could be arrogance, could be incumbency, but end of the day, it's a victory of the BJP and the Prime Minister. That's part A. Assam, we had a government. Hmm. We have gone back to the government again. We shall be going back to the government again, so that's not an issue. And the performance of the government and the Prime Minister's leadership has been restored. Then we go to Tamil Nadu. Well, there is a surprise element. We may not be there, but the fact is that DMK is not there anymore. And with a surprise, which many people say was not a surprise, but that's a debatable factor.
1: Yeah.
0: So let us see how the government is formed there in Tamil Nadu. And coming back to Pondicherry is, of course, a very pleasant victory for the BJP again, because we have positioned Kerala, of course, we do not exist, but end of the day, the major states which have gone to the elections, which had stakes in the whole election, was primarily starting from West Bengal. So it's a great achievement for the workers, for the leaders, for the people who have toiled there, the workers and the leaders who had gone there. Phenomenal, I must say.
1: मिस्टर रूडी, अभी आपने जैसे कहा कि तमिलनाडु और केरल में ऑफकोर्स बीजेपी ने बहुत ज़्यादा तो नहीं सीटें मिल रही हैं, लेकिन फिर भी जो एक आगे इन राज्यों में जो अपनी बढ़त अपनी बनाने की जो कोशिश में बीजेपी आगे बढ़ रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे?
0: देखिए, आप फिर एक छोटे से सवाल पर चले आए कि जहां हमें जीत हुई है उसकी चर्चा आपने छोड़ दी, जहां हम अभी संघर्ष में है उसकी चर्चा कर दी। तो पहली बार मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी जीत है पश्चिम बंगाल, और ये मैंडेट है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में। दूसरी तरफ हमारे विरुद्ध में वहां अगर किसी को अगर सामने देखा गया था तो ममता बनर्जी को, वो अब नहीं रहे। तो अपने आप में प्रत्यक्ष रूप से कि भारत की पकड़ और देश के प्रधानमंत्री की पकड़ पश्चिम बंगाल में। उसके आगे हम लोग आते हैं असम में, जहां हमारी सरकार थी, फिर से एक बार प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार फिर से एक बार वहां बनेगी हेमंतो के नेतृत्व में। जहां तक तमिलनाडु का है, हम वहां पर मेजर प्लेयर नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डीएमके अपने आप को ये बात साबित करना चाहते थे कि हम फिर से सरकार में आ रहे हैं। वहां एक बड़ा सरप्राइज है जो हमारे जैसे लोगों के लिए और सबके लिए बड़ा सरप्राइज है, लेकिन ये सच्चाई है। तो वहां भी परिस्थिति सबके लिए बदल चुकी है, ना वहां डीएमके है ना वहां एआईडीएमके है, वहां एक तीसरी पार्टी उभर के आ चुकी है। रहा पांडिचेरी, तो वहां बहुत ही खूबसूरत परिणाम, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी संख्या में जीत हासिल की है, और मुझे लगता है कि हर परिस्थिति में वहां भी हमारी अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष रूप से पूरे भारतवर्ष में, और केरल में हमारी उपस्थिति कम थी, हम वही रह गए, और प्रत्यक्ष रूप से भारतवर्ष में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा पूरे भारतवर्ष में अपनी ताकत के साथ देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिख रहा है।
1: राजीव प्रताप रूडी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी उमेश चतुर्वेदी जी, रूडी जी ने जो कहा कि पूरा श्रेय जो उन्होंने पश्चिम बंगाल में खासतौर पर जो जीत है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है, और इस बार जो हमने देखा प्रचार के दौरान भी, अमूमन प्रधानमंत्री जो हैं हमेशा प्रचार के बाद दिल्ली लौट आते थे, लेकिन अब की बार कई बार वो कोलकाता में रहे, राजभवन में रुके, रात रात भर रुके और दो दो दिन तक रुके। और इसके अलावा जो है, जो मोदी जी ने जो कहा वहाँ पर कि हर सीट पर मैं उम्मीदवार, इसने कितना असर किया?
3: मोदी जी का जब से भारतीय राजनीति में उभार हुआ है और जितने भी चुनाव होते हैं लगभग हर जगह वो ऐसी ही बात कहते हैं। तो इस बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी का स्टेक जो है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा संभावनाएं भी थी पश्चिम बंगाल में, तो इसलिए उन्होंने पूरी जान लगा दी। पीछे की जो गलतियाँ थीं 2021 में भी आप याद कीजिए, लगता था भारतीय जनता पार्टी को कि वो सरकार बना लेगी, तो मुझे लगता है कि उन गलतियों से सबक सीखने की एक कोशिश थी, और जो कोई भी कसर बाकी रह जाए ऐसा उन्होंने किया। और एक चीज पश्चिम बंगाल की हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी जी ने भी उसी पर बहुत जोर दिया, देखिए, और हम लोग चुनौतियों की बात कर रहे थे। एक बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल में नई सरकार के लिए वहां का पारा क्लब जो कह सकते हैं, जो मोहल्ला क्लब है, वो बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि जो कट मनी का जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती थी, पश्चिम बंगाल में बहुत पुराने समय से पारा क्लब रहे हैं, जहां लोग लूडो खेलते हैं, ताश खेलते हैं, अखबार पढ़ते हैं।

तो इन कमेटियों को, क्योंकि सीपीएम के बरक्स जब वो चुनाव जीत करके आई थी ममता बनर्जी, तो सीपीएम की जो स्थानीय लोकल कमेटियां जो होती थी उन कमेटियों की तुलना में उन्होंने पारा क्लब को मजबूत किया था, 1,01,000 रुपये का वो दिया था, सहयोग दिया था। बाद में वो पारा क्लब इतने ताकतवर हो गए कि स्थानीय जो प्रशासन था उस पर भी वो हावी रहने लगे थे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए क्लब बड़ी चुनौती बनने वाले हैं, तो इसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। और एक चीज़ जो चर्चा में हम लोग बहुत भूल जा रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल में ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जीता है उसके तो कोशिशों को हम लोग याद करते ही हैं, उसको रिकोगनाइज करते हैं, जो वहाँ शिक्षकों को, अब हर राज्य में आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो सरकारी नौकरी वाला तबका है वो शिक्षक का है, खासतौर पर प्राथमिक शिक्षक। शिक्षकों को अभी भी छठवें वेतन मान का के हिसाब से ही सैलरी मिल रही है, वेतन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम आप सरकार में आते ही आपको सातवां वेतन मान देंगे। और एक चीज़ और है कि ये हर शिक्षक कहीं ना कहीं पूरे समाज को प्रभावित करता है, कहीं ना कहीं ये भी बड़ा रोल प्ले किया है। और ये भी भारतीय जनता

0: मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए क्लब बड़ी चुनौती बनने वाले हैं, तो इसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। और एक चीज़ जो चर्चा में हम लोग बहुत भूल जा रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल में ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जीता है उसके तो कोशिशों को हम लोग याद करते ही हैं, उसको रिकोगनाइज करते हैं, जो वहाँ शिक्षकों को, अब हर राज्य में आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो सरकारी नौकरी वाला तबका है वो शिक्षक का है, खासतौर पर प्राथमिक शिक्षक। शिक्षकों को अभी भी छठवें वेतन मान का के हिसाब से ही सैलरी मिल रही है, वेतन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम आप सरकार में आते ही आपको सातवां वेतन मान देंगे। और एक चीज़ और है कि ये हर शिक्षक कहीं ना कहीं पूरे समाज को प्रभावित करता है, कहीं ना कहीं ये भी बड़ा रोल प्ले किया है। और ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है कि कितनी जल्दी उनको ये देने जा रही है।
1: Mr. Singh, I want to come back to you and I want to stay on with West Bengal, that like we're saying, Trinamool Congress at the moment has been, you know, is leading on 94 seats. That's less than half the, not less than, but that's like little more than half the seats that it won the last time. But that doesn't mean that the party or the its leader, Mamata Banerjee, is finished. You know, they it still has a stronghold. What do you see next for the party and for its leader Mamata Banerjee?
2: No, that will be the task of the BJP now, whether to finish it for good, I mean completely.
1: But is it going to be that easy for BJP?
2: Well, it depends how it is conducting itself in the governance. And what Umesh has said is very valid. The entire power structure is such that in the authority, civil society is playing a vital role in corruption. Mm-hmm. Now you have to do two things. One, eliminate this corruption. These bodies should not be a den of corruption. Mm-hmm. And still, they should be harbinger of your policies. So how to convert these units into a non-corrupt unit, well-functioning, well-oiled units, and still, and that is a non-state organizations, yeah, non-state actors, and still further your policies through that. So that is an uphill task, and the day you stop giving them cut in the deals, that is when Mamata Banerjee's role will come in.
1: Okay.
2: So BJP has to be very cautious in approaching the process of governance.
1: Right.
3: जी एन के सिंह जी, पूरे अगर राष्ट्रीय फलक पर हम बात करें तो जो दो गठबंधन हैं मुख्य तौर पर NDA और इंडिया ब्लॉक, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार और अब पश्चिम बंगाल और असम, ये जो जीत है भारतीय जनता पार्टी के NDA की, तो जो ये इंडिया ब्लॉक है, अभी तक आपको क्या लगता है कि ये एक विभिन्न मुद्दों पर एक एक एक दिखाता तो है कि हाँ विरोध प्रदर्शन जैसी सहमति तो दिखती है इंडिया गठबंधन में, लेकिन जो एक राजनीतिक मतभेद इनके बीच में बने हुए हैं अभी भी, जो इसके गठबंधन के जो सहयोगी हैं, और संख्या बल के आधार पर ये गठबंधन जरूर बना ले रहे हैं, लेकिन जो एक पॉलिटिकल एक राजनीतिक सामंजस्य की जरूरत होती है वो कहीं ना कहीं ये इंडिया ब्लॉक में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और केवल बस पार्लियामेंट में कुछ प्रदर्शन के दौरान तो कुछ सहमति बनती दिखती है, लेकिन जब वोट शेयरिंग या सीट शेयरिंग की बात आती है, समझौते की बात आती है चुनाव में जाने से पहले, वो कहीं नहीं दिखाई पड़ता। क्या आपको लगता है कि ये लेक कर रहा है इंडिया ब्लॉक?
2: सेफोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स, IUO, अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स, ये बिल्कुल जीरो पे है। इंडिया ब्लॉक दरअसल एग्जिस्ट नहीं करता
1: जी।
2: और जब भी ऐसे चैलेंजिंग ओकेजंस आते हैं, जैसे दिल्ली का इलेक्शन है तो आप और कांग्रेस, ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन है तो कांग्रेस और TMC, तो वहां पे ये एक्सपोज हो जाता है कि नहीं, हम अपने अपने सर्वाइवल के लिए लड़ेंगे। चलिए ये भी ठीक है, नेशनल लेवल पे तो सहचित्ता हो, देयर मस्ट बी सम कॉमन प्रिंसिपल्स ऑन विच यू थ्राइव, लेकिन वहां पे भी आप पाएंगे कि कम से कम यहां पे ममता बनर्जी को अगर आप नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो तमिलनाडु में सारे मिलके कांग्रेस को सपोर्ट करें, पर ये तो कभी नहीं हुआ। तो ये मुझे लगता है कि अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स बिल्कुल जीरो पे है और इंडिया गठबंधन एग्जिस्ट नहीं करता। वो कुछ ऐसे ही किताबों में है, कभी कभी पार्लियामेंट में दिखाई पड़ जाता है ओकेजन स्पेसिफिक। इसलिए मुझे लगता है कि इन लोगों को अपने सर्वाइवल के लिए अब यूनिटी करनी पड़ेगी, और वो ऐसी हो कि जब जब जनता सत्ता से नाराज हो तो

0: से कम उसको दिखाई दे कि हाँ एक यूनिटी है, हम उधर उधर जा सकते हैं। अगर ये विकल्प नहीं रहेगा तो वो मजबूर होके सत्ता के साथ खड़ी होगी, सत्ता को वोट देगी। तो ये मजबूरी ना है, इसके लिए एक स्ट्रांग अपोजिशन यूनिटी की जरूरत है। लेकिन क्या कांग्रेस जो रैलिंग पॉइंट है, आज गिरे दिन में भी कांग्रेस को 13 करोड़ वोट मिलते हैं, आज गिरे दिन में भी सबसे बड़ी पार्टी है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या वाकई अगर बीजेपी को 23 करोड़ वोट मिल रहे हैं तो 13 करोड़ कांग्रेस को भी मिलते हैं, हम कांग्रेस को, लेकिन क्या ये बरकरार रहेंगे
1: जी?
0: इसके लिए अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स आपको, और इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस और राहुल गांधी पे है जो कि पार्टी को लीड कर रहे हैं। तो क्या उन ओकेजंस पे वो वाकई खड़े होकर सहचित्ता बना पाते हैं? मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस बुरी तरह मिस कर जाती है।
1: लेट्स मूव ऑन टू तमिलनाडु। लाइक वी आर सेइंग दैट इट सीम्स ऑलमोस्ट सर्टन नाउ दैट टीवीके ऑफ एक्टर यू नो विजय इज ऑन इट्स वे टू मेक द नेक्स्ट गवर्नमेंट, बट फ्रॉम व्हाट वी कैन सी द रिजल्ट्स एंड ट्रेंड्स शो दैट द पार्टी इज all in all, you know, 107 seats. It has won 5 seats. It is leading on 102. So it's still about 11, it's still 11 seats short of the majority.
0: Yeah.
1: Now, before the results, Vijay had very clearly said that it will not align with any party. But what now do you see if it falls short of the majority? Where do you see it moving? DMK, AIADMK, or even BJP, if it can?
0: A very, very valid question at this juncture. This was the question that was to be delved deep into. See, one thing is there, willy-nilly.
1: Yeah.
0: All these months that I had been tracking this leader, I found that there is a very palpable lurch towards BJP.
1: Okay.
0: He may not say there, and he had said openly that BJP is number one enemy, number two enemy perhaps.
1: Yeah.
0: DMK is also enemy. But now I think that somewhere they will align with BJP and its group.
1: Right.
0: So I think 11 members, not difficult.
1: Yeah.
0: And they will amass that much of a strength and will form the government.
2: मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूँगा कि चुनावों के पहले, मतलब जब चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, तो अमित शाह ने भरपूर कोशिश की कि AIDMK के साथ TVK का और NDA का जो वो है पूरा अलायंस बन जाए, लेकिन जो पलानी सामी जी हैं वो एकदम से तैयार नहीं हुए, और वो तो विजयन को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद देने तक को तैयार नहीं था।
0: उमेश, यही टैक्टिकल होशियारी विजयन ने की कि वो साथ में वो भी नहीं गए तो आज इतनी सीटें मिली है, वरना AIDMK आज चीफ मिनिस्टर बना रहा होता और विजयन सेकंड नंबर पे होते
2: जी।
0: तो ये अच्छा हुआ कि विजयन ने अपना किया और उससे उनको गेन हुआ।
2: अनुभाजी के सवाल का जवाब यही है कि ज्यादा संभावना यही है कि बीजेपी मीडिएटर बने और AIDMK के साथ सरकार बने।
1: और एट द एंड ऑफ द डे यू नो पॉलिटिक्स इज नथिंग बट
0: चीफ मिनिस्टर, आई एम सॉरी, और चीफ मिनिस्टर हो विजयन और AIDMK डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए, ये पॉसिबल
1: जी। जैसे मैं कह रही थी कि राजनीति कॉम्प्रोमाइज का ही दूसरा नाम है, और ये तो जो जो जो संतुलन होता है कौन बनेगा, कि सब तो चलता ही रहता है। सो वी आर रीचिंग द एंड ऑफ आवर प्रोग्राम, एंड बिफोर वी वाइंड अप दिस सेगमेंट ऑफ आवर प्रोग्राम, लेट्स क्विकली गिव यू अनदर अपडेट ऑन द ट्रेंड्स एंड रिजल्ट्स कमिंग इन। विशाल
3: जी, असम की 126 में से सभी सीटों के रुझान हमारे सामने हैं, और भारतीय जनता पार्टी 53 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और 28 सीटें जीत चुकी है।
1: इन केरल द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज लीडिंग ऑन 38 सीट्स। इन पुदुचेरी AINRC इज लीडिंग ऑन has leading on two and has won nine seats.
3: और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है, 194 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं।
1: And that's all we have time for in this segment. Do join us at 7:10 PM when we will continue this discussion. Thank you. Namaste.
4: जनादेश 2026।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। रुझानों के अनुसार सबसे बड़े राज्य पश्चिम बंगाल में पिछले 15 साल से सत्तासीन सुश्री ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार का जाना तय नजर आ रहा है। विधानसभा की 293 सीटों में से 292 के रुझान मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक बढ़त बना ली है और वो 193 सीटों पर आगे चल रही है। तृणमूल कांग्रेस 95 सीटों पर आगे है। मुख्यमंत्री

मंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर आगे हैं, जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में आगे हैं। रुझानों के अनुसार विभिन्न दलों की स्थिति इस प्रकार है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 94, जेयूपी 2, एआईएसएफ 1, कांग्रेस 1 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर आगे है। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है, जहां 21 मई को मतदान होगा। असम में विधानसभा की 126 सीटों में से 4 के परिणाम मिले हैं। भाजपा ने 3 सीटें जीती हैं और 78 पर आगे चल रही है। कांग्रेस 21 सीटों पर आगे है और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 1 सीट पर विजय हासिल की है, जबकि 9 पर आगे है। असम गण परिषद 8, AIUDF 2, RJRD 2, तृणमूल कांग्रेस 1 और निर्दलीय 1 सीट पर आगे है। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 में से 15 सीटों के परिणाम मिल गए हैं। AINRC ने 9 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है और 1 पर आगे है। कांग्रेस ने LJK 1 सीट पर आगे है। AIADMK ने 1 सीट जीती है। NVMK 1 सीट पर आगे है। DMK ने 1 सीट जीती और TVK 1 सीट पर आगे है। निर्दलीय को 1 सीट मिली है और वो 2 पर आगे है। केरलम में विधानसभा की सभी 140 सीटों में से 23 के परिणाम मिल गए हैं। कांग्रेस ने 11 सीटें जीती हैं और 52 पर आगे है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 6 सीटें जीती हैं और 21 पर आगे है। IUML ने अब तक 2 सीटें जीती हैं और 2 पर आगे चल रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है और 6 पर आगे है। केरल कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं और वो 5 पर आगे है। RSP ने 3, भाजपा 2, RJD 1, RMPOI 1, केरल कांग्रेस जैकब 1, CMPKSC 1 तथा निर्दलीय 4 सीटों पर आगे हैं। तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 233 सीटों के रुझान मिल गए हैं। TVK 106, DMK ने 1 सीट जीती है और 54 पर आगे है। AIADMK 54, IUML 2, PMK 5, कांग्रेस 4, CPI 2, भाजपा 2, DMK 1, VCK 1 और CPIM 1 और अन्य 1 सीट पर आगे है। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में से 4 के परिणाम मिल गए हैं। गुजरात की उमरेठ सीट भाजपा उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार ने जीती। कर्नाटक की बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुल्लाप्पा मेती और दावणगेरे दक्षिण से कांग्रेस उम्मीदवार समर्थ शमनूर मल्लिकार्जुन आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र की बारामती सीट से पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनेत्रा अजित पवार बढ़त बनाए हुए हैं। राहुरी सीट से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजीराव करदिले आगे हैं। नागालैंड की कोरिडांग सीट भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई इमचेन ने जीती। त्रिपुरा की धर्मनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार जहाज चक्रवर्ती विजयी रहे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से देश भर में आज से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने आज नई दिल्ली में अग्नि सुरक्षा सप्ताह का उद्घाटन किया और स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि सुरक्षा की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि इस वर्ष के अग्नि सुरक्षा सप्ताह का विषय सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित अस्पताल और अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज, अग्नि रोकथाम है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 159 अंक की बढ़ोतरी के साथ 77,073 पर, जबकि निफ्टी 58 अंक की वृद्धि के साथ 24,056 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
1: और मैं हूँ अजीत, नमस्कार। जी हाँ श्रोताओ, आप सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम।
2: जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, हमेशा हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारी शिक्षाप्रद और मनोरंजक जानकारियाँ।
1: तो आइए सुनते हैं सबसे पहले हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज गुजरात से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: समय पर न समझ आने वाली बातें आगे चलकर जिंदगी का एक सबसे बड़ा सबक बन जाती हैं, क्योंकि इनसे हम या तो सीखते हैं या फिर जीवन भर पछताते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, सच है बिल्कुल। किसी बात को समय रहते यदि हम समझ लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत देर हो जाती है और तब अक्सर कुछ भी नहीं किया जा सकता।
2: जी
1: तो आइए

0: समय को हल्के में ना लें, इससे सबक लें। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
0: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
1: भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता और परिवारजन लिखते हैं।
0: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम के 30 मार्च से लेकर 3 अप्रैल वाले सप्ताह में आपने भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद और इससे जुड़े सर्वाधिक मशहूर चिकित्सकों और उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथों पर व्यापक जानकारी दी और उनके जीवन से जुड़े दिलचस्प वाक्यात को नाट्य प्रस्तुतिकरण के मार्फत हमें सुनाया। सुनकर हम धन्य हो गए। हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हम उमंग कार्यक्रम के श्रोता हैं।
1: छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा, कुमारी डब्ल्यू थापा।
0: और केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास, पद्म लोचन मोहंती, शुभम नायक, अभिराम साहू, अविनाश दास और गीतांजलि दास।
1: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया और श्रीमती कल्पना चंसोलिया लिखते हैं।
0: आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, आपने अंतरिक्ष से संबंधित आज बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। उमंग कार्यक्रम सुनकर हम देश विदेश की जानकारियां प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षियों के बारे में भी बहुत बढ़िया जानकारी हासिल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम को।
1: आप सभी श्रोताओं को भी हमारा धन्यवाद अच्छी और प्रोत्साहन देने वाली प्रतिक्रियाओं के लिए। और अब बारी है प्रश्नों के उत्तरों की। जिन्होंने भाग लिया उनका धन्यवाद और जिन्होंने नहीं लिया उन्हें हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि अवश्य भाग लें। तो हमारा पहला प्रश्न था,
0: भारतीय सेना में सबसे ऊंचा पद क्या है और ये पद सबसे पहले किसे दिया गया?
1: जी, इसका उत्तर है पहले भारतीय सेना में सबसे ऊंचा मानद पद था फील्ड मार्शल। ये सबसे पहले जनरल सैम मानेकशॉ को दिया गया था। उनका पूरा नाम था सैम होर्मुजी प्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ। इन दिनों भारत की सशस्त्र सेनाओं के प्रधान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है। ये पद सबसे पहले जनरल बिपिन रावत को दिया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, भारत के प्रसिद्ध गुरुकुलों में वशिष्ठ गुरुकुल, द्रोणाचार्य गुरुकुल, वाल्मीकि गुरुकुल और कर्ण गुरुकुल माने जाते हैं, इनमें से किन्हीं दो की विशेषता बताइए।
1: जी, हम आज वशिष्ठ और द्रोणाचार्य गुरुकुल की विशेषता आपको बता देते हैं। वशिष्ठ गुरुकुल की सबसे बड़ी विशेषता थी समान भाव। यहाँ राजा और सामान्य परिवार के बच्चे भी एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे, कोई भेदभाव नहीं था। कुछ मायनों में यहाँ समावेशी शिक्षा थी। द्रोणाचार्य गुरुकुल की मुख्य विशेषता थी युद्ध कला की विशेष शिक्षा। धनुर्विद्या में पारंगत अर्जुन ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न था, श्रोताओ जनसंख्या के आधार पर भारत की प्रमुख चार जनजातियों के नाम बताइए।
1: इसका उत्तर है जनसंख्या के आधार पर भारत की चार प्रमुख जनजातियाँ हैं, गोंड, भील, संथाल और उरांव। इन्हें उरांव भी कहते हैं।
0: और हमारा अगला प्रश्न था, किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की महानता का विस्तृत वर्णन किया है?
1: इसका उत्तर है, नालंदा विश्वविद्यालय की महानता का वर्णन चीनी यात्री हुइन संग ने अपने संस्मरणों में किया। इनका संस्मरण चीनी भाषा में लिखा गया था। इसका अनुवाद है द ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन वेस्टर्न रीजन्स।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के 3 प्रसिद्ध गुरुओं और 1 प्रसिद्ध विद्यार्थी का नाम बताइए।
1: प्रसिद्ध गुरुओं या आचार्यों के नाम है कौटिल्य यानी चाणक्य, पाणिनि और वैद्यराज चरक। और सबसे प्रसिद्ध विद्यार्थी का नाम है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य।
0: तो श्रोताओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से किसी एक प्रसिद्ध गुरुकुल का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से किसी एक प्रसिद्ध गुरुकुल का नाम बताइए।
0: 8800044559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर आप अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर करें। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है
1: सींग विदाउट सींग।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा समावेशी शिक्षा के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का खास ख्याल रखें।
2: लिटिल लॉन्ग शांगला रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। She opened the door quietly. She kept her bag on the table quietly.

CIET.in. This program was brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। आशा है श्रोताओं कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम बंदर और बया।
0: ये एक रोचक लोक कथा पर आधारित कार्यक्रम है जिसमें बंदर और एक सुंदर बया पक्षी की मित्रता के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम का संदेश है मित्रता और आपसी सहयोग की भावना।

दोस्तों नमस्ते। दोस्तों किसी जंगल में एक बंदर रहता था। वो बंदर बड़ा शैतान था। हाँ, न काम न धाम, सारे दिन कूदता फिरता इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से इस पेड़ पर।

उसी जंगल में एक बया भी रहती थी। जानते हो दोस्तों, बया बड़ी समझदार होती है। समझदार ही नहीं, बहुत मेहनती भी होती है। उसने सोचा कि बरसात आने वाली है, चौमासे में पानी खूब बरसता है, इसलिए उसने बरसात से बचने के लिए उपाय सोचा।

0: जानते हो दोस्तों क्या? बताएगा तुम में से कोई? बताओ बताओ। पक्षी अपने रहने के लिए पेड़ पर क्या बनाते हैं? हाँ सोचो सोचो।
1: घोंसला।
0: हाँ, बारिश से बचने के लिए पक्षी घोंसला बना लेते हैं। तो दोस्तों बया ने भी यही किया, दिन रात मेहनत की, तिनका तिनका जोड़कर उसने घोंसला बनाकर पेड़ पर लटका लिया। एक बात तो हम भूल ही गए, बया का घोंसला बड़ा अजीब होता है। बया अपने घोंसले में एक खाना तो बनाती है बड़ा, और बाकी खाने वो बनाती है छोटे छोटे अपने बच्चों के लिए। दोस्तों एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। बंदर भाई भीगते हुए उसी पेड़ पर आ बैठे जहां बया का घोंसला था। पानी बहुत जोर से बरस रहा था। बया को बंदर पर दया आई और बोली,
1: क्यों बंदर जी तुम इतने परेशान क्यों हो?
2: अरे बया देखती नहीं चारों ओर पानी ही पानी है, मैं भीग रहा हूँ, उस पर ये ठंडी हवा चल रही है, मुझे जाड़ा लग रहा है।
1: बंदर जी ये कैसी बात, ऊपर पड़ती है बरसात, सर्दी तुम्हें सताती है फिर भी समझ न आती है, वर्षा से बिल्कुल बच जाते साधन कोई अगर जुटाते, दिन भर उछला करते हो मेहनत से तुम डरते हो।
2: ज्यादा बात बनाओ मत, सेठी मुझे दिखाओ मत, छोटा मुंह और बात बड़ी, जीभ चलाती खड़ी खड़ी, गुस्सा मुझे दिलाएगी तो पीछे तू पछताएगी, तू चिड़िया मैं बंदर हूँ, तुझसे ज्यादा सुंदर हूँ।
1: मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी बंदर जी, इतने भीग रहे हो कुछ नहीं तो वो सामने माली के छप्पर पर डलिया पड़ी है, उसे उठाकर सिर पर रख लो, कुछ तो बचोगे ही।
2: अरे तो इतनी देर से क्यों नहीं बताया तूने?
1: मैं क्या बताती, मैं तो तुम्हारे सामने बहुत छोटी सी, ये तो तुम्हें खुद ही सोच लेना चाहिए था, कल जब बरसात बंद हो जाए तो कहीं से कुछ घास पास लाकर किसी डाल पर छोटा सा छप्पर डाल लेना, ताकि पानी बरसे तो चैन से उसके नीचे बैठ सको।
2: अरे कल की कल देखी जाएगी, अब तू सीख बंद कर। मैं डलिया लाकर पहले आज का काम चलाता हूँ।

दोस्तों, वो रात बंदर ने सिर पर डलिया रखकर काट दी। सुबह हुई, बारिश बंद हो चुकी थी। बंदर फिर उछल कूद में मस्त हो गया। दो चार दिन बाद फिर पानी बरसा। पेड़ पर बैठा बंदर भीगने लगा। हाँ, बया अपने घोंसले में आराम से बैठी थी। बंदर को भी

0: कुत्ता देखकर वो पूछ बैठी,
1: तुम्हारी उस दिन वाली डलिया कहाँ गई? उसे सिर पर ढक लो।
2: डलिया क्या रखी रहेगी, उछल कूद में वो तो अगले दिन ही टूट गई।
1: अरे ऐसी उछल कूद क्यों की? कि डलिया ही तोड़ डाली।
2: चुप रह, टूट गई तो टूट गई।
1: जिससे नुकसान होता हो ऐसी आदत बुरी होती है हाँ। और बुराई तो छोड़ने की ही चीज होती है। दिन भर हाथ चलाते हो, समझदार कहलाते हो, कोई आदत अगर बुरी है क्यों न छोड़ तुम पाते हो?
2: डलिया टूटी है माली की, आदत मेरी साथी है, अक्लमंद बन कर क्यों मुझसे ज्यादा

கூட்டு கை

अरे बच्चों ये क्या, बया चिड़िया तो रोने लगी। क्या तुम सोच सकते हो कि बया चिड़िया क्यों रोई? सोचो सोचो। आखिर बंदर ने गुस्से में आकर क्या किया? सोचो। शाबाश, कुछ बच्चे तो बता रहे हैं। अरे भाई जरा जोर से बताओ। हाँ, बंदर ने गुस्से में आकर बया का घोंसला ही तोड़ दिया, तभी तो बया रोने लगी। दोस्तों, बंदर ने अपने रहने के लिए घर नहीं बनाया तो गुस्से से बया का घोंसला ही तोड़ दिया। दोस्तों, बंदर ही नहीं और भी बहुत से जानवर हैं जो अपना घर नहीं बनाते। क्या तुम ऐसे जानवरों के नाम बता सकते हो? सोचो सोचो। हाँ शाबाश, बताओ। हम तुम्हें ये बता देते हैं कि ये जानवर अपने लिए घर बनाते तो नहीं, पर दूसरे जानवरों के बनाए घरों में रहने लगते हैं। हाँ भाई, जरा सोच कर बताओ। हाँ बताओ बताओ। अच्छा दोस्तों, हम कुछ अता पता बता देते हैं। बता दें। अच्छा ये बताओ, चूहा कहाँ रहता है? बताओ बताओ। हाँ, बिल में। अच्छा, और कौन सा जानवर है जो अपना बिल नहीं बनाता और दूसरे जानवरों के बिल में रहता है? सोचो सोचो। याद आ गया? हाँ, सांप। दोस्तों, वो अपना घर खुद नहीं बनाता। दोस्तों, ऐसे ही बहुत से जानवर हैं जो घर बनाकर रहते हैं और कई जानवर अपना घर नहीं बनाते, जैसे वो बंदर था।

0: तो श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
1: तो अब अपने मित्र अजीत
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் வழங்கிய விளம்பரதார நிகழ்ச்சி.

திரை

Dasa gasa gama gasa pama gasa da pama gasa gama

0: जनादेश 2026
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
2: नमस्कार, जनादेश 2026 में आप सभी का स्वागत है। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव पिछले महीने हुए और आज सुबह से उनके मतों की गिनती जारी है और हम पल पल अपडेट आप तक ला रहे हैं। क्या रुझान है, क्या परिणाम है, इन पर अपडेट देते हुए हम विशेषज्ञों से चर्चा भी कर रहे हैं। मेरा नाम है सोनू सूद और मेरे साथ मेरे इंग्लिश के को एंकर हैं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव। वैभव, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में।
3: सोनू, वेलकम टू दिस स्पेशल एडिशन ऑफ द इलेक्शन प्रोग्राम दैट वी आर ब्रिंगिंग यू लाइव फ्रॉम आकाशवाणी एंड वी वेलकम इन दिस प्रोग्राम अ वेरी स्पेशल गेस्ट सर्जना शर्मा मैम। वेलकम टू दिस शो।
4: थैंक यू सो मच।
2: सो सर्जना जी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है और आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन इस कार्यक्रम में।
4: आभार सोनू जी।
2: जी, और इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास है वो दे देते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा बड़ी जीत की ओर अग्रसर है, जबकि असम और पुदुचेरी में ये सहयोगी दलों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी TVK ने बहुत बड़ा फेरबदल किया है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व में UDF स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर 293 विधानसभा सीटों के रुझान और परिणाम मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को 204 सीटों पर बढ़त मिली है, इनमें से ये 70 सीटें जीत चुकी है। तृणमूल कांग्रेस 83 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 27 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। वाम दल 2 सीटों पर आगे है, अन्य को 3 सीटें मिली हैं और 1 पर आगे है। असम की बात करें तो असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 101 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, इनमें से वे 90 सीटें पर जीत हासिल कर चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वह 11 सीटें जीत चुकी है।

0: ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को दो सीटें मिली हैं।
1: टॉकिंग अबाउट केरलम, द कांग्रेस लेड द चार्ज विद 63 सीट्स व्हाइल द आईयूएमएल एडेड 21 गिविंग द अलायंस अ डोमिनेंट एज अक्रॉस द स्टेट। अदर यूडीएफ पार्टनर्स इंक्लूडिंग केरला कांग्रेस फैक्शंस एंड स्मॉलर एलाइज also chipped in, underlining a broad-based mandate for the coalition. Latest results indicate Chief Minister and CPIM leader Pinarayi Vijayan has defeated VP Abdul Rashid of Congress in Dharmadam constituency by more than 19,000 votes.
0: सर्जना जी, क्या कहेंगी आप, ये जो विधानसभा चुनाव आए हैं, जो अभी तक रुझान सामने आ रहे हैं, इन पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, खासकर पश्चिम बंगाल में जो हमने देखा है जिस तरह का एक स्वीपिंग विक्ट्री लगता है कि बीजेपी को मिलने वाली है, उस तरफ अग्रसर है, 200 से अधिक सीटें, किस तरह से देखती हैं आप?
2: देखिए, पश्चिम बंगाल की जो राजनीति, अगर आप इतिहास देखें, 40 साल तक कांग्रेस ने राज किया, 30 ईयर तक कांग्रेस रही, फिर 34 सीपीएम रही और फिर 15 साल टीएमसी रही, और एक बार जो सत्ता से गया वो लौट के नहीं आया, और जबकि टीएमसी ने तो बाकी अपनी दोनों पार्टियों की तुलना में बहुत कम समय, 15 ईयर, आधा ही उन्होंने किया था
0: जी।
2: पर ये बहुत बड़ी विक्ट्री है बीजेपी के लिए, और इतनी बड़ी है कि इसको वोटों से ज़्यादा आइडियोलॉजी की हम एक जीत कहेंगे, एक आइडियोलॉजी की जीत है, और विरासत के साथ विकास, जो बीजेपी का एक नारा है विरासत के साथ विकास, उसको भी इन्होंने, इंडस्ट्रियलाइजेशन का सब की बात कही और रक्षा, महिला सुरक्षा की बात कही, इसके अलावा कहा कि हम आपको जो घुसपैठी है, जो सीमा सुरक्षा की जो बात कही, ये बहुत सारे मुद्दे थे जो कि बीजेपी के पक्ष में गए। और दूसरा, जो बीजेपी की चुनावी रणनीति, जो स्ट्रैटेजी थी, ज़मीन पर एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक एक जिसको बोलते हैं कि पन्ना प्रमुख तक से बात करने की जो रणनीति है बीजेपी की, और संस्कृति से जुड़ा, जो अभी आज देखिए, आज मोदी जी जब बीजेपी मुख्यालय में गए हैं तो पूरी तरह से भद्र लोक, जो बंगाल के भद्र लोक होते हैं, उस तरह की वेशभूषा पहन के, बंगाली स्टाइल की, बिल्कुल झक वाइट धोती, उसके ऊपर बंगाली स्टाइल का कुर्ता और उसके ऊपर अंगवस्त्रम पहन कर गए हैं।
0: तो विरासत और विकास दोनों का जो एक समागम है उसका एक ये प्रतीक है।
1: सर्जना जी, how would you see this election victory for the BJP, which has fought different opposition parties for decades now in Bengal, starting from their ideologue, their mentor Shyama Prasad Mukherjee ji? Now they have been able to form, or they are being seen as someone who will form a government in Bengal. How do you see these results, and not just for the national issues that were raised up, just mentioned by you, by the BJP, but also the issues, the smaller issues that were picked up by TMC, saying that this is a fight between outsiders and insiders? How do you see that result?
2: See, I see this result. You have mentioned about Shyama Prasad Mukherjee.
1: Yes, ma'am.
2: I think ancestors, we have ancestors and we owe many things to them.
1: Absolutely.
2: I think Modi ji, whatever BJP owed to Shyama Prasad Mukherjee, today they have paid the Pitra Run to Shyama Prasad Mukherjee.
1: Absolutely.
2: They paid
0: that debt back. Yes. So in 1952, Shama... Ab hum chalte hai BJP headquarters Delhi, jahan se...
3: भारत माता की। जो लोग मुझे देख नहीं पाते हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप जहां है वहीं से सुन लीजिए, किसी को आगे पीछे करने के चक्कर में मत पड़िए। भारत माता की, भारत माता की। आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। जब वर्षों की साधना सिद्धि में बदलती है तो चेहरे पर जो खुशी होती है, वो खुशी आज मैं देश भर के भाजपा के कार्यकर्ता के चेहरे

पर देख रहा हूं। तस्वीर नीचे रखिए, पीछे लोगों को परेशानी हो रही, नीचे रखिए, नीचे रखिए। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भाजपा के हर कार्यकर्ता की खुशी में शामिल हूं। साथियों, आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। साथियों, मैं बंगाल की जनता का, असम की जनता का, पुडुचेरी की जनता का, तमिलनाडु और केरलम की जनता का आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं उन सबको वंदन करता हूं। मैं आज बीजेपी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी द्वारा अध्यक्ष पद संभालने के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव थे। इन चुनावों में पार्टी कार्यकर्ताओं का, हर कार्यकर्ता को उनका जो मार्गदर्शन मिला, वो मार्गदर्शन इस विजय में बहुमूल्य रहा है। साथियों, आज विभिन्न उपचुनावों के परिणाम भी अत्यंत उत्साहजनक रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड और त्रिपुरा में जो उपचुनाव हुए, उसमें हमारे उम्मीदवारों को जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया और इन राज्यों में भी जीत गए। एनडीए की नेता, महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार जी ने भी बड़ी जीत दर्ज की है। मैं इन सभी राज्यों की जनता का उनके समर्थन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जय पराजय, लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन पांच प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व

को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है, ये हमारी रगों की संस्कार सरिता है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है। हमारी संवैधानिक संस्थाएं जीती हैं, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जीती हैं। पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने हैं। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है। साथियों, मैं आज चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग के सभी कर्मचारी भाई बहनों को, जो भी मतदान से जुड़े प्रक्रिया के सारे कर्मी थे, साथ साथ विशेष तौर पर सुरक्षा बलों का भी मैं आज बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत के लोकतंत्र की गरिमाओं को बनाए रखने में आप सबका योगदान इतिहास हमेशा हमेशा याद रखेगा। साथियों, पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने यही इसी जगह से, बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। साथियों, 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भी काम दिया और जब मैं काशी में अपना नामांकन भरने गया था और पत्रकारों ने मुझे घेर लिया, तो स्वाभाविक रूप से मेरे हृदय से एक ध्वनि निकली थी और मैंने कहा था कि न मैं आया हूं न मुझे किसी ने भेजा है, मां गंगा ने मुझे बुलाया है।

कि मां गंगा के आशीर्वाद निरंतर हम सब पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। साथियों, गंगा जी के साथ साथ ब्रह्मपुत्र का भी हम पर बहुत आशीर्वाद रहा है, मां कामाख्या का आशीर्वाद रहा है। असम की जनता ने लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए पर भरोसा किया है। हैट्रिक, तीसरी बार। असम के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। असम के टी गार्डन्स वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। श्रीमंत शंकर देव जी, महायोद्धा लसित बोरफुकन जी, बोड़ोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी, भूपेन हजारिका जी, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेते हुए असम अपने विकास की रफ्तार अब और बढ़ाएगा। साथियों, साल 2021 में हमने पुडुचेरी की जनता के सामने बेस्ट पुडुचेरी का विजन रखा था। पुडुचेरी की जनता ने उस विजन पर विश्वास जताया, हमें अपना आशीर्वाद दिया था। पिछले 5 वर्षों में हमारी एनडीए सरकार ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस विजन को गति देने का काम किया और आज एक बार फिर पुडुचेरी की जनता ने एनडीए पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। मैं पुडुचेरी के युवाओं को, मेहनती फिशरमैन साथियों को भी विश्वास दिलाता हूं, एनडीए सरकार आपके उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर काम करती रहेगी। पुडुचेरी के हर परिवार की समृद्धि, यही हमारा संकल्प है। साथियों, आज देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही है। जनता साफ देख रही है, जहां भाजपा वहां गुड गवर्नेंस, जहां भाजपा वहां विकास। आप बीते 2 साल के ट्रेंड को देखिए।

तीसरी बार बीजेपी सरकार बनी, महाराष्ट्र में बीजेपी की जोरदार विजय हुई, दिल्ली में अभूतपूर्व जीत हासिल हुई, बिहार में भी हमें पहले से बड़ी विजय मिली और ये सफलता सिर्फ राज्यों के चुनाव में नहीं दिखी, ये सफलता लोकल गवर्नेंस के चुनाव में भी दिख रही है। साथियों, अभी 10 दिन पहले गुजरात के स्थानीय निकायों के परिणाम आए हैं। वहां बीजेपी 2.5-3 दशक से जनता की सेवा निरंतर कर रही है और हर चुनाव में जनता बीजेपी को आशीर्वाद के नए रिकॉर्ड बना रही है। गुजरात में इस बार बीजेपी को अब तक का हाईएस्ट वोट शेयर मिला है। ये भाजपा की गुड गवर्नेंस नीतियों की सफलता का बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में मेरे मन में बार बार एक और बात आ रही है और वो बात यह है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। उन्होंने 1951 में जनसंघ की स्थापना करके प्रत्येक कार्यकर्ता को संदेश दिया था कि देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है। उन्होंने अपने जीवन से साबित किया कि राष्ट्र सर्वोपरि का मंत्र लेकर चलने वाले अपना जीवन देने में एक पल का भी संकोच नहीं करते। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था, वो सपना कई दशकों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था। आज 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है। साथियों, बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है, विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। বাংলায় পরিবর্তন হয়ে গেছে। সাথিয়ো, ইস জিত কে সাথ সাথ বন্দে মাতরম কে 150 বর্ষ মে ভারত মাতা কো আর ঋষি বঙ্কিম জি কো बंगाल के लोगों ने अपना सादर नमन प्रेषित किया है। योगीराज श्री अरविंदो को भी मतदाताओं ने ऐतिहासिक श्रद्धांजलि दी है। साथियों, बंगाल में हमारे कितने ही कार्यकर्ताओं ने

अपना जीवन इस जीत के लिए समर्पित किया है। भाजपा की कितनी महिला कार्यकर्ताओं को तमाम अत्याचार सहने पड़े हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कि केरल में और बंगाल में भाजपा के हर कार्यकर्ता को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं, उन पर कितने जुल्म हुए हैं, कितने अत्याचार हुए हैं। मैं आज बंगाल में

को उनके परिवारों को देता हूं। मैं जीत बंगाल की जनता को समर्पित करता हूं। साथियों, अभी 4 मई की यह शाम भले ही ढल रही हो, लेकिन बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। एक ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये उस अडिग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टिकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। साथियों, आज से बंगाल के भविष्य की एक ऐसी यात्रा शुरू हो रही है जहां विकास, अटूट विश्वास और नई उम्मीदें कदम से कदम मिलाकर चलेगी। मैं आज हर बंगालवासी को भरोसा देता हूं, बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए भाजपा दिन रात एक कर देगी। बंगाल में अब महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा।

मिनट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। साथियों, इस महाविजय की दहलीज पर खड़े होकर हम गुरुदेव टैगोर को भी याद कर रहे हैं।

वैशाख 9 मई का दिन दूर नहीं है, हमारा संकल्प भी वही होना चाहिए जो उनका स्वप्न था, एक ऐसा परिवेश जहां मन भय मुक्त हो और सिर ऊंचा हो। और बीजेपी बंगाल में ऐसा भय मुक्त वातावरण बनाकर दिखाएगी, ये मोदी की गारंटी है। बंगाल के ये चुनाव एक और वजह से बहुत खास रहे हैं। आप याद कीजिए, बंगाल चुनाव के समय कैसी खबरें आती थी, हिंसा, डर और निर्दोष लोगों की मौतें। लेकिन इस बार पूरे देश ने एक नई खबर सुनी, पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनावी हिंसा में एक भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई। लोकतंत्र के इस महापर्व में बंदूक की आवाज नहीं, जनता जनार्दन की आवाज गूंजी। पहली बार डर नहीं, लोकतंत्र जीता है। साथियों, आज जब बंगाल ने परिवर्तन के नए दौर में प्रवेश किया है, तो मैं बंगाल के हर राजनीतिक दल से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। बंगाल में बीते दशकों में राजनीतिक हिंसा की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज से बंगाल की इस चुनावी जो आदतें फैली हुई हैं, उसमें बदलाव आना चाहिए। आज जब भाजपा जीती है, तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। मेरी सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है, आइए हिंसा के इस अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए खत्म करें। किसने किसे वोट दिया, किसे नहीं दिया, उससे ऊपर उठकर बंगाल की सेवा के लिए काम करें। साथियों, इन राज्यों में चुनाव और उसके नतीजों की राजनीतिक एक्सपर्ट्स अपने अपने तरीके से समीक्षा कर रहे हैं।

लेकिन इन नतीजों की एक और बहुत अहम बात है इनकी टाइमिंग। आप देख रहे हैं कि जब इन राज्यों में जनता वोट डाल रही थी तो इसी दौरान विश्व में क्या कुछ नहीं चल रहा था, जगह जगह युद्ध के सायरन बज रहे थे, अस्थिरता और अराजकता का माहौल रहा, वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं संकट में दिखी और उस दौरान भारत का जन जन स्थिरता के लिए वोट दे रहा था। साथियों, आज पश्चिमी एशिया में चल रहे संकट का पूरे विश्व पर बुरा असर पड़ा है, लेकिन भारत पूरे सामर्थ्य से इस संकट का सामना कर रहा है। इस चुनाव परिणाम ने भी दिखाया है कि भारत इस चुनौती में भी एकजुट है, एक मत है, एक लक्ष्य से संकल्पित है और वो लक्ष्य है विकसित भारत। विकसित भारत का लक्ष्य लेकर के हम निकले हैं। साथियों, विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में पूर्वोदय का बहुत बड़ा महत्व है। जब भारत समृद्ध था, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सामर्थ्य के चरम पर था, तो उसके तीन मजबूत स्तंभ थे। ये स्तंभ थे अंग, अंग यानी आज का बिहार, बंग यानी आज का बंगाल और कलिंग यानी आज का उड़ीसा। कलिंग उस समय हिंद महासागर के समुद्री व्यापार का एक छत्र सम्राट था। कलिंग के बंदरगाह पूरे एशिया तक भारत के उत्पादों को पहुंचाते थे। वही अंग सूत, रेशम और अन्य व्यापार के साथ साथ नालंदा और विक्रमशिला जैसे एजुकेशन सेंटर्स का भी हब था। और बंग वो सांस्कृतिक धरती थी जहां से भारत की आत्मा की आवाज उठती थी। साथियों, गुलामी के कालखंड में जैसे जैसे समृद्ध भारत के मजबूत पिलर कमजोर होते गए, भारत का सामर्थ्य भी क्षीण होता गया। इसलिए विकसित भारत के निर्माण के लिए इन तीनों स्तंभों का फिर से मजबूत होना बहुत आवश्यक है। और मुझे बहुत गर्व है कि अंग, बंग और कलिंग ने इस महाअभियान के लिए बीजेपी को चुन लिया है, एनडीए पर भरोसा किया है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण का एक और महत्वपूर्ण पिलर भारत की नारी शक्ति है। नारी शक्ति अब विकसित भारत के निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन नारी शक्ति की इस रफ्तार को कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कुछ दिन पहले रोकने का काम किया है। इन नारी विरोधी दलों ने संसद में

गठबंधन संशोधन को पास नहीं होने दिया और इसलिए मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाले ऐसे दलों को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। आज कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को

कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को बहनों बेटियों ने सजा दी है। केरलम में लेफ्ट के 10 सालों के कुशासन का फायदा कांग्रेस को जरूर मिला है, लेकिन मुझे विश्वास है केरलम की बहनें भी अगले चुनावों में कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएगी। साथियों, जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। साथियों, आज हम भारत की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव देख रहे हैं। आज पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो। एक भी नहीं है। ये सिर्फ सियासत का बदलाव नहीं है, ये सोच का बदलाव है। ये बताता है कि विकसित होता हुआ भारत किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। आज का भारत अवसर चाहता है, विकास चाहता है, विश्वास चाहता है। आज का भारत प्रगति चाहता है, स्थिरता चाहता है। और आज का भारत ऐसी राजनीति चाहता है जो देश को आगे बढ़ाए। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से आज की कांग्रेस बिल्कुल विपरीत दिशा में चल पड़ी है। ऐसे समय में जब पूरा देश कम्युनिज्म से किनारा कर चुका है, कांग्रेस उसी विचारधारा को अपनाने में लगी है जिसे देश ने ठुकरा दिया है। जो माओवाद जंगलों में समाप्त हो रहा है, वो अब कांग्रेस में अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। और इसलिए कांग्रेस अर्बन नक्सलियों का गिरोह बनती जा रही है। कांग्रेस को एक बात नहीं भूलनी चाहिए, जिस विचार को जनता ने ठुकराया, उसे जो अपनाएगा जनता उसे भी ठुकराएगी। साथियों, आज देश का हर राज्य भी एक दूसरे से लड़कर नहीं, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। इन चुनावों ने इस संदेश को भी बहुत स्पष्ट किया है। बंगाल, तमिलनाडु और केरल में जिन 3 सरकारों को जनता ने सत्ता से बाहर किया, उनकी एक समान पहचान थी विभाजन की राजनीति। यही उनकी पहचान थी। उनकी राजनीति जोड़ने की नहीं, तोड़ने की थी। कभी भाषा के नाम पर विवाद खड़ा किया गया, कभी खाने पीने की आदतों को लेकर समाज को बांटने की कोशिश हुई, और कभी अपने ही देश के लोगों को बाहरी तक कहा गया। लेकिन

0: साफ जवाब दिया है, देश ने बता दिया है कि उसे विवाद नहीं, विकास चाहिए, विभाजन नहीं, विश्वास चाहिए। साथियों, आजादी के बाद कांग्रेस ने देश के करीब करीब हर राज्य में सरकारें बनाई। ये आजादी के आंदोलन का जो इमोशन था उसका उनको लाभ मिला था, उसमें से उपजा हुआ जनादेश था। लेकिन जैसे जैसे आजादी के आंदोलन का इमोशन से आगे निकल करके देश धरातल के काम पर लौटा।
1: अभी हम दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन लाइव सुन रहे थे। सर्जना शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए, और मुझे और वैभव श्रीवास्तव को अब इजाजत दीजिए। 9:15 बजे हम फिर जनादेश 2026 लेकर आपके बीच होंगे।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
4: आकाशवाणी पुदुचेरी, நேரம் இப்போது 8:00.

0: जनादेश 2026
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
2: An election like none other, with unprecedented momentum and movement and a historic result at the end of the day. Welcome to this special program, Janadesh 2026 on Akashvani. We are covering and analysing the results of four states and one union territory. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav with my co-anchor Sonu Sood.
3: धन्यवाद वैभव. और आज इस भारत राजनीति के महत्वपूर्ण दिन पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो अहम कहें कि पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हैं, प्रफुल्ल केटकर जी और मिस्टर केवी प्रसाद. आप दोनों का ही स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है.
4: धन्यवाद.
3: सो जैसा कि हम जानते हैं कि आज जो विधानसभा चुनाव अप्रैल में हुए चार राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में, उनके रिजल्ट्स आए हैं. वेस्ट बंगाल आ रहे हैं रादर रिजल्ट्स. अभी तक पूरा नहीं हुआ है रिजल्ट का जो प्रोसेस है, अभी भी काउंटिंग चल रही है. वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम और पुदुचेरी. सो अगर हम शुरुआत वेस्ट बंगाल से करें, जिस पर बहुत सबकी नज़रें थी और बहुत स्पर्धा थी इस चुनाव में, अगर मिस्टर केवी प्रसाद आपके पास आए तो क्या लगता है आपको, जिस तरह का जनमत आया है बीजेपी के फेवर में, 200 से अधिक सीटें, 294 सीट्स के जो असेंबली है उसमें इतनी बड़ी जो बहुमत आई है, किन उम्मीदों और किस विश्वास पर ये जनमत उनको मिला है, प्राप्त हुआ है, और भारतीय राजनीति के लिए आप इसको कितना बड़ा मील का पत्थर मानते हैं?
4: देखिए, एक तो 15 साल के जो शासन था ममता बनर्जी का, उसके खिलाफ, उनके विरुद्ध काफ़ी सारे समस्याएं थी. और भारतीय जनता पार्टी ने एक ही बात कही थी जो कि मूल मुद्दा जिसका आप पूछें कि परिवर्तन लाएंगे हम पूरे प्रक्रिया में, उसमें मतलब बंगाल में, चाहे आर्थिक तौर से, चाहे वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तमाम सारे मुद्दे जो कि जनता से जुड़े हुए थे. और जनता, और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ 14 दिन का कैंपेन है, कि अगर आप देखें जब से लोकसभा ख़त्म हुआ उसके बाद से लगातार ये प्रयास चलता रहा
3: जी.
4: और विपक्ष के जो नेता हैं सुवेंदु अधिकारी, वो भी सदन में, और वहाँ पर एक माहौल उन्होंने इस तरह का तैयार किया, और तो उस ये सब जुड़ता चला गया. और बंगाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक ज़माने में वामपंथियों का गढ़ माना जाता था. 34 साल तक उन्होंने लगातार 77 के बाद जब तक ममता ने उनको हराया नहीं तो वो जीतते रहे. तो ऐसे में उस किला को पहले ममता ने गिराया, अब ममता का किला को बीजेपी ने हिलाया.
3: जी बिल्कुल. सो 293 सीटें हैं यहाँ पे और भारतीय जनता पार्टी को 168 सीटों पर जीत प्राप्त हो चुकी है और 40 सीटों पर वह आगे चल रही है. सो जो प्रदेश है पश्चिम बंगाल, उसके भविष्य के लिए आप क्या, अब एक आशा है आपको, किस तरह के बदलाव आने की उम्मीद की जा सकती है?
4: देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो परिवर्तन की बात की, वो परिवर्तन तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और उसमें उनको लग रहा था कि भाई जैसे कहें कि सबसे पहले सुशासन, और भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ सरकार बनाई दी है वो डबल इंजन सरकार की बात करती है, और शायद वो एक बंगाल के नागरिकों ने जिन्होंने चाहा कि सरकार बदले, तो उसका परिणाम हमारे सामने है.
2: मिस्टर केतकर, माय क्वेश्चन वुड बी टू यू, द प्राइम मिनिस्टर टॉक्ड अबाउट पेइंग अ डेट टू श्यामा प्रसाद मुखर्जी, द मेंटोर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी. ही टॉक्ड अबाउट द पब्लिक्स ट्रस्ट इन द परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स. ही टॉक्ड अबाउट एक भारत श्रेष्ठ भारत. ही टॉक्ड अबाउट द डिफीट ऑफ फियर, पोलराइजेशन एंड अपीजमेंट. एंड वी ऑल्सो सॉ अ हिस्टोरिक नंबर ऑफ डिप्लॉयड पर्सनल इन द वेस्ट बंगाल इलेक्शंस. व्हाई वॉज दिस रिक्वायर्ड, और वॉज दिस चेंज ऑन द कार्ड्स?
5: सी वैभव, इफ वी सी द हिस्ट्री ऑफ बंगाल पॉलिटिक्स from 1937 pre-independence period, when Muslim League came to power, every election has been marred with violence. Every election, without any

0: Absolutely. We will go and we will talk with KV Prasad ji and Praful Ketkar ji. But right now you are listening to Janadesh 2026 on Akashvani.
1: And
2: Janadesh 2026. Janadesh 2026.
1: आप सुन रहे हैं चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव परिणामों पर विशेष कार्यक्रम जनादेश 2026। और हमारे साथ प्रफुल्ल केटकर जी और केवी प्रसाद जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में मौजूद हैं डिस्कशन के लिए। और इससे पहले कि हम उनसे बात करें, प्रधानमंत्री की जो उन्होंने आज संबोधन दिया उसकी एक अंश सुनते हैं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
3: अभी 4 मई की यह शाम भले ही ढल रही हो, लेकिन बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। एक ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये उस अडिग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टिकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। आज से बंगाल के भविष्य की एक ऐसी यात्रा शुरू हो रही है जहां विकास, अटूट विश्वास और नई उम्मीदें कदम से कदम मिलाकर चलेगी।
0: KV Prasad sir, the Honourable Prime Minister talking about development and the trust on tomorrow's hopes that the people have and how they have entrusted those hopes in the form of votes to the BJP. How do you see this change in power for the people of Bengal, especially for the constituencies which were just at the border, which were facing issues, as Praful Ketkar ji rightly said? Now, the fall of this government, the TMC government, came or started around 1.5 years back when the government of Sheikh Hasina fell, and there were so many repercussions on one particular community, but there was no comment or no action taken by the TMC, or not even a comment from them. How do you see that changing now? And with this, we will also like to tell everyone that Suvendu Adhikari has clearly talked about the fact that not just Hindu majority areas, but every other areas too, have clearly voted for the BJP for this change. Sir, your views.
4: Well, the biggest thing I would see is for the Bharatiya Janata Party that it has to hit the ground running without delay, number one, because the task, the mandate that people have given them shows the kind of hope they carry in this new government. They've elected a government on the set of promises the government has, the Bharatiya Janata Party, from right from the top leadership, led by the Prime Minister himself during his entire campaign, and everybody else. So that's one thing. And secondly, what the Prime Minister has articulated, those are the factors on which the BJP will be there. Infiltration, of course, has been big in the campaign, and these are some of the factors. And improving relationship with the neighbor state is now, of course, an aspect that got into the domestic politics too. So we'll have to see how it takes the course forward. But I said, they'll have to hit the ground running without delay.
1: Praful ji, एक और स्टेट जो तमिलनाडु में आज जो रिजल्ट आया है वो भी बहुत ही रेवोल्यूशनरी कह सकते हैं। डीएमके जो वहाँ पर सत्ता में थी उनको नहीं मिली है मेजॉरिटी, और एआईएडीएमके जो दूसरी ड्रेविडियन पार्टी थी जो डीएमके से पहले सत्ता में थी उनको भी नहीं मिली है। जो नई पार्टी है टीवी के एक्टर टर्न पॉलिटिशियन विजय की, उनको जो मिडवे मार्क है उससे केवल 10 सीटें पीछे है वो। सो पहले तो बताएं कि ये इतना बड़ा बदलाव कैसे आया है, एक नई पार्टी जो 2 साल पहले ही बनी थी उसमें क्या देखा है वोटर्स ने, और कैसे देखते हैं पोस्ट पोल क्या अलायंस होगा?
5: देखिए सोनू जी, मैं थोड़ा सा उनको और उल्टे तरीके से देखता हूँ। डीएमके और एआईडीएमके मिलकर जितनी सीटें हैं उतनी टीवीके को है।
0: ट्रू दैट।
5: वन, सेकेंडली, फर्स्ट टाइम

0: मतलब अभी तक जो भी पार्टी वहाँ पे जीतती थी वो अपने दम पर 30-32% ही वोट लाती थी
1: जी,
0: बाकी अलाइज के साथ मिलकर वो गवर्नमेंट बना लेती थी। वो नंबर्स तमिलनाडु में जो दिखते हैं ना, हम जनरली दो बड़ी द्रविड़ियन पार्टीज में देखते हैं, लेकिन यदि हम PMK, MDMK ये छोटे छोटे दल वहाँ के देखे तो उनका हर एक का अपना 2-5% का वोट शेयर है एंड दे एड अप। दैट हैजंट हैपेंड दिस टाइम। TVK के पक्ष में 35% वोट शेयर है द पार्टी कंटेस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जो है ये क्लियरली दिखाता है कि तमिलनाडु का वोटर जयललिता और करुणानिधि जी के निधन के बाद ऑप्शंस देख रहा था। उन्होंने एक बार पनाईसामी के नेतृत्व में AIDMK को ट्राई किया, स्टालिन को ट्राई किया, लेकिन दोनों द्रविड़ियन पार्टीज वो एस्पिरेशंस और वो लीडरशिप नहीं दिखा पाए। करप्शन, पैसे का पूरे चुनावी प्रक्रिया में उपयोग, पूरी फिल्म इंडस्ट्री आज तमिलनाडु की डिवाइडेड, नोबडी अंडरस्टैंड्स दिस। यू नो वर्चुअली उदयनिधि स्टालिन इज कंट्रोलिंग द फिल्म इंडस्ट्री और वो फिल्म इंडस्ट्री का रिफ्ट है विजय कमिंग फ्रॉम द सेम फील्ड। ही इज गिविंग अ न्यू होप फॉर तमिल फिल्म इंडस्ट्री। इसीलिए हम देखते हैं कि मलेशिया से, सिंगापुर से तमिल फिल्म केवल तमिलनाडु में नहीं चलती है, वो बाहर जो तमिल डायस्पोरा बैठा हुआ है उसके भी एस्पिरेशंस उन्होंने एड्रेस किए। तो ये सारे फैक्टर मिलाकर एटलीस्ट 3-4 मिनिस्टर बंगाल की चर्चा होती है, तमिलनाडु में भी एटलीस्ट 3-4 मिनिस्टर करप्शन चार्जेस में जेल में गए हैं। तो ये सारे फैक्टर एडअप होने के कारण लगभग 17% यूथ आज तमिलनाडु में है। दे वेर लुकिंग फॉर यू नो लुकिंग एट विजय एज अ होप। वो दिखने के बाद बाकी रैलिंग हुआ है ऐसा मुझे अभी इनसाइड में लगा।
1: एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ सेलिब्रिटी अट्रैक्शन भी।
0: DMK के खिलाफ सेंटीमेंट था, वो किसके पक्ष में जाता है ये समझ में नहीं आ रहा था। विजय हैज डेफिनेटली
2: एब्सोल्युटली प्रफुल्ल जी, एज यू वर सेइंग दैट द एरोगेंस ऑफ द इनकम्बेंट पार्टी और व्हिच हैज नाउ बिकम द पार्टी व्हिच वाज रूलिंग तमिलनाडु हैज शोन the people that yes they were looking for a change and now they have exercised their right that yes we need that change in the form of a new face. Let's go over to our Chennai correspondent Sushil Tiwari. Sushil ji, welcome to the show. What is the sentiment on the ground? How happy, excited, elated are the people with this win of TVK and what are their hopes and aspirations?

0: सुशील जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? कुछ तकनीकी शायद प्रॉब्लम है। आपके पास आते हैं मिस्टर प्रसाद, आप कैसे देखते हैं तमिलनाडु में जो ये रिजल्ट आया है? हालांकि अब एग्जिट पोल से कुछ आभास होने लगा था और उसके अकॉर्डिंग ही लगता है रिजल्ट आया है, लेकिन इसका इसका कारण क्या है? आपके आप पर्सपेक्टिव हमें
1: देखिए, मैं
0: बताएं।
1: एक चीज़ जो प्रफुल्ल जी ने कहा उसको आगे बढ़ाता हूँ। आप अगर देखिए 2016 का जो चुनाव हुआ तमिलनाडु में, वो पहली मर्तबा हुआ कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री कट गई थी, कोई नुमाइंदगी नहीं थी, क्योंकि स्टालिन इंडस्ट्री से नहीं आए थे और जो उम्मीद थी रजनीकांत चुनाव लड़ेंगे वो चुनाव से ठीक पहले पीछे हट गए थे। उन्होंने कहा मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, और उसके बाद
0: और कमल हासन जी
1: कमल हासन की पार्टी थी, लेकिन उसका कोई खास हुआ नहीं। और भी थे नेमम, और भी दो चार लोग हैं नाइमम और जो वहाँ पे वो थे, लेकिन उनका इतना प्रभाव नहीं था। कैप्टन विजयकांत के जाने के बाद डीएमडीके का भी, तो जब इस बारी ये हमारे टीवीके के विजय मैदान में आए, और दो साल पहले तो उन्होंने पार्टी बनाई, लेकिन इससे पहले उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी थी। अगर आप देखें उनकी जो फैन क्लब्स है, उस फैंस क्लब को उन्होंने एक्टिवेट किया सोशल वर्क के लिए, तो एक तरह से पूरा अपना पैंट बनाई लोगों के बीच में और वेलफेयर वर्क किया। उसके बाद उनको स्थानीय चुनाव में लड़वाए, तो उसमें से सीटें निकल के आने लगी, तो एक तरह से उनको पता था कि राजनीति क्या होनी है। और सबसे बड़ा मानता हूँ कि जब एक तो तमिल फिल्म इंडस्ट्री के साथ देखिए, तमिलनाडु पॉलिटिक्स शुरू से देखिए, अन्नादुराय के टाइम से देखिए, कामराज के टाइम से देखिए, सब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी, करुणानिधि खुद, एम जी रामचंद्रन, जयललिता, सब फिल्म इंडस्ट्री से निकल के आए, तो वो एक इम्पॉर्टेंट कनेक्ट वापस जुड़ा है तमिलनाडु पॉलिटिक्स में। दूसरा, ये एक युवा होने के कारण नया उम्मीद लेके लोग उनके साथ आए हैं, और तमिलनाडु में जितने राजनीति मैंने कही

0: सालों से देखी, ये जरूर था उनके पास कि एक विकल्प जरूर देते थे, कोई तीसरा विकल्प दोनों द्रविड़ियन पार्टी से अलग हो।
1: चेन्नई से सुशील तिवारी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील जी, बताएं कि तमिलनाडु में जो ये एक कहें कि बहुत ही क्रांतिकारी सा बदलाव आया है, एक नई पार्टी जो उभर के आई है, क्या कैसे देखते हैं आप इसको, किस तरह का माहौल है और क्या आशाएं हैं?
2: देखिए, ऐसा है कि ये बहुत बड़ी जीत, आप अगर इसे एक नजरिए से देखें तो युवाओं की और जेंजी की इस जीत में बहुत बड़ी भूमिका है। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया कई चर्चाओं में कि जो 14 लाख के आसपास पहली बार के वोटर्स थे उनमें युवा वर्ग में बहुत जबरदस्त क्रेज था विजय का, और जिसकी हम लोग बार बार विभिन्न मौकों पर चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से फिल्म स्टार्स की एक लार्जर देन लाइफ इमेज होती है। वो हमने देखा कि जो तमिलनाडु की राजनीति है उसमें शुरुआत में जो द्रविड़ियन पॉलिटिक्स, जो पेरियार आंदोलन था, वहां से लेकर के राजनीति, जो सिनेमा घर है वो एज ए क्लासरूम सोशल इविल्स को लेकर के और सोशल वेलफेयर मतलब सामाजिक मुद्दों को लेकर के वो उठाते रहते थे, और अगली पीढ़ी में वही लोग नेता बनकर के आए, मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने उसको एक्सपेंड किया अगली पीढ़ी में। वो जो पर्दे पर वो जो करते हुए दिख रहे थे गरीब तबके के लिए और दबे कुचले लोगों के लिए, वो उन्होंने सामाजिक कल्याणकारी स्कीमों के जरिए किया, और इस बार उसी अटैचमेंट का लाभ जो है वो विजय ने अपनी ब्रांड इमेज को मजबूत करने में किया। तो 30 साल के आसपास तक के जितने 1 करोड़ से ऊपर मतदाता थे उनमें उनका जबरदस्त क्रेज रहा, सोशल मीडिया में जबरदस्त क्रेज रहा। तो एक तो उनके जीतने के पीछे एक ये वजह भी थी, प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी वोट्स थे, जो एक वॉइड था, जो एक खालीपन था, जो फिल्मी सितारों का जिस तरीके से कहा जाए कि उस तरीके से पिछले 10 सालों में ऐसा कुछ विजयकांत ने जरूर शुरुआत की थी लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए
1: जी।
2: तो रजनीकांत, कमल हासन सबने प्रयास किया लेकिन इस तरीके का कनेक्ट वो यूथ के साथ नहीं बना पाए, वो पीढ़ी भी पुरानी थी। नई पीढ़ी के सितारे के तौर पर विजय ने जबरदस्त कनेक्ट किया, तो एक तो ये रहा, और दूसरा हम अभी देख रहे हैं किस तरीके से युवा सड़कों पर जो विसल पोड़ू, जो तमिल में कहते हैं कि सीटी बजाओ, उनका जो नारा था, उनकी जो
1: सिंबल
2: था वो भी सिंबल भी था, वो जबरदस्त हर तरफ सीटी बजाते हुए कार्यकर्ता घूम रहे हैं, सड़कों पर आतिशबाजी हो रही, हजारों लोग लाइन में लगे हुए हैं विजय की एक झलक पाने के लिए।
1: जोश बहुत है
2: पार्टी वर्कर्स के पास, तो इतने बड़े समूह की आकांक्षाओं को भी साकार करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए, सरकार की असफलता जो थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, ड्रग्स को लेकर के, और जो फिल्म इंडस्ट्री की बातें हो रही थी कि एक तरीके से पूरा कब्जा हो रहा था, तो वो उस चीज से मुक्ति दिलाने का विजय वादा करके आए, और AIADMK में उस तरीके का करिश्मा नहीं रहा, लोगों को वो कनेक्ट विजय के साथ हुआ, स्पेशली यूथ को।
1: सुशील जी,
2: बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और स्टूडियो में प्रफुल्ल जी आपके पास आएंगे, पुदुचेरी की अगर हम बात करें तो AINRC और सहयोगी दल 17 सीटें जीत चुके हैं और एक पर आगे हैं, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को 6 सीटें मिली हैं, TVK 3 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, अन्य को 3 सीटें मिली हैं। सो जो 16 का जो मैजिक नंबर है वो ऑलरेडी जो BJP और AINRC है उन्होंने हासिल कर लिया है, दोबारा उनकी सरकार बनेगी, ये कितना आपको इम्पोर्टेंट लगता है?
3: देखिए, जो 2016-17 के बाद BJP ने वहाँ पे एक जो एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ की एक स्थानिक पार्टी को साथ में लेकर सरकार बनाई, उसको मर्ज नहीं किया BJP में, उस पार्टी की आइडेंटिटी बनाए रखते हुए BJP ने अलायंस किया। ये BJP दक्षिण के राज्यों के लिए एक अलग सा प्रयोग करने का प्रयास कर रही थी, पुदुचेरी में वो सफल हुआ है और लगातार दूसरी बार NDA को वहाँ पे जीत मिली है। यहाँ पे जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ जो अपने जो सुनने वाले हैं उनको बतानी है कि यदि हम AINRC और BJP और उसके अलाइज, इनका सबका वोट परसेंटेज देखते हैं तो ये बहुत छोटी विधानसभा है इसलिए बहुत बार समझ में नहीं आता, लेकिन हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि BJP ऑन इट्स ओन हैज अ 13% वोट शेयर हियर। तो वहाँ पे जो केमिस्ट्री होती है किसी भी अलायंस को जीतने के लिए कि वोट ट्रांसफर बहुत अच्छा हुआ है, और इस वजह से लगभग 23-24% के साथ AINRC और BJP, तो वो वोट परसेंट उनका लगभग हम कह सकते हैं कि 35-36% के आसपास होने के बाद भी उन्होंने आराम से वहाँ पे मेजॉरिटी हासिल की है, एआईडीएमके उनके साथ में है ही, उसने भी 1.5-2% वोट ऐड किया।

0: parties and the possibility of, because we've seen in Bengal earlier in Delhi, the Aam Aadmi Party did not roll out the central government schemes or something else. But if you look at the flip side, which is what I was saying, I can argue it both ways, is if the Prime Minister is always saying that the BJP government, BJP at the center does not discriminate with states.
1: True.
0: So we send them funds. So there is a dichotomy, if you notice it.
1: True that.
0: It contradicts, you know, so that's why I said one can argue it both ways as a political observer.
1: Absolutely.
0: But what crosses the people's mind is something different. When they go to vote, they have a lot of things in mind. And the uppermost thing in the mind, which I believe in all state elections, is what will the government do for me? Period.
1: Praful-ji, how important is the fact that on one hand the Prime Minister says that we do not discriminate, but on the other hand we see states not implementing central policies, and even the Prime Minister in his victory speech from the BJP headquarters saying that the first decision of the West Bengal government would be to implement Ayushman Bharat.
2: That, see, state government for political reasons many a times, you know, you are talking about the double engine ki sarkar. In states like Tamil Nadu or Kerala, or earlier even in the Northeast, anti-Delhi sentiments were used to galvanize the regional sentiments.
1: Ji.
2: Himanta Biswa Sarma is doing it the other way around. He is using Assamese identity to strengthen the relationship with Delhi.
1: And I would say unapologetically.
2: Unapologetically.
1: He's being unapologetically himself.
2: One is, you know, his stand on, you know, illegal migration issue, because Assamese identity was a very, very sentimental issue since 2000.
1: Absolutely.
2: Actually, from AGP's agitation, Asu agitation, then AGP. The way, again, many a times we do not understand, 102 is a huge number in 126 assembly. But again, I will insist on chemistry. AGP, Bodoland Party and BJP together has, you know, 102 seats. And again, BJP is just 37%. All these two parties have brought in 10% more.
1: True that.
2: So it is shifting not just in their area where BJP is contesting. So when the chemistry is right, you convert seats more with lesser percentage. That is the formula that BJP is using everywhere.
3: In fact, Pradhan Mantri ne apne usme kaha sambodhan mein ki ab jo tea garden ke workers hain wo bhi hamare liye vote kar rahe hain. To jo abhi tak jo bhi aise aise segments the jo pro BJP nahi the, jo aap keh rahe hain ki jo exploit bhi kiya jata hai cultural identity ya regional, jaisa Bengal mein bhi humne dekha, to wo bhi ab is baat ko you know स्वीकार रहे हैं कि नेशनल पार्टी भी उनके लिए बेहतर हो सकती है.
2: असम में और बंगाल में दोनों जगह पर मैंने देखा, खास करके बीजेपी ने अनुसूचित जाति जनजाति दोनों वर्गों में और खास करके टी गार्डन में पहली बार उनको वोटिंग राइट में इंक्लूजन तो एक हिस्सा है ही जिसका सेंटिमेंटल, पहली बार उनको लैंड राइट मिला है. See, after British colonization, उनको वहां पे एज अ लेबर लेकर गया थे, तो उसके कारण टी गार्डन वर्कर्स को लैंड राइट नहीं थे, अभी उनको पट्टा मिला है. That has been the game changer. You know, unfortunately, Congress or Trinamool Congress didn't pay attention to. वो मुझे लगता है, और वो तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में इंप्लीमेंट नहीं हुआ है. तो ये केवल आयुष्मान भारत की बात नहीं है, वेस्ट बंगाल में पट्टा इंप्लीमेंट नहीं हुआ, वेस्ट बंगाल में सीए और डिलिमिटेशन में कैसी दिक्कतें आई जो असम में इंप्लीमेंट हो गया. तो वो एक मैसेज है. और तीसरा सबसे बड़ा मुझे जो फैक्टर लगता है, अगेन टुडे नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, बंगाल इज वन स्टेट वेयर सेवन पे कमीशन इज स्टिल नॉट इंप्लीमेंटेड बाय द स्टेट.
3: ओके,
2: तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जो रिजेंटमेंट है, बहुत लोग पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्टेट मशीनरी तो करते हैं, लेकिन स्टेट मशीनरी को जो सेंटर के बेनिफिट्स पास ऑन नहीं हुए हैं उसके बारे में कोई नहीं बात करता. मुझे लगता है वो भी एक बड़ा फैक्टर. तो असम में ये और असम और बंगाल में ये मुझे लगता है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन, जो एक्सप्लॉयटेड स्टेट मशीनरी के थ्रू फील करते थे, उन्होंने डिसाइसिवली बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है.
1: एब्सोल्युटली.
3: अगर हम केरला की बात करें मिस्टर प्रसाद, तो वहाँ पर जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की गवर्नमेंट थी, अब वो इस चुनाव में अपना जो स्थान है वो बरकरार नहीं कर पाई है, और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जीत गया है. सो इसको आप, इस चेंज को कैसे देखते हैं? क्या जो एक लेफ्ट की सरकार एक जो बची हुई थी एक राज्य में, अब वो भी नहीं रहेगी, तो इसको भी आप एक बहुत बड़ा एक बदलाव मानते?
0: जी, राजनीति में तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, एक लेजिस्लेटिव प्रेजेंस उनका खत्म.

0: लेफ्ट की सरकार एक जो बची हुई थी एक राज्य में, अब वो भी नहीं रहेगी, तो इसको भी आप एक बहुत बड़ा एक बदलाव मानते हैं?
1: जी, राजनीति में तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि ठीक है एक लेजिस्लेटिव प्रेजेंस उनका खत्म हो गया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कम्युनिस्ट का आइडियोलॉजी या वो उसमें फर्क पड़ा है, लेकिन एक प्रेजेंस नहीं लेगा लेजिस्लेटिव, नंबर वन। नंबर टू, एक चीज़ है जो रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स हम कहते हैं केरला में, जैसे तो ऑल्टरनेट करते थे, वो वापस आ गया, क्योंकि पिछले बारी वो टूटा था बहुत सालों बाद कि लेफ्ट की सरकार रिपीट हो गई थी, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की, तो वो एक सिग्निफिकेंट चेंज है। लेकिन कांग्रेस के सामने भी अपनी समस्याएं हैं, अभी वो आगे चल के पता लगेंगी हमें।
2: Absolutely. But KV sir, as we were talking earlier, you've said that you've been covering elections and you've been seeing the political scenario in India for so long now, decades. Has the left completely lost track of the voter sentiment now? We've seen West Bengal, we've seen Assam, now we've seen it in Kerala. How the left has completely been sidelined by the people, and time and again, are there no issues with the left? Or the left has completely lost track of what the people want?
1: I don't say they're lost completely, but just that what the issues that they're picking up are not gaining traction. A, probably they're not able to reach out to the segments in the manner in which they were reaching out earlier. The landscape has changed and they have not adapted to the changing landscape. You have to understand that every generation there will be new things coming up. So if you can't use the same old methods of mobilization, mass mobilization, which used to be the criteria for left parties in India, that has changed.
0: और प्रफुल्ल जी, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तो अभी पोस्ट पोल आप किस तरह का वहाँ पर अलायंस बनता हुआ देखते हैं, किस तरह की नेगोसिएशंस की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है सरकार बनने के लिए?
3: देखिए, टीवी के मोटा मोटा मानकर चलते हैं, अभी के ट्रेंड्स के हिसाब से 107 108 सीट तक सेटल डाउन होगा, और इसलिए कोई और अल्टरनेट गवर्नमेंट बनने का तो कोई स्कोप नहीं है, तो टीवी की गवर्नमेंट बनाएगी। विजय इज ऑलरेडी कंसिडर्ड एज अ यू नो फ्यूचर चीफ मिनिस्टर, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इवन बिफोर व्हेन बोथ द पार्टीज वर ट्राइंग टू निगोशिएट विथ हिम, वो तो बात ही इसी तरीके से कर रहा था कि जिसको मेरे पास आना है वो आए, मैं तो फ्यूचर चीफ मिनिस्टर हूँ, तो ही वॉज वेरी क्लियर विथ हिज सपोर्ट बेस। अब चैलेंज उसके सामने दो तरीके के है, एक वो किस तरीके से, क्योंकि उसने एंटी डीएम के पॉलिटिक्स को तमिलनाडु में लाया है, ये पक्का है, लेकिन क्या वो आज छोटी पार्टीज को साथ में लेकर गवर्नमेंट फॉर्म करने की स्थिति में है, या एआईडीएमके के साथ इसमें बीजेपी और सेंटर कितना रोल प्ले करता है, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा इस गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, बिकॉज विजय एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वॉज इन टॉकिंग टर्म्स विद द बीजेपी एंड एआईडीएमके ऑल्सो। लेकिन दूसरा बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है कि उसने लगभग सारे उसके कैंडिडेट्स फ्रेश है, किसी को पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, किसी को गवर्नेंस का एक्सपीरियंस नहीं है, एंड गवर्निंग अ कॉम्प्लेक्स स्टेट लाइक तमिलनाडु इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर।
0: और प्रफुल जी, पांच राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए, भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है, इसमें क्या कुछ खास रहा इस उपचुनाव में?
3: देखिए, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा पवार की सीट है, हाईएस्ट मार्जिन से जीती है बारामती की, तो अजित पवार के निधन के बाद वो सीट वेकेंट हुई थी, इसलिए वहाँ पे बायपोल हुआ है। मुझे नागालैंड की विक्ट्री बीजेपी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट लगती है। नागालैंड में अपने दम पर बीजेपी ने एनपीपी और वहाँ की स्थानिक पार्टियों को हराकर वो सीट जीतना, ये एक सिग्निफिकेंट मैसेज मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट से भी है।
2: केवी सर, योर व्यूज ऑन द विक्ट्रीज ऑफ द बाय इलेक्शंस सो फार एंड हाउ डज इट?
1: वेल, नॉर्मली वी सी बाय इलेक्शंस the government of the day gets to carry the by-elections.
4: Right.
1: So if you look at the last in Karnataka, BJP has, Congress has. In Gujarat, BJP. And of course, as
2: Maharashtra again, BJP.
1: Maharashtra,
2: yes.
1: But Maharashtra, there was less of a contest because there was more out of sentiments. People had
2: absolutely
1: not contested that seat. That is a very common trend in Indian politics. Nagaland is the sole exception if you look at this way. But otherwise, the broader trend that the state assembly elections bipoles usually go with the government of the day is more or less in place.
0: Samay samapt ho raha hai, so ab hum is charcha ko bhi yahi samapt karenge. Praful ji, Prasad ji, aap dono ka bahut bahut dhanyawad. Aap aaye aur aapne jo aaj janadesh aaya hai uska vishleshan hamare shrotaon ke liye kiya.
1: Dhanyawad.
0: Aur ab meri taraf se aur mere co anchor Vaibhav Srivastav ki taraf se

0: आपको नमस्कार। जनादेश 2026 की इस विशेष चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं।
1: थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आकाशवाणी।
2: जनादेश 2026
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
2: जनादेश 2026
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
4: आकाशवाणी புதுச்சேரி நேரம் இப்போது 10 மணி. தேன்மழை நிகழ்ச்சியில் தொடக்கமாக சரணாலயம் படத்திற்காக மலேசியா வாசுதேவன் பாடிய பாடல்

Thank you.